मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सक्षमवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सन प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार

0: आयोजित सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, प्रातःकालीन बेला उस ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जब हम रात्रि में सोते हैं तो किसको क्या पता कि अगली प्रातःकालीन सभा या प्रातःकालीन बेला हमें देखने को मिलेगी या नहीं। हमें हमेशा उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसे हमेशा मन में बसाना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसकी याद में खुद को बसाए रखना और उसका नाम जपते रहना इस भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जगदीश सिंह की आवाज में ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन। श्रोताओं, माँ माँ तो जगत जननी है, उसने हम सभी को जन्म दिया है और हमारा पालन पोषण भी करती है। श्रोताओं, हमें हाथ जोड़कर उसकी कृपा के लिए हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माँ माँ किसी को निराश नहीं करती, वो तो बस सब पर अपनी ममता और अनुकंपा बरसाती है। उसके दर से कभी कोई सच्चा भक्त खाली नहीं जाता।

कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, गुरु इस संसार में बहुत महान है, गुरु की महिमा महान है। गुरु वो रास्ता दिखाता है जो सद्मार्ग पर चलता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो गुरु के कहे रास्ते पर चलता है उसे वास्तव में इस संसार का सभी सुख प्राप्त होता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए श्रोताओं, हम भी दोनों हाथ फैलाकर उस वाहेगुरु की दर पर चलते हैं और अरदास लगाते हैं। सुना है उसके दर पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।

ऐसे गुरु को बल बल जाइए। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप ये शब्द सुन रहे थे भाई सुरजीत सिंह रागी की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं सनवर अली खां और साथियों के स्वर में ये नात। श्रोताओं, उस निगहबान जो हमारा रहम करता है, हमेशा हम पर रहम करता है, हम पे निगाह रखता है, उस अल्लाह ताला को उसकी हर रहमत के लिए हमें शुक्रिया देना चाहिए, हमें उसका एहसान मंद रहना चाहिए और हमेशा उसके पहलू में रहने की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो सबका पालनहार है, सबका निगहबान है, सब पर नज़र रखता है और सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है, सबकी दुआओं में नज़र आता है।

सर नवर अली खां और साथियों के स्वर में अभी आप ये नात सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे के स्वर में ये मदन मुरारी की आरती।

मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप ये आरती सुन रहे थे। और श्रोताओं, इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और सुरेश वाडेकर के स्वर में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्रीराम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं, और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्रीराम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति भी प्रीत में है। प्रेम और शांति, दोस्ती और भाईचारे का अटूट संबंध दिलों की खोट और कपट को इस प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार उजाले के सामने अंधेरा भाग जाता है। यह संदेश कोई नया और अनोखा नहीं है। ईश्वर के हर नेक बंदे ने, हर नबी और वली ने, हर ऋषि और मुनि ने अपने अपने अंदाज से इसे दोहराया है। हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम दुश्मनी को कभी दुश्मनी से नीचा नहीं दिखा सकते, केवल प्रेम और दोस्ती से उसे जीत सकते हैं। यह कभी न मिटने वाला कानून है। प्रभु यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों और विरोधियों से प्रेम और बुराई का बदला नेकी से दो। हजरत मोहम्मद साहिब ने कहा, अगर तुम ईश्वर से प्रेम का दावा करते हो तो उनके बंदों की सेवा करके दिखाओ। इसीलिए मैं कहता हूं ये संदेश अनोखा नहीं है मगर सच्चा जरूर है। मेरे विचार में पहाड़ों जैसा पुराना, समंदर जैसा गहरा, सूरज जैसा रोशन और गुलाब जैसा ताजा संदेश ये है। अपने दिल दिमाग के दरवाजों को खोल दो ताकि तंग नजरी, भेदभाव, जात पात के जाले साफ हो जाएं। मनुष्य मनुष्य को उसके असली रूप में देख सके ताकि प्रेम की धीमी धीमी किरणें ठंडी हवा बंद कलियों को फूल बना दे और मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने की बजाय एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना सीखे। कौम, नस्ल, रंग, जात पात और प्रांत के भेदभाव ने देश के नक्शे को बिगाड़ दिया है जिसमें पढ़कर लोग इंसानियत का असली अर्थ भी नहीं समझ पाते। इंसानियत की केवल एक ही कसौटी है, मनुष्य का मनुष्य सम्मान करे, प्रेम करे, वो भी बिना जाति धर्म को देखे।

0: मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। हमारे दिलो दिमाग में ऐसी गुत्थियां पड़ गई हैं जिसकी वजह से आपसी मेलजोल और इंसानियत का एहसास कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में जब जिंदगी, इंसानियत, मौत और जिंदगी के दोहराहे पर खड़ी हो, ऐसी बातों की याद ताजा रखना जरूरी है जो एकता, अमन, प्रेम और शराफत का उपदेश देती हैं।
1: शक्ति भी शांति भी, अभी आप ये चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री सुनील कुमार टोंक का ये काव्य पाठ।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है पेड़। ए दोस्त कौन तू, कब का मुझसे नाता? ए दोस्त कौन तू, कब का मुझसे नाता? लाख सोचने पर भी नहीं हूँ जान पाता। धीरे धीरे पल रहे हम एक धरणी के आंचल में, धीरे धीरे पल रहे हम एक धरणी के आंचल में, साथ साथ खेले हैं सब, बड़े हुए हैं आंगन में। ये अचला जो मेरी अम्ब की भी माता है, शायद इसीलिए तू हर लम्हा साथ निभाता है। लोभ नहीं, कुछ मोह नहीं, बस तू से वरत रहता, धरती का श्रृंगार बना तू, सर्दी गर्मी सहता। कितना सहनशील दृढ़ निश्चय तू, कटने मिटने को तैयार। कितना सहनशील दृढ़ निश्चय तू, कटने मिटने को तैयार। तू ही तो देता रहा सबको शुद्ध शीतल मंद बयार। बच्चे बूढ़े और सभी के जीवन का है जो आधार, धन लिप्सा के वसीभूत मनुष्य कर रहा तुझ पर प्रहार, मनुष्य कर रहा तुझ पर प्रहार। मेरी दूसरी कविता है बिटिया। मेरी छोटी सी बगिया में नन्ही कली, मेरी छोटी सी बगिया में नन्ही कली, देखते ही देखते अचानक खिली। वो बगिया जो सदियों से वीरान थी, वो बगिया जो सदियों से वीरान थी, आज आई उसमें एक नई मेहमान थी। उस सुनसान बगिया का माली था मैं, जीवन में मायूसी एक विराम था। मिलकर उसने जीवन महका दिया, जीने का माली को एक मकसद दिया। मेरी बगिया की अनोखी रौनक है वो, मुझे गर्व है मेरी प्यारी बिटिया है वो, मुझे गर्व है मेरी प्यारी बिटिया है वो। आज जमी पर कल को अंबर छुएगी, आज जमी पर कल को अंबर छुएगी, बेबस बेसहारों का सहारा बनेगी। बिटिया तो कुदरत का वात्सल्य अपार है, ममता सेवा और करुणा जिसका श्रृंगार है। बिटिया तो घर की किस्मत है संवारती, आओ मिलकर उतारें हम सब इसकी आरती, आओ मिलकर उतारें हम सब इसकी आरती। अब प्रस्तुत है मेरा गीत

मेरी अगली कविता का शीर्षक है सिसकी। मन मस्तिष्क सिसक उठा, मन मस्तिष्क सिसक उठा भर गया गिलानी से। मन मस्तिष्क सिसक उठा भर गया गिलानी से। गिलानी नहीं कर्म फल की किंतु मन धिक्कारता कभी। गिलानी नहीं कर्म फल की किंतु मन धिक्कारता कभी। मैं हूँ समाज का हिस्सा गिना जाता जो पुरुष वर्ग में। मैं हूँ समाज का हिस्सा गिना जाता जो पुरुष वर्ग में। अवाक व स्तब्ध था मैं, अवाक व स्तब्ध था मैं देखकर उस पालक पोषक को। खून से लथपथ वो सुकुमारी रस्सी में बंधे हाथ पांव मांस के पिंड में परिवर्तित लाचार माँ की दुलारी को। अवाक व स्तब्ध था मैं देखकर उस पालक पोषक को। खून से लथपथ वो सुकुमारी रस्सी में बंधे हाथ पांव मांस के पिंड में परिवर्तित लाचार माँ की दुलारी को। होता गर्व पुरुष को पौरुष पर नारी को सतीत्व पर अपने। पर क्या यही पौरुष है जो सबको रुला दे। जिसका मात्र एक गंदा विचार संपूर्ण जाति को शर्मसार कर दे। होता गर्व पुरुष को पौरुष पर नारी को सतीत्व पर अपने। पर क्या यही पौरुष है जो सबको रुला दे। जिसका मात्र एक गंदा विचार संपूर्ण जाति को शर्मसार कर दे। नहीं वह मर्द नहीं हो सकता। हाँ जरूर एक भद्दा नासूर है गाली है माँ की उस कोख को जिसने सींचा उसे खून पिलाकर और सदैव बनाना चाहा उसे एक अच्छा नेक आदर्श इंसान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरा एक कविता राष्ट्र के लिए। आओ आज गौरव का अपने भान करें, आओ आज गौरव का अपने भान करें। शीश झुकाकर वीरों का सम्मान करें, शीश झुकाकर वीरों का सम्मान करें। जहां देश धर्म पर दी वीरों ने जान। ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। कबीर सूर और रैदास हुए यहाँ, गांधी सुभाष और आजाद हुए यहाँ। जहाँ अमर शहीदों का है बलिदान। ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। कुहू कुहू यहाँ गाती कोयल, खलिहानों में बसती है पायल। नित यहाँ होवे पूजा और अजान। ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। गुरु गोविंद की कुर्बानी ना भूले हम, गुरु गोविंद की कुर्बानी ना भूले हम। महाराणा की खुददारी ना भूले हम, गुरु गोविंद की कुर्बानी ना भूले हम। महाराणा की खुददारी ना भूले हम। भगत बिस्मिल की बस्ती इसमें जान। ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसा प्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक प्रेरणा गीत प्रस्तुत है वो।

0: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री सुनील कुमार टोंक का काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः 80तमः स्वातन्त्र्य दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि 1 वर्षे 1 कोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260+2,600,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं 9 नियुक्तेभ्यः 5,100,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडु राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई, चेंगलपट्टु, तिरुवरूर, तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्री राधाकृष्णन् चेंगलपट्टु नगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 22तम दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्व राज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य

0: शयानेषु। महिला यात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटल चटिका व्यवस्थायाः अवधिः अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांक पर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बस यात्रायै महिलाः डीटीसी अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बस यानेषु कागद निर्मित पाटल चटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिम दिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यन्तं चतुःपञ्चाशत् देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य पञ्चदश दिनांक पर्यन्तं सामान्य जनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारं उद्यानं प्रातः दशवादनात् सायं षड्वादन पर्यन्तं उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं पञ्चवादनं पर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख

0: तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आज हमारा जानकारी का विषय रहेगा तंबाकू के सेवन से बचें।
2: ये तंबाकू का सेवन एक आदत के तहत है, भोजन का हिस्सा तो नहीं कहेंगे लेकिन आदत का हिस्सा जरूर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके सेवन में पिछले 3 दशकों में कोई खास एप्रिशिएबल गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। स्मोकिंग में जरूर थोड़ी सी कमी आई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन बाकी जो तंबाकू सेवन के तरीके हैं उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आई है। यही वजह है कि गले के कैंसर और इससे मिले हुए कैंसर जो हैं वो उनका अनुपात अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तंबाकू के अंदर कुछ पदार्थ हैं निकोटीन, और इसके अंदर जो कुछ जो प्रोसेस होती है तंबाकू को प्रोसेस करने के लिए, उससे कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जो कैंसर जीन है उस पर सीधे जाकर अटैक करते हैं, तो यही कारण है। तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ अलग प्रकार के तेजाबों का इस्तेमाल किया जाता है इसके प्रोसेस में, जिसके लगातार कॉन्टेक्ट में आने से उन जगहों के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो सिगरेट से रिलेटेड हैं उनका लंग कैंसर की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और लगभग जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनको कैंसर होने की संभावनाएं लगभग 20 से 30 गुना बढ़ जाती हैं। साथ ही फेनी रखने की मुंह में आदत, तंबाकू को गाल के नीचे दबाने की आदत, और तंबाकू का सेवन करने से गले का कैंसर, ओंठों का कैंसर, बकल कैविटी का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, ये कैंसरों की नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा यानी कि बकल कैविटी के कैंसर जो हैं वो मुंह से लेने वाली तंबाकुओं से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये और ध्यान देने की बात है कि इससे ना केवल मुंह के और फेफड़े के कैंसर बल्कि शरीर के हर हिस्से में कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक डिजीज है, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है इस ड्रग का, इसलिए बाकी जगहों पे भी कैंसर पाए जाते हैं। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं जो लोग सिगरेट स्वयं सेवन करते हैं तो वो कुछ अंश धुएं का अपने अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिव स्मोकिंग, और जो अंश वो बाहर निकालते हैं और जिनके आसपास बैठे हुए लोग हैं वो उस धुएं को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ना दुर्भाग्य की बात है कि हर उम्र के बच्चे, चाहे जवान हो चाहे महिला हो, सभी उस धुएं को इनहेल करते हैं, और हर एक व्यक्ति में कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमताएं अलग अलग हो, तो बचपन से ही जो लोग एक्सपोज्ड हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ना केवल कैंसर बल्कि अन्य फेफड़े की बीमारी जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इस दिशा में सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, उन्होंने नो स्मोकिंग जोन्स बनाए हैं, और अगर किसी को ऐसी परेशानी महसूस होती है धुएं से, उसका ये फर्ज है पीने वाले को मना करे कि उनसे कहे कि आप अलग जाके पिए, ये एक कानूनी अधिकार के रूप में सामने आने वाला है। ये पहले जो गर्भवती महिलाओं में जो स्मोकिंग है ये बहुत पहले से इसका ध्यान दिया गया, और इसमें पाया गया कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इसका काफी महत्वपूर्ण असर

0: है, बच्चे के अंग बनने की जो स्थिति होती है गर्भावस्था में उस पर असर पड़ता है और शारीरिक विकास पर को प्रभाव पड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अहम चीज है कि वो एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचाव रखें। सबसे पहले तो स्वयं की भूमिका है, क्या हम वास्तव में इसको छोड़ना चाहते हैं, और अगर हम वास्तव में छोड़ना चाहते हैं, जब इच्छा ये जाग जाती है, तो सिर्फ सिगरेट को फेंक देना ही सबसे आसान विकल्प है। आप सच माने ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुतों ने किया है और बहुत लोग ऐसा शुरुआती दौर में ऐसे करते हैं। इसके मेडिकल रूप में भी कई चार हैं, इसको छुड़ाने के कई सारे तरीके हैं, दवाइयां हैं, इसके पैचेस हैं, च्युइंगम्स हैं, जिसमें निकोटीन की मात्रा काफी कम होती है और उसके जो कुप्रभाव हैं वो बचाए जा सकते हैं। तो चाहे ओपीडी बेसिस पर, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर की बेसिस की सहायता से इसका निदान किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 हुए हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाई नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं, और इस समय की बात करें तो अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है। अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा हमारी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसान भाइयों अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा खरीफ फसलों की देखभाल, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग प्रबंधन और खेतों में जल निकास की व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय वर्षा अधिक होने के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या हो सकती है, इसलिए भैया जो हमारे किसान भाई हैं मौसम और फसल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ कृषि कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें धान की तो धान की फसल में इस समय निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। हमारे किसान भाई खेत में आवश्यकता से अधिक पानी जमा न होने दें, लगातार पानी भरे रहने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक और रस चूसने वाले कीटों की नियमित हमें निगरानी करनी है। अगर हमारे धान की फसल में कोई रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर उचित दवा का प्रयोग कर सकते हैं, और जहां तक संभव हो खेत से जल निकासी की व्यवस्था जरूर रखें। किसान भाइयों खरीफ फसलों में मक्का की फसल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त माह का दूसरा महीना मक्का की फसल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मक्का में इस समय पौधे की बढ़वार तेजी से होती है, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें और आवश्यकता के अनुसार मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, और अत्यधिक वर्षा होने पर खेत से अतिरिक्त पानी निकाल दें। और भैया तना छेदक हो या फॉल आर्मी वर्म जैसे कीटों की निगरानी हमें करनी है, और संक्रमित पौधों या पत्तियों को भैया पहचान कर समय पर नियंत्रण उसका जरूर करना है। उसके लिए हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह ले सकते हैं। किसान भाइयों ये महीना बाजरा और ज्वार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाजरा और ज्वार की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इस समय भैया खेत में जल भराव न होने दें, फसल में तना मक्खी हो, सूट फिलाई या भैया अन्य कीटों की निगरानी हमें करनी है। यदि हमारे पौधे की वृद्धि कम हो रही है या पौधे हमारे कमजोर दिखाई दे तो भैया मिट्टी की स्थिति और पोषक तत्व की उपलब्धता के अनुसार हमें खाद उसमें देना है, और भैया उर्वरकों का संतुलित प्रयोग हमें करना है। किसान भाइयों अगर हम बात करें अरहर उड़द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की तो इस समय जल निकास पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिक समय तक खेत में पानी खड़ा रहने से जड़ों में सड़न और अन्य रोग हो सकते हैं। फसल में पीला मोजक, पत्ती धब्बा और अन्य रोगों की निगरानी हमें करनी है, साथ साथ संक्रमित पौधों को अलग करके उचित प्रबंधन उसका हमें करना है, और साथ साथ हमें भैया खरपतवारों का समय समय पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। किसान भाइयों अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा तिल और मूंगफली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तिल की फसल में जलभराव से विशेष नुकसान हो सकता है, इसलिए हमारे किसान भाई नाली बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दें। मूंगफली में भी जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। पत्तियों पर धब्बे, पीला पड़ना या पौधे के मुरझाने जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ध्यान दें और कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर उसमें आवश्यक कार्य करें, और खेत में अनावश्यक रूप से पानी न रोकें और खरपतवार का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों सब्जी की फसल के लिए भी यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, कद्दू, करेला और अन्य सब्जियां वर्षा के कारण रोग और कीटों के प्रकोप में आ जाती हैं, और इनमें रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई खेत में पानी जमा न होने दें, और साथ ही रोगग्रस्त पत्तियों और फलों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें, और सब्जियों में फल एवं तना छेदक, सफेद मक्खी, माहू और अन्य कीटों की निगरानी करें। अगस्त का महीना खरपतवार नियंत्रण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगस्त में पर्याप्त नमी और गर्म वातावरण के कारण खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, और खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए फसल की अवस्था के अनुसार हाथ से निराई गुड़ाई जरूर करें और खरपतवार का नियंत्रण करें। साथ साथ हमें अपने खेतों में जल निकास का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में सबसे महत्वपूर्ण कार्य खेतों से अतिरिक्त पानी निकालना होता है। खेत की मेड़ों और नालियों की जांच करें, जहां पानी रुका है वहां से जल निकास की व्यवस्था जरूर करें। विशेषकर दलहनी, तिलहनी और

0: जी फसलों में जलभराव होने से जरूर बचाएं। किसान भाइयों, अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा फलदार पौधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आम, अमरूद, नींबू, पपीता तथा अन्य फलदार पौधों में वर्षा के मौसम में रोग और कीटों की निगरानी हमें करनी है। पौधों के आसपास पानी न जमा होने दें, सूखी और रोगग्रस्त और टूटी हुई शाखाओं को हटा दें, बाग में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और गिरे हुए रोगग्रस्त फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। किसान भाइयों, ये महीना पशुपालन और चारा प्रबंधन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। चारे को साफ स्थान से काटकर पशुओं को खिलाएं। सड़ा या फफूंद लगा चारा अपने पशुओं को ना दें और पशुशाला में वर्षा का पानी जमा न होने दें और भैया अपने फर्श को सूखा रखें और साथ साथ पशुओं के पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराएं और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। तो हमारे किसान भाई इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो किसान भाई, कुल मिलाकर बात ये निकल के आती है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में किसान भाइयों का मुख्य ध्यान खरपतवार नियंत्रण, जल निकास, फसल की निगरानी, कीट एवं रोग प्रबंधन और पोषक तत्वों की उचित व्यवस्था पर होना चाहिए और खेत का नियमित निरीक्षण हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को स्थानीय मौसम की स्थिति और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही अपने खेतों में काम करना चाहिए। तो हमारे किसान भाई इन सब बातों को अपनाएंगे तो उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम आज यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आज संध्या 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा हेमंत पाठक के गाए कुछ गीत। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज संध्या 7:50 पर कलाम शायर होंगे काजी विकासुल हक। आज संध्या 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री कुमुद कुमार की कहानी दो शर्ट। कृषि जगत कार्यक्रम में आज संध्या 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे मूंगफली में सामायिक कार्य, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इन विषयों पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे खरीफ में लगने वाले रोग, कीट और उनकी रोकथाम, इस विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से नरेश पाल सिंह की बातचीत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज संध्या 5 जानकारी का विषय रहेगा जल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम के अंतर्गत जल क्रांति अभियान और कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन। आज प्रातः 9:25 पर कार्यक्रम धरती गाती है में सुनिएगा अखिलेश कुमार की गाई चंद रागनिया। साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी संडे में आज दिन में 12:30 पर हमारी आज की फिल्म रहेगी 1993 में आई देश प्रेम से ओतपोत फिल्म तिरंगा। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित पत्रोत्तर कार्यक्रम आपका पत्र मिला, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज दिन में 12:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे प्रताप सिंह चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:18 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए,
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़

0: APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। संपूर्ण राष्ट्र में कल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया तिरंगा, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। UPSTF में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही छिटपुट वर्षा, उमस से मिली राहत, अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देशभर में कल 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
3: भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थीं। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है।
3: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर कल देर शाम तक विविध आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। मुख्य समारोह कल सुबह लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

0: समानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को मजबूती मिलेगी।
2: ये हमारा संकल्प है, हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
1: मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय को ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को अपने आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जन भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जन भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अस्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान के खुलने का समय सुबह 10 बजे और बंद होने का समय शाम 6 बजे होगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कल से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ होगा, रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाली तीज का त्यौहार कल प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत कल से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश

में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। संपूर्ण राष्ट्र में कल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया तिरंगा। कहा, आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपीएसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही छिटपुट वर्षा, उमस से मिली राहत। अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

हर सुबह एक नई रोशनी एक नई उम्मीद लाती है, सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है। उठो देखो सुबह का ये नज़ारा, हवा में है खुशबू और मौसम है प्यारा प्यारा। हंसते रहो मुस्कुराते रहो आप हर दिन, यही है हमारी शुभकामना आपके लिए हर दिन। जी हाँ श्रोताओं, इस प्यारी सी सुबह में कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे देश के लिए बड़ी ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी देश प्रेमी कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी ने जन्म लिया था, जिसने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, आज के दिन ही यानी 16 अगस्त सन 1904 को जन्म लिया था हिंदी की महान कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इनका जन्म इलाहाबाद के एक ग्राम निहालपुर में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी और नागपुर में गिरफ्तारी देने वाली देश की पहली महिला सत्याग्रही बनी थी। इनकी कविताओं में भी देश प्रेम, सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। इन्होंने अपने कंठ की पुकार और कलम की लेखनी से लाखों युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी त्याग कर स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक देने को प्रेरित किया था। इनकी अनेक कविताओं जैसे झांसी की रानी की समाधि पर, वीरों का कैसा

वो बसंत, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती आदि ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी के लिए एक नई उम्मीद की ज्वाला जगा दी थी। आज़ादी की लड़ाई में इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इन्हें इनकी कविता संग्रह मुकुल के लिए सेक्सेरिया पारितोषिक भी मिल चुका है। भारतीय तटरक्षक सेना ने अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रप्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक नियुक्त तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम भी दिया है और 15 फरवरी सन 1948 को एक कार दुर्घटना में जबलपुर लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा और याद किया जाता रहेगा। श्रोताओं, आज का ये दिन एक दुखद दिन की याद भी हमें दिलाता है। आज ही के दिन यानी 16 अगस्त सन 2018 को भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके महान राजनेता, ओजस्वी वक्ता और प्रसिद्ध कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नई दिल्ली में निधन हो गया था। आज इस महान राजनेता की पुण्यतिथि है। हम इन्हें शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजनीति में आने से पूर्व ये एक पत्रकार और लेखक भी थे। इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए और देश एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। देश की सड़कों और राजमार्गों को आपस में जोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। श्रोताओं, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को पूरे भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राजनीति के साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखते थे। इनकी कविताएं राष्ट्रप्रेम, मानवीय संवेदनाओं और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। एक बार फिर से इन महान देशप्रेमी राजनेता को हमारा शत शत नमन।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: गीत संगीत और संदेशों के बाद श्रोताओं, अब समय आ गया है कि आपको इतिहास के उन पन्नों की ओर ले जाया जाए जहां दर्ज है आज के दिन यानी 16 अगस्त की खासियत। जी हां श्रोताओं, 16 अगस्त यानी आज ही की तिथि सन 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान पर कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 16 अगस्त सन 1960 को साइप्रस देश के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद साइप्रस देश साइप्रस गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ये देश सन 1878 में ब्रिटेन के प्रशासनिक नियंत्रण में आया था। और श्रोताओं, 16 अगस्त सन 1906 को चिली के वालपेरिसियासो में आए भयानक भूकंप से लगभग 4000 लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 8.2 थी। श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि किन किन महान हस्तियों ने आज ही की तिथि को जन्म लेकर बनाया आज के दिन को और भी खास। श्रोताओं, 16 अगस्त सन 1970 को जन्म हुआ था हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का। इन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट हिंदी फिल्में दी थी। कार्यक्रम में आगे आपको इन पर फिल्माया एक गीत भी हम जरूर सुनवाएंगे। रजनी कोठारी, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक, राजनीतिक सिद्धांतकार तथा राजनीतिक विज्ञानी भी थे, इनका जन्म भी आज ही की तिथि यानी 16 अगस्त सन 1928 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के 9वें भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी का जन्म भी 16 अगस्त सन 1920 को हुआ था। ये 6 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए थे और वर्ष 2001 को जन्म लिया था भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। इनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने देश के लिए कई स्वर्ण, रजक और कांस्य पदक जीते थे। और श्रोताओं, बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने आज ही की तिथि यानी 16 अगस्त को इस संसार से अलविदा कह दिया था। चेतन चौहान, जो कि प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे, इनका निधन भी 16 अगस्त सन 2020 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये दाहिने हाथ के सलामी बल्लेबाज थे। 16 अगस्त सन 2016 को निधन हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार गुरदयाल सिंह का। इन्हें वर्ष 1999 में ज्ञानपीठ तथा वर्ष 1998 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुस्लिम सूफी भक्ति संगीत की विद्या कव्वाली के महानतम गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन भी 16 अगस्त सन 1997 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने कई कव्वालियाँ और गज़लों को खूबसूरती से अपनी आवाज़ दी। इन सभी महान हस्तियों को हमारा शत शत नमन। श्रोता, अब जानकारी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज यानी 16 अगस्त को एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है जिसे पुदुचेरी का कानूनी हस्तांतरण दिवस कहा जाता है। ये दिवस प्रतिवर्ष 16 अगस्त को सन 1962 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम वस्तुओं के भारतीय संघ में औपचारिक और कानूनी विलय को स्वीकार करने की याद दिलाता है। 16 अगस्त सन 1962 को फ्रांस और भारत के बीच हुई संधि के बाद पुदुचेरी कानूनी रूप से पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया था। इससे पहले किझूर ग्राम में एक जनमत संग्रह भी हुआ था जहां के लोगों ने

फ्रांसीसी शासन को छोड़कर भारत में शामिल होने का फैसला किया था। इस दिन किझूर स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है और उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं जिनके बलिदान की खातिर देश को स्वतंत्रता मिली थी। श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि भारत का हिस्सा पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी फ्रांसीसी औपनिवेशिक विरासत, शांत समुद्र तटों और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। व्हाइट टाउन, पीली औपनिवेशिक इमारतें, कैफे और फ्रांसीसी नाम वाली सड़कें इनकी प्रमुख पहचान है। यहाँ तमिल और फ्रांसीसी संस्कृति का अनोखा संगम भी देखने को मिलता है। श्रोताओं, इतना आध्यात्मिक और शांत वातावरण वाला पुदुचेरी प्रदेश भारत का अभिन्न होने का गौरव प्राप्त करता है। और श्रोताओं, गर्व क्यों ना किया जाए, हमारे देश की शान ही निराली है। इसकी सांस्कृतिक विरासत, बहुमुखी परंपरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा भारत देश अपनी ऐतिहासिक विरासत और गौरवशाली सभ्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जैसे श्रोताओं आप जानते ही हैं कि कल 15 अगस्त को हमने अपने भारत देश का स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन बड़े ही हर्ष उल्लास के मनाया था। पूरा देश तिरंगे के तीन रंगों में सराबोर था। पूरे देश में आज़ादी के तराने, जय घोष गूंज रहे थे। हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा देश के घर घर की छतों पर भारतीय तिरंगा लहराता देखा गया, जिससे प्रत्येक देशवासी के दिल में देश प्रेम की लहर सी दौड़ गई थी। लेकिन श्रोताओं, हमारा आपसे यही कहना है कि देश प्रेम की लहर 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि प्रतिदिन हर भारतीय के दिल में दौड़नी चाहिए। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हर देशवासी तो दिल से तैयार रहना चाहिए, तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। श्रोताओं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं बल्कि देश के लिए मर मिटने वाले उन अनगिनत अमर शहीदों की पहचान है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सीने पर गोली खाते हुए आह तक नहीं की। इसलिए श्रोताओं, इस तिरंगे का हमेशा सम्मान करें, तभी ये राष्ट्रीय त्यौहार सच्चे अर्थों में मनाए जाएंगे। और श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा था कि अब आपको सुनवाएंगे सैफ अली खान पर फिल्माया ये प्यारा सा गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओ, अब एक बार फिर रुख करते हैं फिल्मी दुनिया की ओर और आपको बताते हैं कि आज यानी 16 अगस्त सन 1970 को एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री का जन्म हुआ था जिनका नाम है मनीषा कोइराला। इनका नाम सुनते ही एक भोली सी प्यारी सी सूरत वाली फिल्म सौदागर की मुख्य अभिनेत्री की छवि दिमाग में छा जाती है। जी हाँ श्रोताओ, मनीषा कोइराला एक प्रसिद्ध नेपाली अभिनेत्री है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों की बॉलीवुड फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया है। इनका जन्म 16 अगस्त सन 1970 को नेपाल में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1991 में आई फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में अपनी अभिनय की शुरुआत की थी। श्रोताओं, आपको बता दें कि मनीषा कोइराला का संबंध नेपाल के एक राजनीतिक परिवार से भी है। 90 के दशक में मनीषा ने हिंदी फिल्मों में अपनी एक अलग जगह बनाई। इनकी गिनती अपने दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में होती है। श्रोताओं, बात करें मनीषा कोइराला के फिल्मी सफर के बारे में, तो जैसा हमने आपको बताया था कि वर्ष 1991 की फिल्म सौदागर से मनीषा ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों का कारवां बनता गया। वर्ष 1994 में आई फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से इन्हें एक बड़ी पहचान मिली। सन 1995 में आई फिल्म बॉम्बे जिसका निर्देशन किया था मणि रत्नम ने, इस फिल्म में इनके अभिनय की काफ़ी तारीफ हुई थी। इसके बाद वर्ष 1996 में आई इनकी एक और फिल्म खामोशी द म्यूजिकल जिसमें इनकी अभिनय कला को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। इसके बाद वर्ष 1998 में इनकी फिल्म आई दिल से जिसमें शाहरुख खान के साथ इनकी ये फिल्म बेहद लोकप्रिय रही थी। वर्ष 2012-13 में एक लंबी बीमारी के बाद मनीषा कोइराला ने फिर से फिल्मी दुनिया की ओर रुख किया। मनीषा ने संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्सल सीरीज हीरामंडी में शानदार अभिनय किया था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। मनीषा कोइराला को फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार और वर्ष 1996 में फिल्म खामोशी के लिए स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और श्रोताओं, हमारे और आकाशवाणी परिवार की ओर से भी मनीषा कोइराला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं मनीषा कोइराला जी की ही सुपरहिट फिल्म जो कि इनकी पहली फिल्म थी सौदागर से ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में सम्पन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
4: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में

0: भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
3: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन

0: का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए

0: सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
3: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years of Vande Mataram, celebrating its enduring legacy as a symbol of India's national spirit and pride.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले ही इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनू जहानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मागनस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एजाज बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने कल अपना 80वां योम आजादी मनाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कई अहम ऐलानात किए। कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए वजीर आजम मोदी ने ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ सरकारी मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनू जहानत AI की महारत की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवसित तबके के कुनबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर मालियाती बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुतवसित तबके के कुनबे को कोचिंग क्लासों में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI से हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से नौजवान आलमी AI शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को 3 चीजों, लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: वजीर आजम ने कहा कि आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि साल 2030 में भारत दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो इसे सियासी मसला मनाए बगैर पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करें। योम आजादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तमाम पार्टियों से कहा कि वो आगे बढ़कर ख्वातीन का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की ख्वातीन को कानून साज असेंबलियों और लोकसभा में जल्द से जल्द 33% नुमाइंदगी हासिल हो। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भारत की पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये

0: की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: अपनी नौईयत की पहली सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल इख्तिताम पजीर हुई। इस रिले ने मशरिक में वाकई मुल्क फिजी से मगरिब में अमरीका तक का सफर मुकम्मल किया और इस दौरान 54 ममालिक और मुख्तलिफ टाइम जोन का इहाता किया। वजारत खारजा ने बताया कि सूर्य पथ तिरंगा मुहिम को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मनाया गया। फिजी में भारतीय हाई कमीशन ने शुरू होने वाले इस रिले में तिरंगे के जज्बे को एक तुलिय आफ्ताब से दूसरे तुलिय आफ्ताब तक पहुंचाया गया। इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद भारतीय बिरादरी और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा गया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में वाक अलवर सार्स डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक नए डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस मौके पर राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीर पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इंकशाफ से मुतालिक स्कीम के जवाबी 2026 को नोटिफाई किया है। ये स्कीम आज से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत ऐलान नामा जमा कराने की आखिरी तारीख इस साल 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद कोई भी ऐलान नामा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इंकशाफ से मुतालिक स्कीम 2026 के मालियाती एक्ट के चौथे बाब में शामिल एक बार रजाकाराना इंकशाफ की स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान मखसूस टैक्स या फीस अदा करके ऐसे असासों गैर मुल्की आमदनी या गैर मुल्की असासों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मालूमात का पहले इंकशाफ नहीं किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान की बेदारी में इजाफा करने और इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने में आसानी पैदा करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों के हिस्से के तौर पर एक जामे FAQ दस्तावेज जारी की है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: मुल्क आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। उनकी पहली मुद्दत कार 1996 में सिर्फ 13 दिन की थी। दूसरी मरतबा उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 माह के लिए वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जबकि 1999 से सन 2004 तक उन्होंने मुकम्मल मुद्दत कार पूरी की। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार सदैव अटल पर अहम शख्सियात साबिक वजीर आजम को गुलहाए अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी राजधानी में वाकई उनके मेमोरियल सदैव अटल पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस मौके पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, दिल्ली की वजीर रेखा गुप्ता और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी मौजूद थे। झारखंड में JPSC JSSC उम्मीदवारों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने मुबीना बेजाब्तियों के खिलाफ एहतजाज के ताजा प्रोग्रामों का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: एहतजाज के अगले मरहले के तौर पर तलबा लीडरों ने ऐलान किया है कि आज रियासत के तमाम 24 जिलों में वजीर आला हेमंत सोरेन और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनका एहतजाज 22वें दिन में दाखिल हो गया है, लेकिन उनके अहम मुतालबात अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। रांची में पुतला नजर आतिश करने का प्रोग्राम अल्बर्ट ईका चौक पर मुनाकिद किया जाएगा। तलबा JPSC के 11वें से 13वें इम्तहान और JSSC CGL इम्तहान मनसूख करने के साथ साथ मुबैना बेजाबतगियों की CBI तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने रियासती सरकार को 18 अगस्त तक मुस्बत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी आज रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज करेंगे। इस इकदाम का मकसद रियासत में अहल शहरियों के लिए मियारी हिफ्जान सेहत की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल इस स्कीम को

0: नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ कुनबों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और फी साल फी कुनबा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम होगा। हर अहल कुनबे के रुकन को आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत रियासत के 1307 प्राइवेट और 627 सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तफिदीन अस्पताल में दाखिले से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकेंगे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ICAR कुल हिंद दाखिला इम्तिहान और कुल हिंद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए आर्जी आंसर की जारी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने बताया कि आर्जी आंसर की उसकी सरकारी वेबसाइट पर शाये की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी इत्तिला पर ही एतमाद करें। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि इसमें आखिरी दाखिला शाम 5 बजे तक होगा। देखभाल के लिए हर पीर को बाग बंद रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाग की सैर के दौरान कई अहम मकाम देखने को मिलेंगे, जिनमें बालवाटिका, पुरुमेरिया गार्डन, बैनियन ग्रोव, पोनसाई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। मौसम गर्मा के सालाना एडिशन की एक बड़ी कशिश मकामी और देसी फूलदार पौधे हैं, जो अपनी दिलकश रंगारंगी और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर हैं। देसी पौधों के मजमू में बालसम, गुल मेहंदी और नागफना शामिल है। ये पौधे भारत के भरपूर नबाताती विरासत की अक्कासी करने के साथ साथ बागात में हयातियत तनावों को भी फरोग देते हैं। नई दिल्ली से नितिका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, झारखंड, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कारलसन ने फ्रांस के शहर पेरिस में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी मरतबा ई स्पोर्ट्स आलमी कप का खिताब जीत लिया है। टीम लिक्विड की नुमाइंदगी करने वाले मैक्स कारलसन इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हॉकी में भारत ने कल नीदरलैंड्स के एमस्टिलविन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 1-3 से हराया। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की जानिब से वाहिद गोल सैम वेल्श ने किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राजधानी दिल्ली में तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया और कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति और नई टेक्नोलॉजी की मदद से 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ पर जोर दिया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और जमहूरी सफर में भारत के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इस खबर को आज के सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और मिट्टी के तोड़े खिसकने की खबर को भी अखबारात ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में खवातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कारलसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने जिंदगी में अक्सर धोखा खाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को जलाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है।

मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोर का ये गीत। शब्द रचना राजकवि तुलसी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तुमसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो वे ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं।

झिलमिल सितारों का आंगन होगा। जी हाँ श्रोताओ, अभी ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु से। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ ज़रूरी संदेश।

0: चैनल अर्पण चंदन का एहसास।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म कुर्बानी से। आवाजें हैं कंचन, मनहर उदास और आनंद बख्शी की। गीत लिखा है इंदीवर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है।

कुर्बानी। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कंचन मनहर उदास और आनंद बख्शी को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत लिखा है SH बिहारी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को। और श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मुकेश के सुर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। और श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी लखनऊ

0: उसे ही आप सुनेंगे सामायिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे सावन में प्रदेश के प्रमुख शिव धामों में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए खास इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: पवित्र सावन मास भगवान शिव की आराधना, आस्था, तप, सेवा और सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। सावन में बड़ी संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु गंगा, यमुना और दूसरी पवित्र नदियों से जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। उत्तर प्रदेश में सावन में आस्था का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां एक ओर मंदिरों में हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष गूंज रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शासन पूरी व्यवस्था कर रहा है।
3: उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
2: सावन में शिव भक्ति के रंग में पूरा प्रदेश रमा नजर आ रहा है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी इस समय अलौकिकता और आध्यात्मिकता के नए आयाम रचती नजर आती है। वाराणसी में सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत उत्सव है। सावन में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुँचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।
4: सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी पुलिस कर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं, उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए।
2: काशी विश्वनाथ धाम के अलावा सावन में यहाँ के महामृत्युंजय महादेव, तिलभांडेश्वर, मार्कंडेय महादेव, काल भैरव, केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी के सैकड़ों प्राचीन शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सावन के दौरान धार्मिक पर्यटन भी अपने चरम पर होता है, जिससे स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, होटल और परिवहन व्यवसाय को भी नई गति मिलती है। यहाँ व्यापार मंडल के सुरेश तुलसियान ने बताया कि प्रशासन ने सावन में हर सुविधा का ख्याल रखा है।
5: तो सरकार के द्वारा भरपूर हो रहा है, पूरी आपका जो शिविर भी लग रहा है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था है, कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाए। कांवरिया आराम से जाकर के बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें, यही जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है।
2: वाराणसी में देवों के देव महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कांवड़ यात्रियों की भक्ति, आस्था और समर्पण का साक्षी बन रहा है। यहाँ के कई जिलों का धार्मिक महत्व तो है ही, बड़ी संख्या में कांवड़ियों के इन जिलों से निकलने के कारण यहाँ माहौल भक्तिमय दिख रहा है। सबसे पहले बात हापुड़ की करें तो हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रिजघाट सहित जिले के प्रमुख मार्गों पर बोलबम के जयकारे गुंजायमान हैं। हरिद्वार के साथ साथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी से श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिवालयों में भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करते हैं। यहाँ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुगम और दुर्घटना मुक्त सम्पन्न कराने के लिए जनपद को 3 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। ब्रिजघाट, सबली मंदिर, हापुड़ और शिव मंदिर छपकौली में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। नगर पालिका परिषद हापुड़ के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि साफ सफाई के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पिंक बूथ स्थापित कराए गए हैं, जिससे महिला कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
6: लोगों ने अपने क्षेत्र को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त कर, हम लोगों ने खंभों के माध्यम से टेम्पररी रूप से पूरी तरह से लाइटिंग की व्यवस्था बुलंदशहर रोड पे आगे तक कराया है, बाईपास तक, ताकि कांवड़ियों को सुगमता के साथ आने जाने में कोई बाधा अड़चन न पड़े। दूसरी चीज ये है, 2 चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए, ताकि उनको कपड़े में नहाने में कहीं कोई दिक्कत न आवे, कोई बाधा। के साथ साथ हमारी डीएम मैम का निर्देश था कि हम लोगों के द्वारा एक आदर्श कांवड़ शिविर की स्थापना किया जाए, तो हम लोगों ने, पालिका ने कृष्णा पार्क में, वहां पे हम लोगों ने एक बेहतर व्यवस्था किया है।
2: मेरठ में

0: रमजान का महीना और कांवड़ यात्रा का बहुत ऐतिहासिक और गहरा महत्व है। मेरठ न केवल कांवड़ियों के प्रमुख मार्गों का केंद्र है, बल्कि यहां स्थित ऐतिहासिक औघरनाथ मंदिर में सावन के दौरान लाखों शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। SSP अविनाश पांडे ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर डॉग स्क्वाड के माध्यम से सुरक्षा जाँच की जा रही है। वहीं मेरठ पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है।
1: यहां पर कई सारे बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ से जो भी फीड देखा जा रहा है, जितने भी भारी वाहन किसी भी कांवड़ मार्ग पर आ रहे हैं या कहीं पर भी कोई अन्य बात सामने आ रही है, उसके बारे में हम लोग लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और चाहे सड़क पर आवारा पशुओं का मामला हो, कहीं पर कूड़े का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसमें तत्काल जो ICCC में हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको अवगत कराया जाता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 मिनट से कम के रिस्पॉन्स टाइम में इन सभी चीजों को रिजॉल्व किया गया।
0: हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले लाखों शिव भक्तों का मुख्य मार्ग मेरठ से होकर गुजरता है। गंगा जल लेकर यहाँ आने वाले कांवड़िए व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
2: पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाई है और कांवड़ियों को हर चीज की सुविधा दी है। कहीं पे ट्रैफिक कोई जाम हो रहा है तो उनको निकलने के लिए पूरे पुलिस वाले अपने साथ छोड़ के आना, लेके आना, और हर चीज की गाड़ी, एम्बुलेंस और खाने पीने की, और कहीं रुके तो लाइट की व्यवस्था, और कहीं कांवड़िए बैठे होते कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा उनका वो रहा सफर।
0: मेरठ में महादेव की आस्था का भाव परवान पर है, तो गाजियाबाद का भी यात्रा में अत्यधिक महत्व है। मुरादनगर को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, जहां से बड़ी संख्या में कांवड़िए जल भरते हैं। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद गाजियाबाद को सेक्टर और जोन में बांटकर सुरक्षा सुविधा के जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
3: सारी तैयारी हमारी पूरी है। हम लोगों ने व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पूरे हमारे क्षेत्र को 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 108 सब सेक्टर लगाए थे। 11 पूरे जोन बनाए गए हैं। सभी जगह हमारे ऑफिसर्स की और जूनियर स्टाफ की तैनाती की गई है। 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुलिस के माध्यम से CCTV कैमरा, वॉचटावर आदि के द्वारा भी निगरानी की जा रही है, तो सारी तैयारियां हैं।
0: वहीं गाजियाबाद में प्रसिद्ध दूधेश्वरनाथ मंदिर में भी भक्त बहुत उत्साहित दिखाई दिए। दूधेश्वरनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में सावन मास के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। यहां दर्शन करने आए सौरभ सिंघल ने सावन में शिव भक्ति को अद्वितीय बताया।
4: घर से अपना जल लेकर आए थे और फूल लेकर आए थे, फूलमाला, चंदन वंदन, चावल, मिष्ठान, ये सब चीज चढ़ाने के लिए लेकर आए थे। और काफी प्राचीन मंदिर है और काफी नामी मंदिर है, पूरे गाजियाबाद का काफी अच्छा मंदिर है।
0: गाजियाबाद के बाद बागपत की, यहाँ स्थित पूरा महादेव मंदिर कांवड़ यात्रा का मुख्य केंद्र है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान परशुराम ने यहाँ गंगा जल से जलाभिषेक किया था। यहाँ लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और गौमुख से कांवड़ लाकर जलाभिषेक करते हैं। सावन में यहाँ आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में आस्था के विलक्षण भाव देखने को मिलते हैं। 3 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मेला परिसर और प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि प्रशासन इस बार मेले को जीरो वेस्ट थीम पर आयोजित कर रहा है, ताकि श्रद्धालु स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल मेले में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।
5: जो हमारी प्रमुख पहल है वो है जीरो वेस्ट और उसका मैनेजमेंट, और जो एक यूज के प्लास्टिक होते हैं उसका भी एक सर्कुलर रूप से उसको हम लोग फाइबर में क्रिएट करके उसमें डॉल्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा कलावा की राखियां भी और बहुत सारी इसी तरह से चीजें हम लोग बना रहे हैं, ताकि एक सुदृढ़ एक अर्थव्यवस्था हम क्रिएट कर पाए।
0: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर प्रदेश के प्रमुख पड़ावों में से एक है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जाने वाले शिव भक्त मुजफ्फरनगर के मुख्य शिव चौक से गुजरते हैं। इस बार भी शिव चौक शिव भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में शिव भक्त और कांवड़िए यहाँ बाबा भोलेनाथ के समक्ष माथा टेक कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शहर में जगह जगह शिव भक्तों के लिए शिविर लगाए गए हैं, जहाँ भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। यहाँ कांवड़ यात्रा पर आई महिला कांवड़िया मनीषा ने व्यवस्थाओं पर खुशी जताई।
6: हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं। मैंने लड़के की नौकरी की मनोकामना की थी, जो भगवान ने पूरी कर दी है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था प्रशंसनीय है।
0: काशी की दिव्यता से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों तक हर जगह शिव भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवा भावना और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था इस यात्रा को और भी भव्य बना रही है, क्योंकि सावन का पावन महीना केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि सेवा, सामाजिक समरसता और अनुशासन का भी प्रतीक है।
7: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे सावन में प्रदेश के प्रमुख

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अखिलेश कुमार की आवाज में कुछ रागनियां। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अगली रागनी।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है और इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अखिलेश कुमार की आवाज़ में कुछ रागनियाँ। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम की ये अगली पेशकश।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं अखिलेश कुमार की आवाज में कुछ रागनियां।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अखिलेश कुमार की आवाज़ में कुछ रागनियाँ। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अंतिम रागनी

0: अखिलेश कुमार की आवाज़ में अभी आप ये रागनी सुन रहे थे। इसी के साथ ही कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रविकांत वर्मा और मेरे साथ
1: मैं हूं श्रोताओं विवेक प्रताप सिंह, हम दोनों का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत अपने नाम के साथ। तो हम आपको अपना नंबर बता देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें

0: व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पत्र तो आपके हमारे पास हैं ही। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम और देखिए हमने आपको अपना यहाँ नंबर बताया और हमारी स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं
1: जी,
0: तो शुरुआत करते हैं विवेक जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला मैसेज हमारे पास आया है सराय मीर स्ट्रीट नगीना से। फरमाइश करता है रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार। और ये पत्र हमारे पास आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। इस गीत को सुनना चाहते हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से। लिखने वाले हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अजीम बाकी, अलीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी और अलमीर जन्नत।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: ये पत्र भी हमारे पास है और ये पत्र आया है साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से। लिखने वाले हैं विजय वर्मा, मंजू वर्मा, अर्पित वर्मा और वैष्णवी वर्मा।
1: मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, मोहन करांगले। जी गांव विदर्भ से हैं बसंत राव भोजने और पी एस नावकर। और आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है और पत्र के माध्यम से हमारे पास ये फरमाइश भेजी है मोहल्ला धर्मदास चौक बाजार नजीबाबाद जिला बिजनौर से रूपा वर्मा, तनु वर्मा, विशाल वर्मा, आराध्या वर्मा, अगम्य वर्मा, शिवांश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, प्रभा, पूजा, स्वाति, प्रिया, तुषार और युवराज वर्मा ने।
1: सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और पुनावले पुणे से हैं अजय सोनावने, करिश्मा सोनावने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। ये मैसेज हमारे पास आया है ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जादव, अनुसुईया जादव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से हैं मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। और ये देखिए ये हमारे पास मैसेज आया है
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बौड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।
1: मोहल्ला अफगानान शेरकोट से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जन्नत और मोहम्मद जैन। आप हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, बरकाकाना से हैं नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और इफ्तिखार इब्राहिम।
0: तो शतौ इन सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे का ये पहला गीत आपकी फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अंदाज, गीतकार है हसरत जयपुरी और इस गीत के लिए संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीत तुम्हारे, तो उठाइए अपना फ़ोन और भेजिए हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज, अपनी फरमाइश लिखकर। हमारा नंबर है 9457078288 9457078288। आप करिए हमें मैसेज, हम आते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है और देखते हैं हमारे अब अगले श्रोता कौन है।
0: जी, आप हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, सोहन जोशी।
3: और ये पत्र हमारे पास आया है ग्राम नंगला भुवन नजीबाबाद जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं।
0: गांव वरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और आप हैं पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव जेवरा हिसार से। फरमाइश करता है वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण।
3: इसी गीत को सुनना चाहा है कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि।

0: और ये मैसेज हमारे पास आया है श्री रघुनाथपुर जिला गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। फुलोंग नजीब निजामाबाद से हैं, एमए वाहिद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है नजीमाबाद पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे ये श्रोता हैं,
1: हल्द्वार जिला बिजनौर से लिखने वाले हैं, माही वर्मा, कामिनी वर्मा, उपासना वर्मा, आस्था वर्मा और इनके मम्मी पापा।
0: लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती, मनोहर भाई बागरे और प्रभुलाल बागरे।
1: जसपुर रोड ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से लिखने वाले हैं, महमूद महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और अल्फिजा परवीन।
0: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से हैं, राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, साइना, महबिश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। ये मैसेज हमारे पास आया है पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर जिला बिजनौर से, एम ताहिर और इद्रीस हिलाल जैन प्लांट देहरादून से हैं,
1: शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, कादिर चौधरी और बेगम रिहाना चौधरी।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी का।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से, मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम और बेगम शबनम अनवार।
0: ग्राम नगला उबन नजीबाबाद से हैं, ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर, देवा, ओम प्रकाश, छोटी, घनश्याम, शीतल, इन सभी ने सुनना चाहा है मोहरा फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार विजू शाह।

मोहरा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए फिर से सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और

0: दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे नए श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से हम अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। और विवेक, देखना मैसेज अब लगातार हमारे पास आ रहे हैं। ये किन का मैसेज है?
2: ये मैसेज है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कवल।
1: ये पत्र हमारे पास आया है ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और नरगिस खातून का।
2: और जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से ही ये मैसेज हमारे पास आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। और आप हैं?
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है अहमदपुर खैगांव खंडवा से। लिखने वाले हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली।
2: और इसी गीत को सुनना चाहा है नाज पैलेश अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी का।
1: ये पत्र हमारे पास आया है चौक बाजार नजीबाबाद जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, अनिमेश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य।
2: मोहल्ला हलवाईयान जिला बिजनौर शेरकोट से हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है सब्जी मंडी नजीबाबाद जिला बिजनौर से, विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों का।
2: कोरिया से हैं डोनट पावो, छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जयपुरिया और गोरैया जालंधर से हैं अशोक जाटव।
1: ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, शीतल, काजल, राजपाल, पंकज, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और सोनी।
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं दुखीराम यादव, स्नेहलता और कौशल्या यादव।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है और हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। लिखने वाले हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ये मैसेज हमारे पास आया है परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीर सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।
2: राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज नेहटोर बिजनौर से हैं बबीता रानी और सोमेंद्र सिंह।
1: शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल, मार टेकड़ी अमरावती से प्रशांत डेकरे, वर्षा डेकरे और श्रद्धा डेकरे।
2: खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है और हमारे पास मैसेज भेजा है विलेज और पोस्ट राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का चौहान और भव्य चौहान ने। इसी गीत के लिए हमारे पास मैसेज किया है और ये हमारे पास
2: वर्ली मुंबई से हैं नवाब खान, इशरत जहां और मास्टर अजहर खान, इनके साथ हैं अजीम खान।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है और हमारे पास मैसेज किया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
2: इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है मीरापुर बेगा पोस्ट मंडावली तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से कासिम पेंटर, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद उबैश, डॉक्टर विजय, रोहतक सिंह और

0: शादी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसे बुला देंगी प्लीज?
1: अरिजीत और पलक मुच्छल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी यादों में आओ का ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है दिल्ली

0: शहर मोरी गेट से ही कन्हैयालाल, रीता देवी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं।
1: आप हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान बारसी।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं पागबड़ा जिला यवतमाल से अनिल, उषा बुरांडे और अनुश्री धनश्री बुरांडे।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
0: बरेली मुंबई से नवाब खान, इशरत, जहां भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं और इसी गीत को सुनना चाहा है।
1: कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक ने। आप हैं नाला सोपारा मुंबई से शेख नजमा बेगम, मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा शेख, माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम।
0: वजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडो खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवांशी वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है करणवीर हाउस भूचो केचिया बटिंडा पंजाब से, लिखने वाले हैं परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजीत।
1: आप हैं ग्राम गोकुल नगला, पोस्ट जारियनपुर, तहसील कलान, जिला शाहजहांपुर से, ओमपाल सिंह कुशवाहा, मुखराम सिंह कुशवाहा, अंसुल कुशवाहा, आरब कुशवाहा और सीमा कुशवाहा।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है और हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा है।
1: आप हैं यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, और इसी गीत को सुनना चाहा है, ये फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम गधरोना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदनगिरी, बिमलागिरी, भारतगिरी, सोनियागिरी, बलरामगिरी, मधुगिरी, सिमरनगिरी, गोविंदगिरी, वंशिकागिरी, रमनगिरी और दिव्यागिरी की।
0: और इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम पंचायत कड़का सिरोड़ से, लिखने वाले हैं रामेश्वर देशमुख, पूजा ताई, कुमार सरबत, सानवी, हर्षिता और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है जोधले आरती, नांदेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं
1: प्रभाकर जोधले,
0: प्रभाकर जोधले
1: जी। और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू और कुंती साहू।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है पारसमणि रेडियो श्रोता संघ, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से, सुधाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई, सिलोड़ जिला, छत्रपति संभाजीनगर औरंगा महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोकड़े। इसी गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। आप हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, निशा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: तो श्रोताओं आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म सौदागर का ये प्यारा सा गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: और विवेक देखो लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और फरमाइश सबकी बहुत ही लाजवाब है ना।
1: जी बिल्कुल, और इतने मैसेज आ रहे हैं कि
0: बिल्कुल
1: हमारे जो श्रोता हैं
0: हाँ
1: वो दोबारा दोबारा भी मैसेज कर रहे हैं,
0: दोबारा भी मैसेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता नहीं जानते कि हम भी पार की नजर रखते हैं ना।
1: हाँ, और देखिए एक आध मैसेज पढ़ा भी जाता है तो उसकी शिकायत भी हाथों हाथ
0: आ रही है हमारे पास। लेकिन श्रोताओं आपको भी ये समझना चाहिए, जो हमारे नए श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो, है ना। तो ये मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है?
1: ये मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से, बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिवान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी,

0: शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी का।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है मुंदीचक भागलपुर बिहार से। लिखने वाले हैं दिलीप कुमार सैनी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। ये अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है विवेक?
0: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से ये फरमाइश हमारे पास आई है। राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा की।
1: ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम नंगला खेड़ा फागबड़ा पंजाब से। लिखने वाले हैं बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा।
0: आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला कटरा मंडी ददोना जिला अमरोहा से। लिखने वाले हैं महफूज हसन, फिरदौस अंसारी, हुमा हिफ्जा, जिक्रा हबीबा और हसन चिट्टू। इसी गीत को सुनना चाहा है और हमारे पास मैसेज किया है।
0: जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है और मैसेज किया है हमारे पास लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। लिखने वाले हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है विवेक? देखना,
0: ये मैसेज हमारे पास आया है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव।
1: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से। ये हैं मैं मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबूबाई खत्री।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध और अंकित कांगड़ा।
1: और इसी गीत को सुनना चाहा है और ये मैसेज करते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। और ये मैसेज कहाँ से आया है?
0: ये मैसेज आया है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नु गोस्वामी। और ये मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने मैसेज लिखकर डिलीट भी कर दिया है। ये हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। आप हैं
1: ये हमारे श्रोता मैसेज भी कर रहे हैं और लगातार उसे डिलीट भी कर रहे हैं।
0: जी हाँ, उनके मैसेज जब पढ़े नहीं जाते बहुत देर तक तो गुस्से में आकर डिलीट कर
1: लेकिन नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है।
0: जी, इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप का।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। लिखने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू और हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार।
0: और इसी गीत को सुनना चाहा है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख।
1: तो चलिए श्रोताओ, आप सभी की पसंद पर हम भी सुनते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास ने। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाल दुपट्टा मलमल से अनुराधा पोडवाला और पंकज उदास को। और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत के लिए हमारे पास मैसेज आया है
1: आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव का।
0: और इसी गीत को

0: सुनना चाहते हैं और हमारे पास मैसेज किया है गगन गोला दातागंज जिला बदायूं से, इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान।
1: और आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और अहले खाना।
0: और ये मैसेज हमारे पास किया है और बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें भेजा है। लिखने वाले हैं सैयद आलम हाशमी, हाशमी परिवार, नाज पैलेस, अजमेर शरीफ से।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है बिहार एनक्लेव दिल्ली से। लिखने वाले हैं नरेंद्र कुमार जाटव और उमा रानी जाटव, चंद्रनगर सहारनपुर से, ओम प्रकाश चौहान और सोनाली चौहान।
1: और यही फरमाइश हमारे पास आई है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। देखिए इन्होंने बहुत सारे जो हैं फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं,
0: बहुत सारी फरमाइश हमारे पास इन्होंने भेजी है,
1: नाम सिर्फ एक ही है। और ये मैसेज है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करबी और हिमाक्ष का।
0: और इसी गीत को सुनना चाहा है कुमार हेड़ा सहारनपुर से। लिखने वाले हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्षा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम।
1: गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है और हमारे पास मैसेज किया है। लिखने वाले हैं टाउन सेक्टर 8 भिलाई से बेगम अनुश्री, प्रदीप, राजश्री और प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से जानवी डोमिन, पिंकी और दीपा डोमिन, डोंडी लोहारा से फर्जी हरिशंकर बेलदार और परजू प्रभारानी, जेल रोड रायपुर से रायगढ़ से उमा राज और जगदीश राज भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: लक्सर रोड गांव सुहाड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से हैं मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कहकशां और पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है
0: ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से। लिखने वाले हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक।
1: और आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
0: इसी गीत को हमारे पास सुनने के लिए मैसेज किया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। लिखने वाले हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। तो आइए श्रोताओं इन सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे का। ये अंतिम गीत उदित नारायण और सपना मुखर्जी के स्वर में, फिल्म का नाम है यलगार। गीत लिखा है सुदर्शन फाकिर ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है चन्नी सिंह ने।

0: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी रविकांत वर्मा को अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में आगे आपके साथ बने रहेंगे विवेक प्रताप।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और अनवर की आवाज़ में अभी आपने सुना हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है यशवंत फिल्म से। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और साथी। शब्द रचना समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: गोपी किशन। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ में, बोल थे समीर के, संगीत था आनंद मिलिंद का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
4: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
3: UP 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
4: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
3: UP 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिप आपात केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार राजेश रोशन।

पृथ्वी फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। गीतकार थे जलीस शेरवानी और संगीतकार विजू शाह। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है रेखा भारद्वाज की आवाज़ में गुलाल फिल्म से। गीत और संगीत है पीयूष मिश्रा का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिकेता केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है ज्योति। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है अनुराधा पौडवाल और सुरेश ओबेरॉय की आवाज़ में। फिल्म है यादों के मौसम। गीतकार हैं सलाउद्दीन परवेज और संगीतकार आनंद मिलिंद।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है अल्ताफ राजा की आवाज़ में, शपथ फिल्म से। शब्द रचना है समीर की, संगीत है आनंद मिलिंद का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 पर प्रसारित होगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रिले किया जाएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। अब से कुछ देर बाद 12:05 पर होगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला। फिल्मी संडे कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म तिरंगा की कहानी। अपराह्न 1:15 पर बाल वाटिका कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी विश्व मानवतावादी दिवस और सद्भावना दिवस के बारे में। महान विभूति क्रम में आप सुनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। इसके अलावा पेश

फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक आधारित होगा सैफ अली खान और अन्य कलाकारों पर। कार्यक्रम का वक्त रहेगा अपराह्न 2:30 पर। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जल क्रांति अभियान और कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर मंथन कार्यक्रम का विषय होगा क्या विरोध प्रदर्शन ही बदलाव का एकमात्र साधन है।

कृषि जगत कार्यक्रम होगा संध्या 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा मूंगफली में सामायिक कार्य और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से नरेश पाल सिंह की भेंटवार्ता का विषय होगा खरीफ में लगने वाले रोग, कीट और उनकी रोकथाम।

शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेमंत पाठक के गाए कुछ गीत। शाम 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम में कलामी शायर होंगे काजी विका उल हक।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपसे सीधे जुड़ते हैं आपके मैसेज और आपके पत्रों के माध्यम से। और मैं हूं कार्यक्रम लेकर आपके साथ विवेक प्रताप सिंह, मेरे साथ हैं
1: रविकांत वर्मा।
0: हम दोनों का आपको प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: तो रविकांत जी, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, देखिए हमने नंबर भी नहीं बताया और मैसेज आ चुके हैं और पत्र भी हमारे पास कुछ रखे हुए हैं। पत्रों की संख्या कुछ हद तक कम है लेकिन मैसेज हमारे पास भरपूर हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो हमें
1: क्यों ना एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को नंबर बता दिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, नंबर हम बता देते हैं, हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457078288। तो करते हैं

0: आपके मैसेज और खत पढ़ने का सिलसिला शुरू। देखते हैं किनका मैसेज है हमारे पास। ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम गधारोना पोस्ट लंढोरा रुड़की से मदन गिरी का। लिखते हैं, सुबह से ही प्रोग्राम सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, चाहे वंदना हो, रामचरितमानस हो, चिंतन हो, काव्यधारा हो, सूरज के साथ साथ हो, गोल्डन हिट्स हो, धरती गाती है, गीत तुम्हारे, चित्रपट संगीत, युववाणी, कृषि जगत, गीत संध्या, खेल दर्पण, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। सभी प्रस्तुतकर्ता बड़ी मेहनत और लगन से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी को मेरी ओर से बधाई। मेरा ये सुझाव है कृषि जगत कार्यक्रम में महिलाओं को भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए, जिससे कार्यक्रम और भी जागरूक हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आपने लिखा है। और ये मैसेज आया था हमारे पास मदनगिरी ग्राम गधारोना पोस्ट लंढौरा रुड़की से। आप चाहते हैं कि ये जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसमें महिलाओं को भी मौका दिया जाए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हमने नोट कर लिया है और अपने उच्च अधिकारियों तक हम आपका ये सुझाव पहुंचाएंगे। जैसा कि आप सुनते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत सारे कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, तो देखिए हम सभी का ये प्रयास रहता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाए, ताकि आपका मनोरंजन और आपको अच्छे भी लगे। सभी प्रस्तुतकर्ताओं की मेहनत आपको बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का।
1: लिखते हैं
0: ये लिखते हैं, हम आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं, मुझे और मेरे परिवार वालों को पसंद भी आ रहे हैं, जैसे सूरज के साथ साथ गीत तुम्हारे, आपके फरमाइश, हेलो नजीबाबाद, जिंदगी लाइव, रात के हम सफर, आपका पत्र मिला, कृषि जगत आदि। शुक्रवार के दिन हेलो नजीबाबाद सुना जो सचिन शर्मा जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। कल का गीत तुम्हारे प्रोग्राम सुना जो मनोज वर्मा जी ने पेश किया, 30 मिनट में बहुत सारे खत और मैसेज शामिल किए। आज के गीत तुम्हारे में विवेक जी और रविकांत जी ने बहुत अच्छे गीत बजाए, मैसेज भी बहुत शामिल किए। एक युववाणी की शिकायत है, युववाणी प्रोग्राम 45 मिनट का होता है, सोमवार के दिन गपशप अड्डा फोन इन प्रोग्राम होता है, वो भी सोमवार को, उसमें 45 मिनट में दो कॉल शामिल करते हैं, बातों बातों में प्रोग्राम समाप्त कर देते हैं, इस पर ध्यान दें। ज्योति जी, ताहिर जी, महमूद जी, धर्मेंद्र जी, राजवीर जी, सभी प्रोग्राम अच्छा पेश कर रहे हैं।
1: देखिए, ये मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप और शीतल कश्यप और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और इनके परिवार भी एक साथ बैठकर सुनता है, ये हमें बहुत खुशी होती है कि पूरा परिवार हमारे कार्यक्रम सुनता है और लगता है कि हमारी मेहनत भी सफल हो जाती है। इसके अलावा आपने कहा है कि शुक्रवार के दिन हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम आपने सुना जो सचिन शर्मा जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। तो यदि सचिन शर्मा जी आपकी आज का ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो उन तक आपकी ये जो पत्र है पहुँच चुका होगा। और जैसे कि आपने कहा कि कल गीत तुम्हारे कार्यक्रम में मनोज वर्मा जी ने पेश किया और 30 मिनट में बहुत सारे खत और मैसेज शामिल किए, आज का गीत तुम्हारे भी आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मनोज वर्मा जी जो कार्यक्रम करते हैं बहुत ही बेहद दिल से करते हैं, और उन्हें अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज के भी कार्यक्रम के सभी गीत आपको बहुत अच्छे लगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने लिखा है कि आगे युववाणी प्रोग्राम 45 मिनट का होता है और सोमवार के दिन गपशप अड्डा फोन इन प्रोग्राम में जो दो ही कॉल ली गई, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जो युववाणी प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और सारे सेगमेंट को और आपके लिए मनोरंजन कार्यक्रम और गीतों को शामिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो रहा होगा कि उस समय एक समय का थोड़ा सा अभाव रहा होगा, इसके कारण ऐसा हुआ होगा। और बहुत सारे हमारे प्रेजेंटर्स के नाम आपने लिखे हैं, ज्योति जी, ताहिर जी, धर्मेंद्र जी, राजवीर जी, इनका कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और ये पत्र मेरे पास रखा हुआ है,
1: बिल्कुल पत्र भी हमारे पास है, तो पत्र पढ़िए।
0: और देखिए, एक पेज का पत्र है हमारे पास और इस पर फोटो लगा हुआ है हमारे श्रोता का, इन्होंने लिखा है बहुत ही क्लासिक शायरी जो हम जिसको हम कहीं भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्यार से।

0: लिखी है, लिखा है चम्मच में चम्मच चम्मच में जीरा, चम्मच में चम्मच चम्मच में जीरा, हमारा आकाशवाणी परिवार जैसे लाखों में हीरा।
1: बिल्कुल, बहुत
0: और एक
1: सुंदर।
0: और शायरी इन्होंने लिखी है, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, पत्र है गरीब का जवाब दीजिए।
1: जी ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि पत्र गरीब का हो या अमीर का हो, यदि आपने पत्र लिखा है और आकाशवाणी से आप प्यार करते हैं तो शामिल आपका पत्र जरूर होगा। और विवेक, आपको रोककर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो शायरी है आपको कुछ बचपन के दिन याद नहीं आ गए, है ना?
0: बिल्कुल, मैंने वही
1: जैसे
0: कहा
1: हम
0: कि बड़ी
1: नंबर्स
0: ही
1: पर लिखते थे,
0: क्लासिक। जी
1: छोटे
0: जी
1: छोटे कार्ड बनाया करते थे, उन
0: हाँ
1: पे लिखा करते थे, है ना?
0: जी,
1: बहुत ही
0: बड़ी।
1: प्यारी सी शायरी, वास्तव में आपने बचपन याद दिला दिया।
0: तो इन्होंने लिखा है, सेवा में सभी ने निवेदन यह है कि सबसे पहले अनीता पंत और सपरिवार की तरफ से शोभित शर्मा और अंकित सैनी जी और समस्त आकाशवाणी परिवार को सादर सहित हाथ जोड़कर नमस्कार। आगे समाचार यह है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमारे पत्रों को सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कार्यक्रम में जब भी पत्र लिखते हैं तो हम यही सुनते हैं कि आप कोई शिकायत करें। हम आपके किसी भी कार्यक्रम में शिकायत कैसे कर सकते हैं जब हमें आपके कार्यक्रम में कोई शिकायत ही नहीं मिलती, ना ही आप कोई शिकायत आने का मौका देते हैं। हमें बेवजह किसी भी प्रोग्राम में त्रुटि निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है, अतः आप आगे से ये बात मत कहिएगा। बाकी हमें सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और सभी उद्घोषक हमें अच्छे लगते हैं और बड़े ही मेहनत से कार्यक्रम पेश करते हैं और हमें आपसे किसी भी प्रकार की शिकायत ही नहीं रहती। और इन्होंने नोट करके आगे लिखा है, अगर आपको हमारे पत्र लिखने में कोई त्रुटि या नाराजगी महसूस होती है तो हम आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। देखिए, प्यार भरा ये जो
1: पत्र
0: हमारे
1: लिखा
0: पास
1: है जी,
0: पत्र लिखा है और आखिरी में जो नोट करके इन्होंने
1: हाँ
0: लिखी है
1: बहुत ही
0: बात।
1: प्यारा है। तो सबसे पहले अनीता पंत जी और सह परिवार की ओर से ये पत्र हमें प्राप्त हो चुका है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज डिजिटल युग में भी ये पत्र लिखा और हमारी पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी। सबसे पहले तो जैसे कि आपने लिखा है कि कोई त्रुटि या कोई शिकायत आप लिख कर भेजा करें, तो देखिए हमारा फर्ज होता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, है ना? शिकायतें तो किसी की हो ही जाती है, और यदि आपको कुछ पसंद हो और हमें वो ना पसंद हो, या हमें जो पसंद हो वो आपको ना पसंद हो, ऐसा हो सकता है ना? तो इसलिए हमें कहना पड़ता है कि यदि कोई भी शिकायत या कमी आपको लगती हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। वैसे तो कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, बहुत से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। अनीता पंत जी, इतना प्यारा पत्र लिखने के लिए मेरठ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे एक
0: जी
1: पत्र भी शामिल कर लेते हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज है।
0: जी, ये लिखा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी जी ने, और ये लिखते हैं, बड़ा ही लंबा चौड़ा
1: बहुत
0: इन्होंने
1: लंबा पत्र इन्होंने
0: जी
1: लिखा
0: जी
1: है।
0: जी आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? अंकित सैनी जी और शोभित शर्मा जी और आपका पत्र मिला पेश करने वालों को भी सलाम। हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। हमें 14 अगस्त का गीत तुम्हारे जो निधि जी और अलका जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा, हेलो नजीबाबाद, और रात के हमसफर जो सचिन शर्मा जी ने पेश किया पसंद आया। 13 अगस्त का गीत तुम्हारे जो ताहिर और फरीना ने पेश किया पसंद आया। आपकी फरमाइश जो पूनन अग्रवाल जी ने पेश किया अच्छा लगा। 12 अगस्त को गीत तुम्हारे जो रिमझिम और विश्वास जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। संदेश.com भी पसंद आया जो विश्वास जी ने पेश किया। इसके अलावा 11 अगस्त को गीत तुम्हारे जो राजवीर सिंह जी ने और मनोज वर्मा जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा इनको। 10 अगस्त का गीत तुम्हारे जो चरणजीत और सुनीता रावत जी ने पेश किया बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर वही गुजारिश है आपसे, आपका पत्र मिला, मैं अंकित सैनी जी और शोभित शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे हैं? या तो इस प्रोग्राम को बंद कीजिए, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा।
1: देखिए, आपकी शिकायत भी है और आपने बहुत सारे हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं उनके पेश किए गए कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगे हैं, ये भी आपने लिखा है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से ये पत्र है मोहम्मद वक्कार फरीदी जी का। तो आपने डेट वाइज हमारे बहुत सारे अनाउंसर साथियों के नाम लिखे हैं। 14 तारीख का गीत तुम्हारे आपको बहुत अच्छा लगा, अलका जी और निधि जी की जो पेशकश थी वो आपको पसंद आई, हेलो नजीबाबाद जो सचिन शर्मा जी ने पेश किया आपको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिर जी और परीना जी का पेश किया कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगा, आपकी फरमाइश पूनम जी अग्रवाल जी ने जो पेश किया वो भी आपको अच्छा लगा। 12 अगस्त का गीत तुम्हारे जो रिमझिम और विश्वास जी ने पेश किया वो भी आपको काफ़ी पसंद आया, और विश्वास जी ने जो गीत चुने वो भी आपको अच्छा लगे। 10 तारीख का गीत

0: तुम्हारे जो चरणजीत और सुनीता रावत जी ने पेश किया आपको अच्छा लगा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने लिखा है कि अंकित जी और शोभित शर्मा जी कार्यक्रम में क्यों नहीं आते, तो देखिए किसी आकाशवाणी केंद्र को संभालना इतना आसान नहीं होता है। हमारे जो अधिकारी होते हैं उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, समय का अभाव होने के कारण वो कार्यक्रम में आ नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपका ये गुजारिश है कि कार्यक्रम में आए, तो जब भी उन्हें समय मिलेगा कार्यक्रम में जरूर आएंगे। आपका सुझाव है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पत्र लिखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, और
0: ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए।
1: एक इनके मैसेज में एक चीज़ और साफ साफ झलक रही है कि ये गीत तुम्हारे बहुत पसंद करते हैं।
0: हाँ, लगता है कि सारे
1: हाँ
0: गीतों के कार्यक्रम भी आपको अच्छे
1: जी
0: लगते
1: जी जी
0: हैं।
1: हमारे दूसरे प्रोग्राम भी
0: हाँ
1: आते हैं जो
0: बिल्कुल,
1: कंपेयर
0: हम भी
1: प्रोग्राम
0: ये
1: आते
0: आपको
1: हैं।
0: सुझाव देते हैं कि
1: जी
0: गीतों के अलावा और भी कार्यक्रम हमारे अज्ञानवर्धक वर्धक
1: जी
0: होते हैं,
1: जी उनकी भी
0: जानकारियों
1: समीक्षा।
0: से भरे होते हैं, उनकी भी समीक्षा आप हमें लिखिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना।
1: जी, और ये मैसेज हमारे पास आया है, बहुत ही बड़ा मैसेज आज
0: बहुत बड़ा
1: हमारे
0: मैसेज
1: श्रोता
0: है,
1: लिख
0: और
1: रहे
0: किन्होंने
1: हैं।
0: लिखा है?
1: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, साइना महवेश और मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर का।
0: क्या लिखते हैं
1: इन्होंने
0: ये?
1: लिखा है बहुत बड़ा मैसेज,
0: जी
1: लिखा है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुत करने वाले रविकांत वर्मा और विवेक प्रताप सिंह यानी
0: यानी
1: धर्मवीर की जोड़ी को हमारा प्यार भरा सलाम और आदाब। आपका कार्यक्रम आज सुबह से ही सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। विवेक जी और रविकांत जी की जोड़ी ने जो धमाल मचा रखा है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं। पिछले कार्यक्रम में लिखा था कि कुछ शिकायतें भी भेजा करें, तो आज हम शिकायतों का पिटारा खोल रहे हैं। पहले हमारा सुझाव है कि शुक्रवार को आने वाले रात के हमसफर कार्यक्रम को किसी और दिन कर दिया जाए, क्योंकि सभी श्रोता लगभग 1.5 घंटे तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं। हेलो हेलो नजीबाबाद में कॉल लगाते हैं और फिर रात के हमसफर का मैसेज करते हैं। इसके स्थान पर हेलो नजीबाबाद के साथ आपकी फरमाइश कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और हमारा सुझाव है कि सभी कार्यक्रमों को YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि पहले सभी कार्यक्रम YouTube पर देख लेते थे, क्योंकि अब हम यदि कोई शिकायत या कोई कमी बताते हैं तो उसे निराधार कह दिया जाता है। अगर YouTube पर सभी प्रोग्राम होंगे तो हम उनकी शिकायत या कमी डेट वाइज और दिन के अनुसार लिखकर भेज सकते हैं एविडेंस के लिए। आगे हमारा कहना है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में यदि किसी उद्घोषक को श्रोताओं से भी शिकायत है तो उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए, ताकि श्रोता भी अपनी शिकायतों को दूर कर सकें और कमियों को दूर कर सकें। आगे हमारी शिकायत है कि 14 अगस्त को गीत तुम्हारे कार्यक्रम में निधि भारद्वाज जी ने 4 बार मैसेज भेजने पर भी हमारा मैसेज शामिल नहीं किया, और इसका एहसास हमें तब हुआ जब हमने जागरूक श्रोता कार्यक्रम में कॉल लगाई और हमारी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। यदि हमसे कोई शिकायत है तो उसे आकाशवाणी में दर्ज कराया जाए, ताकि हम अपनी कमी दूर कर सकें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी क्या कमी है, किस कारण हमारा पत्र या मैसेज शामिल नहीं होता, यह या फिर हमारी कॉल क्यों शामिल नहीं होती। आगे हम चाहते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम को भी फोन इन कार्यक्रम यानी लाइव कार्यक्रम कर दिया जाए, ताकि हम आमने सामने अपने शिकायत कर सकें और उसका समाधान भी ढूंढ
0: ढूंढ
1: सकें।
0: सके। बहुत ही प्यारा सा पत्र और बहुत लंबा, मुझे लगता
1: जी
0: है कि ये इतिहास का सबसे लंबा पत्र है ना
1: जी मतलब
0: विवेक।
1: जो शिकायतें हैं वो
0: हाँ
1: इनको इन्होंने
0: बिल्कुल, डेट
1: बिल्कुल
0: वाइज और
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: ही
1: जी
0: एकदम
1: बिल्कुल
0: समीक्षा करके
1: सरलता
0: उनकी,
1: से
0: है ना।
1: समीक्षा करते हुए लिखी
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल। चलिए, ग्राम जुझला थाना शिवाला कला से ये पत्र है राशिद अंसारी जी का। तो राशिद अंसारी जी, सबसे पहले तो इतना बड़ा पत्र लिखने के लिए, आपको समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, और आपकी मेहनत को
0: बिल्कुल
1: सलाम।
0: बिल्कुल, आज के कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपने रवि मुझे यानी रविकांत वर्मा और विवेक जी को भी एक प्यारा सा नाम दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपको सुबह से अच्छे लग रहे हैं, बहुत हमें अच्छा लगा सुन के। और आगे आपने लिखा है कि शिकायतों का पिटारा भी आपने खोल दिया है। वास्तव में कहना पड़ेगा कि वास्तव में ये शिकायतों का पिटारा ही है। तो चलिए पढ़ते हैं। शुक्रवार को रात के हम सफर और हेलो नजीबाबाद को आप एक साथ नहीं चाहते, क्योंकि लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। ये भी आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हमने नोट कर लिया है, और आने वाले समय में आपके इस सुझाव पर हम अपने जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। और ये आगे आप लिखते हैं कि रात के हम सफर के स्थान पर हेलो नजीबाबाद के साथ आपकी फरमाइश कर दी जाए। ये भी आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर भी विचार किया जाएगा। आगे आप लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम YouTube पर अपलोड कर दिए जाए।

0: तो आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम YouTube पर अपलोड भी होते हैं, और हमारा जो YouTube आईडी है और जो Facebook, उस पे भी बहुत सारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं, और आप उनका भी वो उठा सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि शिकायत दर्ज करेंगे आप डेट वाइज या दिन के अनुसार लिख कर भेज सकते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा सुझाव है, और हमें लगता है कि आपकी जो शिकायत है वो भी हमसे दूर हो गई होगी। और आगे आपका कहना है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में यदि उद्घोषक या श्रोताओं की भी शिकायत है तो उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए, यानी कि आप चाहते हैं कि श्रोताओं की जो शिकायत है वो भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करें, कि हम चाहते हैं क्या श्रोताओं से, है ना। तो सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता है वो गीत तुम्हारे कार्यक्रम में कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, है ना, जबकि उनका नाम पढ़ा जाता है, और उसके बाद थैंक यू के मैसेज या धन्यवाद के मैसेज। तो इससे क्या नुकसान होता है कि हमारे जो कुछ सेकंड्स हैं वो उस मैसेज को खोलने में वेस्ट हो जाते हैं। तो कृपया हमारा आपका आपसे यही कहना है कि आप ये जो गीत तुम्हारे प्रोग्राम या पत्र से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उनमें आप लगातार कई बार मैसेज ना भेजें। अगर आपका मैसेज पढ़ा जा चुका है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय आपका ही नष्ट होता है। आगे आपकी शिकायत है कि 14 अगस्त को गीत तुम्हारे कार्यक्रम में निधि भारद्वाज जी ने 4 बार मैसेज भेजने पर भी आपका मैसेज शामिल नहीं किया। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे नियमित श्रोता है और लगातार हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, इसके लिए हम आपकी तारीफ भी करते हैं। आप सुझाव बहुत अच्छे देते हैं और आप जो उपमाएं देते हैं वो भी हमें बहुत पसंद आती है। तो ऐसा हम नहीं ऐसा कह सकते हैं कि कोई गलती हुई होगी, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे आज भी हमने बहुत सारे मैसेज छोड़े गीत तुम्हारे में, क्योंकि समय एक सीमा होती है, उसके अंदर ही हमें ये कार्यक्रम को पूर्ण करना होता है। उस समय हो सकता है कोई भूलवश या आपका मैसेज नेटवर्क के अनुसार ऊपर चला गया हो, क्योंकि लगातार बहुत सारे मैसेज आते हैं और जो पुराने मैसेज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, है ना, ये तो आप सब समझते ही होंगे। तो चलिए, ये भी आपके, और आपको ये पता चला कि जिंदगी लाइव में भी आपकी कॉल काट दी गई, तो इसका भी कारण हो सकता है कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो। तो आपकी, हम समझते हैं कि आपकी सभी शिकायतें दूर हो गई होगी, लेकिन ये है कि आपकी शिकायतें तो रखें, लेकिन आपको आकाशवाणी से बहुत प्यार है, इससे हमेशा बने रहिए और इसी तरह हमें पत्र लिखते रहिए। इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये मैसेज हमारे पास आया है पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से अहम ताहिर और इद्रीस हिलाल का। आपने लिखा है,
0: क्या लिखते हैं ये?
1: आज बहुत बड़े बड़े मैसेज,
0: बहुत बड़े मैसेज
1: हैं।
0: आ रहे हैं सच में।
1: मैं आपके केंद्र आकाशवाणी का एक नियमित श्रोता हूँ और काफी समय से मैं आपके प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम को बेहद शौक से सुनता आ रहा हूँ। आपके केंद्र से तमाम प्रोग्राम ना सिर्फ बेहद ज्ञानवर्धक होते हैं बल्कि मन को ताजगी देने वाले बेहतरीन मनोरंजन से भरपूर भी होते हैं। इसके साथ ही आपके केंद्र के तमाम आरजे का अंदाज बयां बेहद शानदार, शीरी और दिल को छू लेने वाला है। उनकी आवाज़ की कशिश और सुनने वालों से आत्मीय ताल्लुक इस केंद्र को एक खास पहचान देता है। इस मैसेज के जरिए मैं आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हेलो फरमाइश के बाबत एक अहम मशवरा पेश करना चाहता हूँ। आजकल ज़्यादातर सुनने वाले रेडियो के बजाय मोबाइल ऐप्स के जरिए प्रोग्राम सुनते हैं। लाइव नशरियात के दौरान अक्सर लोगों का सारा वक्त सिर्फ कॉल मिलाने में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से वे प्रोग्राम का असल लुत्फ उठाने और नगमों को ध्यान से सुनने से महरूम रह जाते हैं। मेरी अजदस्ता गुजारिश है कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर लाइव चलाने के बजाय कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर नशर किया जाए। इसके अगर आप ख्वाहिशमंदों की फरमाइशें और कॉल्स पहले से रिकॉर्ड करके फिर प्रोग्राम में शामिल करेंगे तो इसके नशरियात का मेयार और बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप एक पाबंद श्रोता के इस मुफीद मशवरे पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे और इस सिमत में मुनासिब कदम उठाएंगे। अगर आप मेरी इस बात से ताल्लुक नहीं रखते तो आप श्रोताओं की राय जान के देख लीजिए, वह भी इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे लाइव कॉल के बजाय। और मैं एक बात आपसे ये खासतौर से कहना चाहूँगा, एम ताहिर जी, आपने इतने सारे उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, अगर मुझसे कोई शब्द इधर उधर हो गया हो तो उसकी शिकायत आप ज़रूर अगले हफ्ते करें।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ठीक है जी।
0: बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल देखिए बेहद एक एक जैसे शब्द बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से और उर्दू का लाजवाब शब्द आपने शामिल किए हैं। सबसे पहले तो हम आपके पत्र की ही तारीफ करेंगे। पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से लिखते हैं एम ताहे जी, और आपको सभी कार्यक्रम

ज्ञान वर्धक और मन को छू लेने वाले लगते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर हमारी तारीफ की है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप चाहते हैं कि हेलो फरमाइश को पहले रिकॉर्डिंग के अनुसार कर दिया जाए और तभी पेश किया जाए। देखिए, हम आपको बता दें कि पहले समय में ऐसे ही होता था। प्रोग्राम कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हो जाता था और उसके अनुसार ही कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे लाइव

0: हमसे जुड़ना चाहते हैं वो रह जाएंगे, है ना। कहीं कमी होती है, कहीं उसका लुत्फ उठाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपने बहुत ही प्यारा सा वैसे हमें सुझाव लिखा है, इसके लिए हम ज़रूर अपने अधिकारियों से बात करेंगे और जैसा आप चाहते हैं ऐसा भी करने का प्रयास करेंगे। ये अगला पत्र हमें कहाँ से मिला है विवेक जी?
1: ये अगला पत्र हमारे पास आया है मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी कलीम बाकी और अब्दुल कनी का। ये लिखते हैं,
0: समय भी हमारे पास बहुत
1: हाँ,
0: कम बचा है ना,
1: समय बहुत कम है। ये लिखते हैं, रविकांत वर्मा जी और विवेक प्रताप सिंह जी कैसे हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: आकाशवाणी में सभी को हमारा प्यार भरा आदाब, प्लीज हमारा मैसेज पूरा पढ़िएगा। आज
0: आपको
1: मैं काफी
0: भी हमारा प्यार भरा आदाब।
1: आज मैं काफी टाइम के बाद आपका पत्र मिला, कार्यक्रम में मैसेज कर रहा हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बस यही सोचते हुए कर दिया। आपके यहाँ के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारे सभी अनाउंसर साहिबान काफी जिम्मेदारी से प्रोग्राम पेश करते हैं और जो अधिकारी साहिबान वो भी बहुत मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। बस हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में हमारी कॉल नहीं लग पाती और जब कॉल लगती है तो कॉल उठाई नहीं जाती। ऐसा ही हुआ 7 अगस्त को इनके साथ, हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में हमारी दोनों नंबर पर एक ही टाइम में कॉल जा रही थी मगर पिक नहीं की गई। लगता है आप लोगों को दूर की कॉलें लेना अच्छा लगता है, इसलिए आसपास वालों की कॉल्स को छोड़ देते हैं, कृपया ऐसा ना किया करें, इसलिए हमने हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में कॉल लगाना छोड़ दिया है।
0: देखिए ऐसा मत कीजिए, कॉल आप लगाते रहिए नदीम बाकी कलीम बाकी और अब्दुल गनी जी। हम कहना चाहते हैं कि आपकी कॉल लगती है और पिक नहीं होती, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो कॉल्स आती हैं उसमें नंबर ही नहीं आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कॉल्स किसकी है, तो ये त्रुटि होने की तो संभावना ही नहीं रहती है। हो सकता है बिजी हो, एक कॉल हमने ले रखी हो इसलिए आपके ऐसे हो रहा है। और देखिए आपने इतना सुंदर पत्र लिखा और हमारे पास अब समय भी बहुत कम रहेगा, है ना विवेक
1: जी?
0: जी
1: और जिनके आज पत्र शामिल ना हुए हों या
0: जी,
1: मैसेज
0: जी,
1: शामिल ना हुए
0: हाँ,
1: हों तो वो अगली बार जरूर हमें मैसेज भेज सकते हैं या पत्र भेज सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और
1: तो
0: हमारे कार्यक्रम से
1: हाँ,
0: जुड़े रहिए।
1: तो इसी के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की विवेक प्रताप सिंह
0: और रविकांत वर्मा को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಡೇ
1: ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಡೇ
0: ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಡೇ
1: ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಡೇ
2: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम फिल्मी संडे में आपका स्वागत है। कल हमने आजादी का जश्न मनाया, तिरंगा फहराया, लेकिन 15 अगस्त के इस त्योहार का जश्न इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, इसलिए आज 16 अगस्त के इस खास संडे को हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की वो फिल्म जिसने पर्दे पर देशभक्ति को एक नया धमाकेदार और कभी ना भूलने वाला अंदाज दिया। आज के इस फिल्मी संडे में हम पिरोने जा रहे हैं फिल्म तिरंगा की जलवेदार कहानी को, जिसमें है जबरदस्त डायलॉग, दिल छूने वाले नगमे और ऐसा एक्शन और ड्रामा जो आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। साल 1993 की ये फिल्म अपने दमदार किरदारों और कालजयी डायलॉग्स के लिए जानी जाती है। इसके प्रमुख किरदार हैं राजकुमार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के रूप में, एक ऐसा रोबीला किरदार जो जब जब पर्दे पर आता है तो रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर इंस्पेक्टर बागले का किरदार इन्होंने निभाया है। कानून के दायरे में रहकर अपनी शर्तों पर काम करना और अपराधियों की भाषा में उनकी धुनाई करना इनकी खासियत है। दीपक शिर्के यानी प्रलयनाथ गेंडा स्वामी इस फिल्म का मुख्य विलन, ये जब जब हंसता है तो अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। आलोक नाथ देश के बड़े मंत्री, जीवन लाल टंडेल देश के होम मिनिस्टर। इसके अलावा सुरेश ओबेराय डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान के किरदार में, वर्षा उषा गांवकर शांति के रूप में और नाना पाटेकर की प्रेमिका के रूप में, ममता कुलकर्णी संध्या गुप्ता, राकेश बेदी खबरी लाल, फिरोज खान रसिकनाथ, हरीश ने संजय चौहान का किरदार निभाया है।

0: तो फिल्म की शुरुआत होती है देश के बेहतरीन और नामी मिसाइल तकनीक के वैज्ञानिकों के अपहरण से, और इन वैज्ञानिकों का अपहरण किया है प्रलयनाथ गेंडा स्वामी ने, क्योंकि वो परमाणु मिसाइल बनाकर देश को गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन गेंडा स्वामी के इस नापाक इरादों के बीच खड़ा है DIG रुद्र प्रताप सिंह।
1: नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम रुद्र प्रताप चौहान है वागले। मेरे जीते जी प्रलयनाथ का कोई भी काम होना इम्पॉसिबल है। तुम खबरी लाल को इतला कर दो, उनकी हर चाल पर कड़ी से कड़ी नजर रखें।

0: डीआईजी ने प्रलयनाथ के कई धंधे बंद करवा के उसकी नाक में दम कर दिया है और इसीलिए गैंडा स्वामी रुद्र प्रताप को मरवा देता है। रुद्र प्रताप का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और तभी एंट्री होती है मंत्री जीवन लाल टंडेल की।
1: पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है।
2: बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में।
3: बागले, कंट्रोल योरसेल्फ।
2: जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदा जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी एक के बाद एक।
3: इंस्पेक्टर बागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ।
2: बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं।
0: डीआईजी की हत्या के बाद हाईकमान की मीटिंग होती है और प्रलयनाथ को रोकने का जिम्मा दिया जाता है ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को।
4: सत्यवादी तुपे, दोखले के औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तितमारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र चटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बोछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
5: ना तलवार की धार से ना गोलियों की बोछार से, बन्ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।
4: तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ढूंढ लो इसे।
2: खबरदार, कोई हिलेगा नहीं।
5: हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो।
0: और प्रलयनाथ को खत्म करने के लिए सूर्यदेव सिंह ने इंस्पेक्टर वागले को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है।
2: बड़े प्यार से खेलते हैं आप।
5: असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत।
2: तो फिर प्रलयनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे?
5: गले मिलने गए थे, उसके गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की।
2: बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का, हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर।
5: हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं सिवाय फर्श के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं सिवाय फर्श के। अगर फर्क है तो सिर्फ सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा।
0: और इसके बाद सूर्यदेव सिंह अपना बंकर और ठिकाना इंस्पेक्टर वागले को दिखाते हैं। ये बंकर बहुत ही ज्यादा महफूज है। इस बंकर की खासियत यह है कि इस पर किसी हवाई हमले या बम का असर नहीं होता। दोनों जांबाज ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और इंस्पेक्टर वागले अपने बंकर का मुआयना कर रहे होते हैं, तभी खबरीलाल का फोन आता है।
6: नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ।
5: ओ खबरीलाल,
6: आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है।
5: हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल?
6: शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए।

0: लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है।
1: ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह?
0: हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा।
2: इन दोनों को सूर्यदेव सिंह पकड़ लेते हैं और फिर शुरुआत होती है इन खूंखार लोगों को छुड़वाने की। इसी संबंध में मिनिस्टर जीवनलाल टंडेल ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से मिलने आते हैं।
0: आज तो हम अपना एक एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो।
3: ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे।
4: अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूँ, वो हमारी खाता है या हम उसकी?
0: इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहाँ से आ गई? और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता, और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे।
2: एक शहीद स्मारक उद्घाटन समारोह के दौरान गोलीबारी हो जाती है और अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल की कैद की सजा सुनाती है। उधर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को सजा होने और नए साल का जश्न मना रहे हैं गैंडा स्वामी और गृह मंत्री जीवन लाल टंडेल।

नए साल की शाम में जीवन लाल टंडेल की बेटी राधा टंडेल रसिकनाथ को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन रसिकनाथ उससे कहता है कि वो अबॉर्शन करा ले। इसी बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है और रसिकनाथ उसे जान से मारना चाहते हैं और राधा टंडेल समंदर किनारे भाग जाती है, जहां

0: नाथ उसका गला दबा देता है और वो बेहोशी की हालत में तीन लड़कों को मिलती है। ये तीनों दोस्त लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इन तीनों लड़कों में एक डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा है, दूसरा शांति का भाई है और तीसरा उसका दोस्त है। लड़की इन तीनों लड़कों के खिलाफ बयान देती है और तीनों लड़कों को जेल हो जाती है और जेल में इन तीनों लड़कों को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर बागले उन्हें बचा लेता है। उधर ब्रिगेडियर सूर्यदेव की रिहाई हो जाती है।
1: कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए?
2: हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद।
1: तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो।
2: हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं।
1: सूर्यदेव सिंह,
2: ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट।
0: ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की गाड़ी में गैंडा स्वामी बॉम्ब रखवा देता है, लेकिन सूर्यदेव अपनी समझदारी से बच जाते हैं। और शाम आती है सूर्यदेव के जन्मदिन की, जहां एक शानदार जश्न मनाया जाता है।
3: हेलो,
2: ज्यादा आगे पार कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है।
3: हेलो हेलो, तुम फोन कहां से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो।
2: हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बहका ना कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे।
4: ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे?
2: पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे।
0: जन्मदिन का जश्न मनाकर इंस्पेक्टर बागले घर आते हैं, जहां खबरीलाल का फोन आता है। खबरीलाल फोन पर बताता है कि इंस्पेक्टर बागले पर हमला होने वाला है। गैंडा स्वामी वैज्ञानिक खोराना का अपहरण करवाना चाहता है। प्रोफेसर खोराना वो वैज्ञानिक हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के महारथी हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव और इंस्पेक्टर बागले की सूझबूझ से प्रोफेसर खोराना को अपहरण होने से बचा लिया जाता है।
3: ब्रिगेडियर शायद ये नहीं जानता कि प्रलयनाथ ऐसा शिकारी है जिसके हाथ से कभी कोई शिकार नहीं बचता।
2: हेलो, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो, वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है।
3: मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी।
2: जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ?
3: तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा।
2: शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए।
0: ब्रिगेडियर सूर्यदेव और डॉक्टर गुप्ता के अदालत में बयान की वजह से तीनों लड़के भी रिहा हो जाते हैं जो राधा टंडेल के केस में फंस गए थे।

0: इंस्पेक्टर बागले गैंडा स्वामी के घर जाकर रसिकनाथ को गिरफ्तार कर लेता है। रसिकनाथ ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को बताता है कि गैंडा स्वामी का अगला प्लान प्रोफेसर खुराना को किडनैप करके फ्यूज कंडक्टर हासिल करके पूरे देश को बर्बाद करना है। और तिरंगा फिल्म की कहानी में अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सांसें थम जाती हैं। प्रलयनाथ गैंडा स्वामी का वो गुप्त ठिकाना पहाड़ों के बीच बनी एक अंडरग्राउंड लैब, जहां 15 अगस्त के दिन देश पर हमला करने के लिए परमाणु मिसाइल पूरी तरह से सेट हो चुकी हैं। गैंडा स्वामी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देने वाला होता है, तभी सूर्यदेव सिंह अपना पाइप पीने लगता है और गैंडा स्वामी वो पाइप छीनकर फेंक देता है। जैसे ही वो पाइप जमीन पर गिरता है, वैसे ही एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है।
1: मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा।
2: गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो।
3: हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे।
2: बूम डालो इसे।
0: और फिर गैंडा स्वामी और उसके पूरे साम्राज्य का अंत हो जाता है।

0: देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात।
1: नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात।

तिरंगा फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे मेहुल कुमार। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म ने खुद को 1993 में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित किया। इस फिल्म को उन दिनों भले ही बड़े अवार्ड ना मिले हों, लेकिन सिनेमाघरों में बजने वाली सीटियां, तालियां और दर्शकों का प्यार इस फिल्म का असली अवार्ड था, जो आज भी कायम है। श्रोताओं, आज का फिल्मी संडे यहीं तक। अब विवेक प्रताप सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: फिल्मी संडे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी 1993 की फिल्म तिरंगा की कहानी। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: टीएनए इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रख रखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी यूकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support each challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the E Foundation stone will be laid and various development works

0: आज लखनऊ के हजरतगंज में रानी अवंतीबाई लोधी को उनके यौम पैदाइश पर उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि जंगजू अवंतीबाई लोधी हिन्दुस्तान की आज़ादी की उन अजीम शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मुल्क के लिए वक्फ कर दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है। हर भारतवासी उनके योगदान के लिए उनके प्रति नतमस्तक होता है। आज उनका 196वां पावन जयंती और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी के उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान किया।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत बाग आज से 15 सितंबर तक आवाम के लिए खुला रहेगा। बाग सुबह 10 बजे खुलेगा और शाम 6 बजे बंद होगा। शाम 5 बजे तक आखिरी दाखिले के साथ बाग खरपीर को देखभाल के लिए बंद रहेगा। मरकजी वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सदर का मुमताज खिदमत तमगा दिया जाएगा और 75 दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सदर की शानदार खिदमत का तमगा दिया जाएगा। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ में तैनात इंस्पेक्टर सुनील कुमार को बाद अजमर्ग कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। वो मेरठ में बदनामे जमाना अनिल दोहाना के साथ तसादुम में शहीद हुए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर ऑल इंडिया एंट्रेंस इम्तिहान के लिए आरजी जवाबी कलीदें जारी करेगी। पीएचडी प्रोग्रामों के लिए ऑल इंडिया मसाबकती इम्तिहान की जवाबी कलीदें भी आज जारी की जाएंगी। एजेंसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आरजी जवाबी कलीदें सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब होंगी। एजेंसी ने उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो एजेंसी की सरकारी मालूमात पर ही इन्हिसार करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रियासत में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह से सरगर्म हो गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में मूसलाधार बारिश, तेज गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के लिए अलर्ट जारी किया है। खलीज बंगाल और मध्य प्रदेश पर बनने वाले कम दबाव के इलाके की वजह से 13 अगस्त से शुरू होने वाली बारिश 18-19 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। बारिश के बाद दर्जे हरारत में 4 से 5 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई है। फर्रुखाबाद जिले में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज पूर्वांचल के साथ साथ वस्ती और मगरबी यूपी के जिला जैसे आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, गोंडा और लखनऊ डिवीजनों में गरज चमक के साथ दरमियानी से भारी बारिश का इंतबाह जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नष्ट किया जाएगा।
2: आप मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल वाटिका।

बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं जानकारी विश्व मानवता दिवस की, सद्भावना दिवस और महान विभूति क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी 16 अगस्त को हम पुण्यतिथि मनाए हैं, और एक प्यारा सा गीत, साथ ही आप सबका मनपसंद कार्यक्रम झुनमुट। पर बच्चों, इन सबसे पहले आप लोगों से एक बात पूछते हैं। जब हमें कोई परेशानी होती है या हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं या हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, तो हम अपने परेशानी का हल ढूंढने के लिए किसके पास जाते हैं? हम अपने परेशानी का हल

ढूंढने के लिए हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, है ना बच्चों? और उनके पास जाते ही हमारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब वो हमें कोई ज्ञान की बात बताते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है, क्यों बच्चों? लेकिन जब दादा दादी नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, और इनकी कहानियाँ इतनी ज्ञान भरी होती हैं कि जो हमारे आगे जीवन में काम आती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हर समय हमें टोकते हैं, पढ़ाई करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन प्यारे बच्चों, इनकी यही टोक हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है और समझा भी है। उनके पास अनुभवों का खजाना होता है, और बड़ों का ज्ञान जीवन के लिए बच्चों वरदान होता है। बच्चों, किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन बड़ों के अनुभव से हमें उस ज्ञान को जीवन में इस्तेमाल करना सीखने को मिलता है। अगर आपके दादा दादी नाना नानी कहते हैं कि मुश्किल काम देखकर घबराना नहीं, कोशिश करते रहना है, तो ये हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बच्चों, हमें अपने बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनसे सवाल पूछें और उनकी सीख को जीवन में अपनाएं। जब हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन उनकी डांट में भी हमारे लिए कोई ना कोई सीख छुपी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी सीख को जीवन में अपनाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, वो हमारी इस चर्चा को सुनकर अगर अब से उनके मम्मी पापा उन्हें डांटेंगे या कुछ कहेंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे। और बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी आपसे बड़े, जो भी हैं आपके बड़े भैया दीदी, अगर आपको कुछ कहते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। क्योंकि अगर वो आपको पढ़ाई के लिए कहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर जीवन में खूब काम करें, या खूब मेहनत करें, और खूब सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं। इसलिए उनकी किसी बात का बुरा ना माने और उनकी डांट को एक सीख के रूप में अपनाएं। फिर देखिए आप कैसे हर जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होते हैं। तो बच्चों, और साथ में हमें ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई डांट पड़े या किसी की कुछ बातें सुनने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस जरूरी संदेश के बाद।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: बच्चों, महान विभूति क्रम में हम भारत के एक ऐसे महान नेता के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग प्यार से अटल जी कहकर बुलाते थे। बच्चों, आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और बचपन से ही इन्हें पढ़ने लिखने और कविता लिखने में विशेष रुचि थी और वे आगे चलकर एक महान वक्ता, कवि, पत्रकार और लोकप्रिय नेता बने। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और लोगों के दिल को छू लेने वाली थी। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय प्रतिनिधि भी बने। बच्चों, अटल जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण और उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी मिला। बच्चों, वे केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे। वे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को में आशा, साहस और प्रेम का भाव जगाते थे। वे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवाद में विश्वास रखने वाले नेता के रूप में याद किए जाते हैं। संसद में बच्चों उनका लंबा और महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी थी। बच्चों, इनके जीवन से हमें

0: ना मिलती है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपनी बात को विनम्रता से रखनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने से की प्रेरणा लेनी चाहिए। 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर हम इस महान नेता को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, साथ ही उनके देश प्रेम से प्रेरणा लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम भी अपने बच्चों से पूछते हैं कि भारत के महान व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील कवि और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में, और साथ ही उन्होंने आजादी का जश्न यानी कि स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज कैसे सेलिब्रेट किया, तो जानते हैं कार्यक्रम झुरमुट में। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम झुरमुट।
1: झुरमुट है सपनों की बगिया जहाँ खिलती हर मुस्कान, गीत कहानी खेल और शिक्षा यही है इसकी सच्ची पहचान।
0: नन्हे कदम बढ़ते जाएं, सपनों को साकार बनाएं, झुरमुट के इस सुंदर मंच से उज्जवल भारत का कल सजाएं।
1: हाँ, तो इन्हीं जोश भरी पंक्तियों के साथ पेश है नए रुपैली रंगों से सजा हम बच्चों का मन भावन पसंदीदा कार्यक्रम झुरमुट। हाँ, तो आइए मिलकर सीखें, खेलें, गाएं और उमंग भरी मुस्कान से आगे कदम बढ़ाएं।
0: यही है झुरमुट बच्चों के सपनों और सृजन का सुंदर संसार।
1: हाँ, तो इसी उमंग उत्साह के साथ करते हैं झुरमुट का शुभारंभ।
0: हाँ तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में आपकी बड़ी दीदी
1: अर्चना
0: और आपकी छोटी दीदी नीलम झुरमुट कार्यक्रम में शामिल सभी दोस्तों का करते हैं स्वागत, अभिनंदन।
1: हाँ, तो हमारे आज के कार्यक्रम में कौन कौन दोस्त शामिल है नीलम, ये भी तो जान ले।
0: जी दीदी, तो आप हैं?
2: मैं आदित्य।
3: मैं अनंत सारस्वत।
4: मैं संस्कृति।
5: मैं अदिति।
6: मैं आदिश्री।
7: मैं अदिति।
8: मैं सुरवंदता।
9: मैं विद्यार्थी।
0: तो दीदी, आज हमारे साथ हैं अदिति, आदिश्री, अनंत, आदित्य, संस्कृति, सुरवंदिता, अदिति, विद्यार्थी और एक और अदिति।
1: बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले नमन करते हैं भारत के महान व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील कवि और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
0: प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अटल जी ने हमें सिखाया कि सत्य, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम और दृढ़ संकल्प ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
1: हाँ, तो हमारे दोस्त इनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, तो नीलम ये भी जान ले।
3: दीदी, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताऊं?
0: हाँ अनंत, बताइए।
3: दीदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी के कवि थे, पत्रकार थे और प्रखर वक्ता थे। वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक और कवि थे, माता कृष्ण देवी थी।
0: तो देखिए दीदी, आनंद ने कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में।
4: दीदी, क्या मैं आपको एक कविता सुनाऊं?
1: ये आदिश्री किसके बारे में है?
4: यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है।
1: हाँ तो सुनाओ।
4: उजियारों में, अंधकार में, कलकहार में, बीज धार में, घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
1: बहुत सुंदर।
4: दीदी, इनकी एक और कविता है, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के किपार पर लिखता मिठाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
1: बहुत सुंदर। आदिश्री, आप जानती हैं कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ तो बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें और क्या क्या संदेश दिए हैं, इसके बारे में कौन बताएगा?
4: दीदी, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ।
1: हाँ तो संस्कृति बताएं अपने दोस्तों को।
4: दीदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें देश प्रेम, एकता, शांति, मानवता और राष्ट्र की सेवा का संदेश दिया है। उन्होंने सिखाया है कि हमें देश की प्रगति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत, ईमानदारी और आशावाद नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बहुत सुंदर। बच्चों हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके आदर्शों पर चलना चाहिए। तो

0: तूने बड़े धूमधाम से मनाया, क्यों बच्चों?
1: जी दीदी।
0: हाँ तो हमारे दोस्त ये भी तो बताएं कि इस पर्व की शुरुआत कब से यानी कौन से अभियान से हो गई है?
2: दीदी मैं बताऊं?
0: हाँ बताइए अनंत।
2: इस अभियान की शुरुआत 9 अगस्त हर घर तिरंगा के रूप में होकर 17 अगस्त तक चलेगी।
0: हाँ तो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं अनंत इस बारे में। हर घर तिरंगे का अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। तो चलिए इसी बात पर हो जाए ये झंडा गीत सामूहिक रूप।

0: बहुत सुंदर झंडा गीत गाया। बच्चों आप जानते हैं, हर घर तिरंगा केवल एक अभियान ही नहीं बल्कि देश के प्रति हमारे सम्मान, गर्व और एकता की अभिव्यक्ति है।
1: हाँ, तो जैसे कि अभी बात चल पड़ी थी देशभक्ति की, तो हमारे दोस्तों ने इंडिपेंडेंस डे भी तो बहुत धूमधाम से मनाया है, तो इस मौके पर विधात्री हमें बताएं कि उन्होंने स्कूल में क्या प्रोग्राम किया था।
2: मैंने डांस खेला था, गीत गाया था।
1: हाँ तो भाई हमें भी सुना दीजिए वो वाला गीत।
2: झांकी कदम कदम पे धरती बदलंग, झांकी बोलो बोलो सातरंग, धान चादर अंबर है, नदी सुनहरी घर समंदर।

0: समा बांध दिया आज विधात्री ने, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर भी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। दीदी ने भी हाथ उठा रखा है, वो क्या सुनाने वाली हैं?
1: दीदी मैं एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाइए।

मन इस पर वारेंगे, सा सा धा पा धा धा पा गा पा पा गा रे गा सा सा सा धा पा धा धा पा गा पा पा गा रे सा। गंगा जिसमें पानी भरती, फल फूलों से लदी है धरती,

0: इस परिवार।
1: बहुत अच्छा सुनाया दीदी ने। बच्चों क्लैपिंग तो बनती है ना। दीदी अब अनंत भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं।
2: दीदी मैं एक देशभक्ति गीत गाऊंगा।
1: ओ
2: देश मेरे तेरी शान से सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूप से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
3: बहुत सुंदर, सभी इस बात पे तालियां बजाएं। बात जब राष्ट्रीय पर्व की चली पड़ी है तो क्यों ना बात कर ली जाए धार्मिक पर्व हरियाली तीज की भी, जिसका मजा बच्चे बूढ़े सभी लेते हैं।
1: हाँ तो बच्चों बताइए हरियाली तीज पर आप क्या क्या करते हैं, कौन सी मिठाई खाते हैं? दीदी विदात्री का तो

0: मिठाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तो विधात्री बताएंगी कौन सी मिठाई खाती है तीज पर?
1: मैं घेवर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, झूला भी झूलती हूँ।
0: अच्छा विधात्री, आपने झूला कहाँ डाला है, घर में या पेड़ पर? आपके यहाँ तो आंगन में बहुत सारे पेड़ भी हैं।
1: पेड़ों पे डाला है।
0: अरे वाह, तब तो खूब ऊंची पेंग के साथ हमारी विधात्री झूलती होंगी। और क्या क्या करते हैं? तो दीदी सुरवंदिता भी कुछ बताना चाह रही हैं।
1: हमारी मम्मी भी अच्छे से तैयार होती है और हम भी तैयार होते हैं। हम सब ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहनते हैं।
0: भाई खूब मजा आता है ना?
1: जी दीदी।
0: तो इस मौके पर कौन हमें झूला गीत सुनाएगा?
1: दीदी मैं सुनाऊंगी।
0: हाँ तो सुरवंदिता सुनाए।
1: सावन आया, खुशियाँ लाया, हर मन में जोश भराया, झूले पड़े हैं पेड़ों की डाल, हमारे चेहरों पर छाई बहार। आओ मिलकर गीत सुनाए, सावन के झूले खूब झुलाए, प्रकृति सजी है हरियाली से, सावन आया है खुशियाली से।
0: दीदी बहुत अच्छा सुनाया सुरवंदिता ने सावन पर ये गीत। और दीदी बच्चे हमारे कुछ ना कुछ सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, खूब घूम भी लिए, मुंह भी मीठा कर लिया, अब बात हो जाए हमारे और दोस्तों की अभिव्यक्ति की, जो बहुत कुछ तैयारी के साथ आए हैं आज के इस प्रोग्राम में। क्यों नीलम?
2: जी दीदी। दीदी आदित्य ने देखिए अपना हाथ भी खड़ा कर रखा है हमें कुछ सुनाने के लिए।
3: दीदी मैं एक कविता सुनाऊंगा। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानता रोना, बरसा करता पल पल पल, मेरे जीवन में है सोना।
0: बहुत सुंदर। और अब हाथ खड़ा कर रखा है हमारी छोटी सी अदिति ने भी, तो वो क्या सुनाएंगी?
4: दीदी मैं भी एक कविता सुनाऊंगी। आहा गिलहरी वहा गिलहरी, चुन ले अपनी रहा गिलहरी, ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फूल कुतरती।
0: बहुत सुंदर कविता सुनाई गिलहरी के ऊपर। एक पोयम और सुनाने के लिए बेताब हो रही है हमारी अदिति।
5: अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही है क्या परवाही, झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली खटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली, भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई अदिति ने। हाँ तो इसी के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का समापन। हाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के इस मौके पर आप सभी ने हमसे साझा की, तो हम भी आपके उज्जवल भविष्य की चाहना इन्हीं आशीर्वचनों के साथ करते हैं कि आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और उन्नति के पथ पर यूं ही आगे बढ़ते रहें और त्योहारों का आनंद लेते रहें। तो फिर मिलते हैं आपके अपने कार्यक्रम झुरमुट में।
6: बच्चों अभी आपने सुना हमारे नन्हे बच्चों की झुरमुट, कार्यक्रम झुरमुट में। तो कैसा लगा, कैसा लगा आपको हमारी बच्चों की बातचीत, पत्रों द्वारा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो आज हमारे प्रतिभागी बच्चे थे सुरवंदिता, अदिति, आदिश्री, आदित्य, आनंद, संस्कृति और एक और अदिति और विधात्री। और आपसे बात कर रही थी आपकी दीदी अर्चना त्यागी और नीलम शर्मा। तो चलिए बच्चों अब कुछ जानकारी की बात कर लेते हैं। बच्चों 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। ये दिन उन सभी मानवतावादी कार्यकर्ताओं और लोगों को सम्मान देने के लिए समर्पित है जो संकट, आपदा और कठिन परिस्थितियों में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। बच्चों मानवता का अर्थ है कि दूसरों के दुख को समझना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान का व्यवहार करना। हमें अपने छोटे छोटे कार्यों से भी मानवता की भावना को मजबूत करना चाहिए। बच्चों जब जानकारी की बात चली रही है तो बात करते हैं 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस। बच्चों ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को हुआ था। और बच्चों सद्भावना दिवस का उद्देश्य समाज में प्रेम, शांति, एकता और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। भारत बच्चों विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है और हमारी विविधता ही हमारी खूबसूरती है, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बच्चों राजीव गांधी युवाओं और आधुनिक तकनीक को देश की प्रगति से जोड़ने पर विशेष जोर देते थे। उनकी जयंती हमें यह संदेश देती है कि देश की उन्नति के लिए एकता, सद्भावना, शिक्षा और आधुनिक सोच

बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि ना किसी से भेदभाव करेंगे, ना किसी को दुख पहुंचाएंगे, मानवता, प्रेम और सद्भावना के साथ मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी जानकारी। और प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। वैसे तो ये कार्यक्रम आप बच्चों का है, पर हम चाहते हैं कि आपके घर में जितने भी लोग हैं सब हमारा कार्यक्रम सुने और अपने सुझाव हमें दें। और बच्चों, अगर आपको कोई कविता लिखने का शौक है या आपको कोई कहानी लिखने का शौक है, तो वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और साथ में आप ये भी लिखिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। वैसे तो हमें पता है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कोई सुझाव देंगे तो हम वो भी शामिल करेंगे। तो हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, तो कुछ मनोरंजन भी हो जाए। और कल आपने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करा अपने स्कूल में, तो अभी जो हमारा मन है वो देश प्रेम से ओतप्रोत है, तो क्यों ना कुछ देश प्रेम के ऊपर ही गीत सुन लिया जाए। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बच्चों कैसा लगा आपको ये गीत? मजा आया ना सुन के, ऐसा लग रहा था कि बस नाचते रहें। तो बच्चों आप नाचते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई करिए खूब अच्छे से मन लगा कर। और हाँ, अपने मम्मी पापा की भी बात मानते रहिए और साथ में हमें पत्र भी लिखिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। उसके लिए आपको हमारा एड्रेस नोट करना पड़ेगा। तो हमारा पता है, कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो प्यारे बच्चों, इस उम्मीद से कि अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जौनसारी लोकगीत। कलाकार हैं प्रताप सिंह चौहान।

0: Chakrashtra will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with a 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the hosts to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन 3 विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी

0: जेपीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
3: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
4: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की

0: 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 270,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला

0: ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक। श्रोताओं स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहते हैं कि एक अकेले सितारे की चमक खूबसूरत होती है, लेकिन जब दो या तीन सितारे एक ही आसमान में टकराते हैं तो नज़ारे हैरान करने वाले होते हैं। हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है एक और अनेक, ये कार्यक्रम भी इसी जुगलबंदी का नाम है। इस कार्यक्रम में हम टटोलते हैं किसी एक महान कलाकार, एक दिग्गज फनकार का सफर और देखते हैं कि उसने किन किन अनेक नायाब हीरो या हीरोइनों के साथ मिलकर फिल्मी पर्दे पर अपना जादू बिखेरा है। और जब बात अंदाज, नजाकत और बेमिसाल अभिनय की हो तो सैफ अली खान से बेहतर कौन ही हो सकता है। आज का हमारा एक और अनेक आधारित है पटौदी खानदान के वंशज शर्मिला टैगोर के बेटे और मंसूर अली खान के बेटे सैफ अली खान पर।

ये गाना आपने सुना 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। श्रोताओं, ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि 90 के दशक का वो उस दौर का ये गाना है जब ये गाना हर रेडियो और कैसेट प्लेयर की शान हुआ करता था। और इस गाने में सैफ अली खान के साथ नजर आई थी रागेश्वरी लूम्बा। 1994 की इस सुपरहिट फिल्म का ये गाना, इस गाने की वजह से सैफ अली खान रातों रात हर दिन की धड़कन बन गए थे। पर्दे पर सैफ का वो चॉकलेटी बॉय का चार्म और रागेश्वरी की वो मासूम मुस्कान, इस जोड़ी ने उन दिनों स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरा था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। समय सैफ अली खान ने फिल्म जगत में कदम रखा 1993 में आई फिल्म परंपरा से, लेकिन उसके अगले ही साल मल्टी स्टारर फिल्म ये दिल्लगी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों से उन्होंने धमाल मचा दिया। 1999 में कच्चे धागे और हम साथ साथ हैं, इन फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। 90 के दशक में अनाड़ी बनकर, दिल जीतने से लेकर दिल चाहता है में क्यूट समीर, ओमकारा के खौफनाक मुस्कान वाले लंगड़ा त्यागी

और हालिया दौर के गंभीर ऐतिहासिक किरदारों तक सैफ अली खान ने खुद को बार बार साबित किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी सोलो हीरो बनने की होड़ में खुद को सीमित नहीं किया। जब जब वो किसी और दिग्गज के साथ पर्दे पर आए, उन्होंने सामने वाले की चमक को कम किए बिना ही अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ी।

0: ये गाना था फिल्म कच्चे धागे से। इस गाने में सैफ अली खान के साथ पूर्व मिस इंडिया और मशहूर अभिनेत्री नम्रता सिरोडकर नजर आई थी। नम्रता और सैफ की केमिस्ट्री और उनकी मासूमियत को इस गाने में बहुत पसंद किया गया था। इस गाने का संगीत दिया था नुसरत फतेह अली खान ने और इसे गाया था अलका याग्निक और कुमार सानू ने।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: कार्यक्रम एक और अनेक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और आज का हमारा ये कार्यक्रम आधारित है सैफ अली खान और अन्य कलाकारों पर। अक्षय कुमार के साथ टशन और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, शाहरुख खान के साथ कल हो ना हो में रोहित और अमन का रिश्ता दोस्ती और त्याग की मिसाल है। इस फिल्म में दोनों की पर्दे पर ट्यूनिंग ने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी। दिल चाहता है इस फिल्म में सैफ ने चुलबुले समीर का किरदार निभाया। ये फिल्म आज भी युवाओं की यादों का हिस्सा है। इस फिल्म में उनके साथ ही प्रीति जिंटा, आमिर खान और अक्षय खन्ना। एक फिल्म थी हम तुम, तारारंपम और बंटी बबली दो में सैफ और रानी मुखर्जी की कॉमिक टाइमिंग ऐसी लगती ही नहीं कि वे अभिनय कर रहे हैं।

एक लंबी लिस्ट है सैफ अली खान की पर्दे पर केमिस्ट्री की, दीपिका पादुकोण के साथ लव आजकल और कोकटेल, अजय देवगन के साथ तानाजी और ओमकारा, करीना कपूर के साथ टशन कुर्बान, अक्षय खन्ना के साथ रेस जैसी फिल्मों में उन्होंने लव प्रेम थ्रिल एक्शन और सस्पेंस का जो रोमांच हमें दिया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सेक्रेट गेम, वेब सीरीज में सरताज सिंह का रोल सैफ के लिए बहुत ही बड़ी मिसाल बना। आज सैफ अली खान का जन्मदिन भी है तो उनके जन्मदिन पर पूरी आकाशवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हम कामना करते हैं कि आने वाला जीवन उनके लिए नई फिल्मों और बेहतरीन किरदारों और बेमिसाल जुगलबंदियों से भरा रहे।

आने वाले दिनों में सैफ अली खान की हमें कर्तव्य और हैवान जैसी फिल्में देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का एक और अनेक कार्यक्रम जो आधारित था सैफ अली खान और अन्य कलाकारों पर। अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक और अनेक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारे इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे अपनी द्वितीय प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये अंक लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका अपना रेडियो मित्र जसवंत सिंह। श्रोता मित्रों, प्रकृति से जो भी कुछ हमें मिलता है वो निशुल्क मिलता है और इसीलिए वो बहुमूल्य भी होता है। श्रोताओं, जल भी प्रकृति से हमें निशुल्क ही मिलता है, वो भी बहुत मूल्यवान है। जल तो वास्तव में जीवन है। श्रोताओं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें, जल को बचाकर रखें। प्राकृतिक जल को साफ और स्वच्छ रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है और इसीलिए कहा भी जाता है कि जल है तो कल है। श्रोताओं, भारत सरकार भी समय समय पर जल संरक्षण और जल प्रबंधन के अनेक प्रयास करती है। आज भी इस कार्यक्रम में हम जिन विषयों पर बातें करेंगे वे जल संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। एक है जल क्रांति अभियान और दूसरा विषय है कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन। तो श्रोताओं, आइए पहले बात कर लेते हैं जल क्रांति अभियान के बारे में। श्रोता मित्रों, जल क्रांति अभियान की शुरुआत 5 जून 2015 को की गई थी। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। ये देश में जल संबंधी समस्याओं के निवारण और जल प्रबंधन के उद्देश्यों से चलाया गया एक विशेष कार्यक्रम है। श्रोता साथियों, जल क्रांति अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य देश में जल सुरक्षा और जल प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जल संरक्षण और जल सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां जल बचाओ और वर्षा जल को संचित करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। श्रोताओं, खेती में फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप और फव्वारा विधियों का प्रयोग करना भी वर्षा जल का संचयन करना और तालाबों आदि का पुनरुद्धार करना, ये सब जल क्रांति अभियान के प्रमुख कार्य हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़कर हमें भी अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभानी चाहिए, तभी तो जल संरक्षण और जल सुरक्षा के संकल्पों को हम पूरा कर पाएंगे। तो श्रोताओं, ये तो बातें हुई जल क्रांति अभियान के विषय में, और आइए अब कुछ बातें कर लेते हैं कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में। श्रोताओं, राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत कैच द रेन भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है। 22 मार्च वर्ष 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी बारिश जब भी पड़े जहां भी पड़े उसके जल को संचित करें। ऐसा करने से संचित वर्षा का जल हमारे उपयोग में तो आता ही है, साथ ही भूजल स्तर की गिरावट में भी कमी आती है। श्रोताओं, आज जल संकट का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन ऐसे खतरों को कम करने का सार्थक प्रयास कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत जहां जल संरक्षण और जल प्रबंधन के अनेक प्रयास किए जाते हैं तो वहीं जल बचाओ जैसे विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। श्रोता साथियों, कैच द रेन के अंतर्गत घरों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है, और इतना ही नहीं, आबादी के आसपास बने तालाबों की साफ सफाई करना, उनका गहरीकरण करना, ये सब काम इसी कार्यक्रम के अंतर्गत होते हैं। इस अभियान के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी तैयार किए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी बिल्डिंग्स और घरों की छतों पर भी RWH यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। इसके माध्यम से वर्षा का जल नीचे किसी बड़े से टैंक में एकत्रित हो जाता है और समय पर वो जल दैनिक उपयोग में आ जाता है। इसके साथ ही उस स्थान और उसके आसपास का भूजल स्तर भी सही रहता है। तो श्रोताओं, वास्तव में कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन

जल समस्या के समाधान का एक सार्थक प्रयास है। और वैसे भी अब तो जल वृष्टि यानी बारिश का समय है, बारिश हो रही है, और जब भी हमें जितना अवसर मिले हम वर्षा के जल को संचित करें ताकि उस समय पर ये वर्षा का जल काम आए जब जल की कमी होती है ना। आइए, बरसात का जिक्र है तो बरसात से जुड़ा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। पहले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में, श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज क्रम होंगे, कुछ खास है आज। और साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मंथन, जिसका विषय रहेगा क्या विरोध प्रदर्शन ही बदलाव का एकमात्र साधन है। इस मंथन में प्रतिभागी कलाकार होंगे विशेष राजपूत, अदिति चौहान, अंशिका राजपूत और उपासना सैनी। मंथन का संचालन करेंगी सिमरन कौर। शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आज चर्चा का विषय होगा मूंगफली में सामयिक कार्य और प्रधानमंत्री कुसुम योजना। साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे एक भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा खरीफ की फसल में लगने वाले रोग, कीट और उनकी रोकथाम। इस विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बातचीत करेंगे नरेश पाल सिंह। विविधा कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कुमुद कुमार की लिखी कहानी दो शर्ट। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत पाठक की आवाज में गीत। शाम 7:50 पर कार्यक्रम अदबी दुनिया में आज कलामी शायर होंगे काजी विकाउल हक। आज फिल्म संगीत का आनंद श्रोता अब लेंगे शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में, रात 8:00 गीत संध्या में और रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोताओं, ये तो बात हुई आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में, और आइए अब आपको बता दें कल के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में। कल रात 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कल सवेरे 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कल सवेरे 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्रदीप भट्ट का काव्य पाठ। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा जिगर के सामान्य रोग और उपचार। प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा नलकूप की सुरक्षा और संचालन।

हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे कल सवेरे 7:31 पर। इसमें चर्चा होगी अमर शहीद मदन लाल ढींगरा के विषय पर, और चर्चा का विषय रहेगा बिहार का माउंटेन मैन दशरथ मांझी। साथ ही जानकारी दी जाएगी रेड क्लिफ लाइन के विषय में। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दोपहर 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल दोपहर 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे शिशिर कनाधर चौधरी द्वारा

वायलिन पर बजाया राग मूलतानी, विलंबित व द्रुत तीन ताल, और तबले पर संगत करेंगे संतराम। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। तो मैं हूं आपकी अपनी साथी सिमरन कौर,
1: और सिमरन के साथ आज कार्यक्रम में बना रहूंगा मैं आपका अपना रेडियो पार्टनर मोहम्मद तौहीद।
0: दोस्तों। जिंदगी हमें बहुत मौके देती है, लेकिन हम उनका यूज कितना करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ मौके बार बार नहीं आते। हमें कभी भी हमारे दूसरे मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा सिमरन, और ज़िंदगी खुल कर जीनी चाहिए, इसके दिए हुए हर मौके का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सपने पूरे करने चाहिए।
0: क्योंकि दोस्तों कभी खुशी कभी गम तो चलता रहता है, क्योंकि सोना घिसकर ही चमकता है और हीरा कोयले की खान से ही मिलता है।
1: क्या बात कही है सिमरन, बहुत खूब हो। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बस हिम्मत करो और आगे बढ़ो।
0: बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके लिए हाजिर है इस प्यारी सी शाम का ये पहला प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
5: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
4: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
5: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
4: यूपी 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
6: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
7: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
6: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
8: और डोज में क्या है?
7: डोज में है मजा।
6: जी हाँ, मजा आ गया
9: यार। बंटी, हमारी जिंदगी में कितनी बेचैनी है।
10: सही बोल रहा है बबली, मुझे तो रात का सोना तक नसीब नहीं होता, मैं तो दुखी हो चुका हूँ।
9: हाँ भाई, और यहाँ देख, कब्रिस्तान में ये लोग कितने सुकून से सो रहे हैं।
11: ओ भैया, क्या कह रहे हो, इधर आओ, क्यों नहीं सोंगे, जान देकर जगा ली है, आओ तुम्हें भी सुला दें।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
12: दोस्तों, आज कुछ खास है। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक ऐसा पर्व जो सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि नई शुरुआत, नई उम्मीद और पॉजिटिव थिंकिंग का मैसेज लेकर आता है।
9: बिल्कुल सही कहा सिमरन। आज बात कर रहे हैं हम पारसी नववर्ष यानी नवरोज की। नवरोज यानी नया दिन।
12: दोस्तों, एक ऐसा दिन जब लोग बीते हुए साल की यादों को समेटते हैं और आने वाले समय के लिए नई उम्मीदों को सजाते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने की कामना करते हैं।
9: दोस्तों, पारसी समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने सदियों से अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को अपने दिल में जगह दी है और पारसी समुदाय ने भारत की मिट्टी को अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा से समृद्ध किया है।
12: बिल्कुल, नवरोज के अवसर पर

0: घरों की सफाई होती है, सुंदर सजावट होती है, नए कपड़े पहने जाते हैं और परिवार के लोग एक दूसरे को मिलकर शुभकामनाएं देते हैं।
1: और इसका संदेश बहुत गहरा है। ये कहता है कि अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए, और यही सोच इंसान के जीवन में उसको बेहतर बनाती है।
0: दोस्तों जरा सोचिए, अगर हर साल, हर नया साल हमसे एक सवाल पूछे कि इस साल तुमने दुनिया के लिए क्या अच्छा किया, तो शायद हमारी जिंदगी का अर्थ ही बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी दुखी इंसान को उम्मीद देना और अपने आसपास प्रेम को फैलाना।
1: यही तो असली उद्देश्य है सिमरन। दोस्तों, नवरोज हमें याद दिलाता है कि नई शुरुआत के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी-कभी एक अच्छी सोच, एक अच्छा शब्द और एक अच्छे कर्म भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, ये पर्व आज के तेज भागते जीवन में, जहाँ हम मोबाइल और रील्स की दिनचर्या में ही उलझे रहते हैं, ये हमें हमारे परिवार के साथ बैठने और एक दूसरे से मिलने का मौका देता है।
1: तो दोस्तों, इस नवरोज पर घर को ही नहीं, हमें अपने मन को भी साफ करना है और आने वाले कल को स्वागत करते हैं इस खूबसूरत मुस्कान के साथ।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ हाजिर है आपके मुस्कान के लिए एक प्यारा सा गीत।

0: और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
3: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: नमस्कार डॉक्टर साहब।
7: नमस्कार बहन जी, आइए बताइए क्या तकलीफ हो गई आज?
6: जी डॉक्टर साहब, तकलीफ तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे ना नींद बहुत आती है, पूरा दिन सोती रहती हूँ।
7: अच्छा जी, कौन सा मोबाइल यूज करती हो आप?
6: जी
7: कौन सा मोबाइल फोन यूज करती हो आप?
6: जी नोकिया 1100।
7: हैं, बटन वाला इस्तेमाल कर रही हो?
6: हाँ जी।
7: अरे एक काम करो, एक स्मार्टफोन लिख देता हूँ, कोई 5G सिम खरीदना और उसमें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना, सब ठीक हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आएगी।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
8: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम में मज़ा आ रहा होगा और आज की ये खूबसूरत शाम ऐसे ही जारी रहेगी। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और आज आपके लिए एक सरप्राइज़। जी हाँ, सरप्राइज़ ये है कि आज हम करने वाले हैं विचारों का मंथन। जी हाँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, क्या विरोध प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प है बदलाव के लिए? जी हाँ, और जिसमें प्रतिभागी रहेंगे अंशिका गुप्ता, अदिति उपासना और विशेष राजपूत, और इसमें प्रस्तोता होंगे सिमरन और दिव्यम। तो चलिए सुनते हैं विचारों का मंथन।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष मंथन में। मैं हूं आप सभी का दोस्त दिव्यम,
1: और दोस्तों दिव्यम के साथ आज हाजिर हूं मैं आपके अपने साथी सिमरन कौर।
0: दोस्तों, जब व्यवस्था में कोई कमी होती है और लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, जब अधिकारों की बात सामने आती है, तो अक्सर विरोध प्रदर्शन को अपनी बात रखने का माध्यम बनाया जाता है।
1: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों आज हमारा सवाल थोड़ा सा गहरा है और हमारा मंथन है, क्या विरोध प्रदर्शन ही बदलाव का एकमात्र रास्ता है, या बातचीत, विचार विमर्श, शिक्षा, जागरूकता, मतदान और लोकतांत्रिक तरीकों से भी बदलाव लाया जा सकता है? इसी सवालों पर आज हम करेंगे विचारों का मंथन, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं हमारे कुछ साथी। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आप सभी को।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष राजपूत और मैं एक अध्यापक हूँ।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उपासना सैनी है और मैं आज आकाशवाणी में आई हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए।
4: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है अदिति चौहान और मैं एक शिक्षक हूँ।
5: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और मैं यहाँ आई हूँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारे चारों प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं और मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि आप सभी विरोध प्रदर्शन या युवा शक्ति को किस तरह से देखते हैं? आप सभी अपने विचार को आदान प्रदान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं, शुरू करें।
5: मेरी राय ये है प्रोटेस्ट के बारे में कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और इंडिया में अगर गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए बनाई गई है और अगर कुछ चीज़ें सिटीजन्स के ही फेवर में नहीं हो रही हैं, तो उन्हें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, वरना उस डेमोक्रेसी का, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।
1: अंशिका जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या है?
5: मेरे लिए विरोध प्रदर्शन का मतलब ये है कि अगर हम मिलकर आवाज़ उठाते हैं, मतलब एक इंसान की आवाज़ ज़रूर इग्नोर हो सकती है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल अगर एक साथ बोलते हैं तो उनकी आवाज़ गवर्नमेंट कभी इग्नोर नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल, तो क्या केवल अपनी नाराज़गी दिखाना या फिर अपनी बातों को बताना ही

0: बदलाव का एक एकमात्र तरीका यही है।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे सही लगता है।
2: अच्छा, इस विषय में हमारे बाकी प्रतिभागी क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं।
3: मेरे विचार से प्रोटेस्ट हमेशा आवश्यक नहीं होता है। लोकतंत्र में हमें अपनी बात रखने के लिए अनेक शांतिपूर्ण और प्रभावी रास्ते हैं, जैसे बातचीत, संवाद, शिकायत, जनसुनवाई और कानूनी प्रक्रिया। हमेशा प्रोटेस्ट जरूरी नहीं है।
0: तो अदिति जी, आप एक बात बताइए कि अगर लोगों की बात शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुनी जा रही, तो क्या उस स्थिति में प्रोटेस्ट जरूरी है?
4: बिल्कुल जरूरी है। इंसान का हक होता है कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट करना। चीज़ें कभी कभी जीवन में ऐसे हालात हो जाते हैं कि जो गरीब इंसान है वो अपनी चीज़ों को मतलब भूल ही जाता है, उसके लिए कोई आगे आके खड़ा नहीं होता है। फिर एक दूसरा निकल के आता है, वो हम लोग उनको कहते हैं कि आप, वो उनको 10 बातें सुनाते।
2: आपका विरोध प्रदर्शन या फिर युवा शक्ति के द्वारा किए जाने वाले प्रोटेस्ट पर क्या विचार है? प्रोटेस्ट किस तरह से किया जाना चाहिए और क्या ये सही तरीका है?
5: मेरे अकॉर्डिंग तो जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेस की, जिससे कि जो पब्लिक हो उसकी डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें इफेक्ट ना हो। और दूसरी बात, अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हम उनका खंडन ना करें।
2: जी बिल्कुल।
0: लेकिन विशेष अगर शांतिपूर्ण तरीके से बात सुनी ही ना जा रही हो, उसका हमारे पास कोई रास्ता ही ना मिल रहा हो, तो फिर आप क्या करना चाहेंगे?
5: उसके लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, लीगल एक्शन से हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन तोड़फोड़ करना, उसका कोई हिंसा करना, आंदोलन का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता हिंसा करने से।
1: जैसे कि विशेष जी ने बोला कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट का मतलब है अगर गवर्नमेंट के चैनल्स फेल हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की जो चैनल्स बने हुए हैं इतने लोग वहाँ पे उसको कंडक्ट कर रहे हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम मतलब पब्लिक भी एक ऐसा प्रेशर बना सकती है अगर गवर्नमेंट के चैनल्स फेल हो गए हैं तो।
3: यहाँ मैं अंशिका जी से एक बात कहना चाहती हूँ। अंशिका जी, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको भी पता है प्रोटेस्ट के चक्कर में आम जनता को कितनी परेशानियाँ होती हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोटेस्ट जब होता है तो जो आम इंसान है वो कितना कुछ फेस करता है उस चीज़ में।
1: बिल्कुल सही है, हम टेम्पोरेरी इनकन्वीनियंस को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें वेज ढूंढने चाहिए, जैसे कि हमें स्पेसिफिक प्लेसेस दे देनी चाहिए।
4: प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्टर के लिए नहीं होता, कभी कभी ये सोसाइटी की आवाज़ भी तो बन सकती है। कोई चीज़ के लिए अगर इंसान परेशान है तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं ना, वो हमारा अधिकार है।
5: प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, और लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास हमारा कर्तव्य भी है कि हमें देश की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और जो दंगे वगैरह होते हैं उससे आम लोगों को ज़्यादा दिक्कतें पड़ती हैं।
2: तो विशेष जी, आपने सही बोला कि कई बार प्रोटेस्ट का ध्रुवीकरण हो जाता है और जो मुख्य मुद्दा रहता है उससे अक्सर जनता जो है भीड़ जो है भटक जाती है, और कई विशेष जो राजनीतिक तत्व हैं या फिर सामाजिक तत्व हैं वो अपने अपने प्रयोजनों के लिए इस प्रोटेस्ट का और आम जनता का बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने देखा भी आज के इस हमारे दिल्ली प्रोटेस्ट में, जहाँ पर यूथ को कई जगह से मिसगाइड भी किया गया और जो है प्रोटेस्ट का एक ध्रुवीकरण किया गया, जो कि राजनीतिक एक तरह से इसका एक मुनाफा लेने के लिए या फिर एक राजनीतिक पक्ष रखने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया। तो इस पर अदिति जी और अंशिका जी, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या यूथ या युवा शक्ति जो है उसका ध्रुवीकरण किया जाना और किस तरह से उसको चैनलाइज किया जाना चाहिए कि इससे प्रोटेस्ट जो है अपने हितों तक पहुँचे, ना कि अपने मार्ग से भटके?
1: प्रोटेस्ट में हमें हमारी हिस्ट्री में भी देख सकते हैं अपनी कई वर्कर्स राइट, वुमेंस राइट और सिविल राइट्स हमें प्रोटेस्ट करके ही मिले हैं। इवन हमें इंडिपेंडेंस भी प्रोटेस्ट करके ही मिली है।
0: लेकिन अंशिका जी, अगर हर समस्या के समाधान के लिए प्रोटेस्ट किया जाए तो क्या इससे हमारे समाज में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी?
1: हम प्रोटेस्ट करने को और जो प्रोटेस्ट से हुई इनकन्वीनियंस को एक ही नहीं समझ सकते। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, उससे हुई इनकन्वीनियंस गलत है, तो हम पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की बात कैसे कर सकते हैं?
5: इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, ये हम पहले पता नहीं लगा सकते। दूसरी बात, इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, जैसे चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों की भी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो असहयोग आंदोलन था वो

0: शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ज्यादा भयानक हुए थे।
1: बिल्कुल, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है वो एक हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेता है।
0: हाँ,
1: तो इस बारे में अंशिका जी आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या आपको लगता है कि अगर हमने पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है तो ये तो आपको भी नहीं पता ना कि वो कब एक हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लेगा, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं, उस कंडीशन में आप क्या करना चाहेंगी?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए, पर उस सेफ्टी को इंश्योर करा जाए, सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करे, मतलब हमें सावधानी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए।
3: जीति जी, इस विषय में आप क्या सोचती हैं?
4: हर एक इंसान एग्रेसिव वो ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जाके वहाँ पे कुछ दंगे फसाद कर देगा, कुछ शांति से भी करे जा सकते हैं। रही बात चौरी चौरा मूवमेंट की, इन्होंने जैसे बोला, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हर एक इंसान एग्रेसिव ही हो।
2: रोड्स पे भी एक्सीडेंट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चलना बंद कर देंगे, रोड्स पे गाड़ियाँ चलाना बंद कर देंगे।
5: लेकिन अंशिका जी, जैसे आपने देखा दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे जो मासूम लोग थे जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि वहाँ क्या चीज़ चल रही है, वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर आए थे। उनका मुद्दा था पेपर लीक, नीट पेपर लीक, लेकिन वहाँ उनकी चीज़ों को कितना मिसयूज़ हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है किसके ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर। जो लोग वहाँ पर गाइड कर रहे थे क्या वो सामने आए निकल के? नहीं। उसमें कौन मासूम जो जनता थी, जो यूथ था हमारा, जो इस चीज से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, उन लोगों को फेस करना पड़ा। और आपने देखा होगा कि लोग इतने अग्रेसिव हो गए प्रोटेस्ट के चक्कर में कि उन्होंने अपोजिट रिएक्शन किया, उन्होंने पुलिस तक पे अटैक किया है, क्या वो सही था?
2: तो आप को क्या ये लगता है कि प्रोटेस्ट, इसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट ही खत्म कर देना चाहिए या फिर हमें अवेयरनेस यूथ में ज्यादा फैलानी चाहिए?
6: लेकिन प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, वहाँ अगर आप अपनी एग्रेसिवनेस लेके जा रहे हो तो वो तो राइट नहीं है ना। प्रोटेस्ट करने के और भी बहुत तरीके हैं, हमें उस चीज को यूज करना चाहिए।
2: वी आर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, वी आर नॉट ऑल्सो सेइंग दैट वायलेंस वाला प्रोटेस्ट ही करना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं।
6: लेकिन आपने हमेशा देखा है प्रोटेस्ट वायलेंस बन जाता है, तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए हमें।
2: वो तो हमारे आफ्टर इफेक्ट्स है ना, आफ्टर इफेक्ट्स के तो
6: लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें वायलेंस नहीं हुआ है?
1: लेकिन उपासना जी, आप एक बात बताइए, जब कमजोर वर्ग, आप भी जानती हैं कि एक कमजोर वर्ग का आखिरी हथियार केवल उसकी आवाज ही होती है, जब कोर्ट कचहरी और बड़े स्तर की पैरवी पैसा मांगती है, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती, तो एक आम इंसान के पास बस आवाज और उसकी सामूहिक संख्या ही होती है जिसे वो अपनी मांगों के लिए वहां पर प्रस्तुत करता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक आम वर्ग जब उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा?
6: मैम, वो अपनी आवाज़ उठाता है, वो राजनीतिक लोगों का के पास जाता है, अपनी बात को मतलब उसके समाज में रखी जाए, लेकिन क्या उनकी आवाज़ें मानी जाती हैं वहाँ पर? नहीं। जैसे आपने देखा होगा राजनीतिक लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पर आते हैं, कोई भी जेन्युइन सिंपैथी नहीं रखता है उनके लिए। तो मेरा मानना यह है कि उन लोगों को सिर्फ कानून की सहायता लेनी चाहिए, अपनी बात को वहाँ रखना चाहिए सामने कानून के।
3: तो उपासना जी, कुछ ऐसे कमजोर वर्ग से लोग हैं जो कि लंबे सालों के कोर्ट कचहरी के मसलों में नहीं पड़ सकते और उनके पास ना इतने धन है, ना उनके पास इतने मतलब मूलभूत आवश्यकता है और ज़रूरतें हैं, और ना ही उनके पास इतना समय है, तो उनके लिए फिर किसी भी प्रोटेस्ट का या मुद्दे का हल क्या होना चाहिए?
6: प्रोटेस्ट जरूरी नहीं है, अपनी बात को हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी कहीं जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, वहाँ ये चीज़ जज होंगी कि ये पुअर फैमिली से है, ये रिच फैमिली से है। हमें संविधान में ये अधिकार मिले हुए कि हम अपनी बात को बहुत शांतिपूर्वक रख सकते हैं और सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सुनवाई होती है। अगर हम कानूनी कार्रवाई के लिए हम जाते हैं कानून के पास तो होती है वहाँ पर।
3: उपासना जी, आपने भी संवैधानिक अधिकारों की बातचीत करी, तो संविधान तो हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी प्रदान करता है।
4: देखिए, अभी मैं उपासना मैम ने एक बात बोली है यहाँ पे, उसके विषय में एक बात कहना चाहूँगी। 1873 में एक सत्य शोधक समाज नाम का, जो कि ज्योतिबा फूले जी ने एक प्रोटेस्ट ही कह सकते हैं हम, वो किया था। उसका उद्देश्य था कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को एक्सप्लॉइट करना था कि मतलब ये हम लोगों के समाज में ना हो।
6: मैम, जैसे आपने ज्योतिबा राव फुले की बात की है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन मैंने उनके बारे में जैसा पढ़ा है तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। उनकी जो वाइफ थी माता सावित्री बाई फुले, जैसे हमारे देश में पहले गर्ल्स एजुकेशन नहीं थी, तो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने खुद से प्रयास किया। वो क्या करती थी, वो 7 मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाती थी जाके, और जैसे माता सावित्री बाई फुले, ज्योतिराव फुले की जो पत्नी थी, वो प्रथम शिक्षिका हमारे देश की रही हैं, तो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने शांतिपूर्वक

0: पहले खुद ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उसके बाद उन्होंने सात औरतों को शिक्षित किया, ऐसे हमारी एजुकेशन बढ़ी है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रोटेस्ट हुआ था।
1: देश में अगर हम लोगों को कोई विकास चाहिए तो अगर वो विकास हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
2: लेकिन अदिति जी एक बात है ना, देखिए समाज में गहरे और स्थायी बदलाव रातों रात नहीं आते। समाज सुधारकों ने सिर्फ नारे ही नहीं लगाए बल्कि उन्होंने शिक्षा, लेखन और जागरूकता का जरिए लोगों की सोच बदली। हम सभी जानते हैं कि विरोध से लाया गया बदलाव ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, तो ऐसे में आप क्या कहें?
3: मैं समझता हूँ विशेष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आप।
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विरोध प्रदर्शन की बात चल रही है अब, वो करना ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए हमें इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पर्सन हमारा ब्रेन वॉश ना कर सके और वो हमारे जो आंदोलन की दिशा है उसे भ्रमित ना कर सके।
0: सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है आपको भी पता है, सोशल मीडिया। जरूरी नहीं हम सड़कों पे उतर के विरोध करें, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रख सकते हैं और हमारी सुनवाई, आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे सोशल मीडिया से भी सॉल्व हो रहे हैं। जरूरी नहीं उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना जरूरी है।
4: और सड़कों पे उतरने से जो आम लोगों का जीवन होता है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह या जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां होती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है।
1: इस चीज में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जरूरी नहीं है हर जगह नेट की फैसिलिटीज हो, ये भी हो सकता है ना।
0: लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हर गांव हर जगह नेट है आज के टाइम में।
1: पर आजकल कुछ जनजातियां अभी भी ऐसी हैं कि जिनको ना ही फोन चलाना आता है, उनको पता ही नहीं होता कि
0: सोशल मीडिया। तो मैम आपको लगता है वो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं? आपको लग रहा है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो लोग उसमें आ रहे हैं?
1: हम किसी के बारे में जाके वहाँ नहीं देख रहे हैं वो किस चीज़
0: प्रोटेस्ट में। आपको भी पता है कौन लोग आ रहे हैं,
1: परेशान है, उनका अपना स्ट्रगल है।
3: सही बात करें कि सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, परंतु साथ साथ सोशल मीडिया के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक न्यूज का बहुत प्रचलन है, तो किस तरह से इस प्रोटेस्ट की सही राह दिशा जाएगी?
0: सर फेक न्यूज के लिए आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, उस पर जांच होके क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ये बोलना, मुझे नहीं लगता कि फेक कार्रवाई के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं फेक न्यूज एकदम वायरल होती है, उसकी जांच पड़ताल होके उन पे कार्रवाई की जाती है।
2: लेकिन उपासना जी जब तक वो कार्यवाही चलती है तब तक वो वायरल हो चुकी होती है, एक बार डिस्टरबेंस हो चुका होता है।
4: जो ये फेक न्यूज वाली बात है, इसके लिए हमें एक एज ए ट्रू सिटीजन एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड चेक क्रॉस चेक द न्यूज। हमें अपनी फेक न्यूज को क्रॉस चेक करना चाहिए सर्कुलेट करने से पहले, तभी इन चीजों को हम सर्कुलेट होने से बचा सकते हैं, अदरवाइज चेन रिएक्शन चलती रहती है और हम भी उसका एक पार्ट बन जाते हैं।
1: हर कोई तो नहीं चेक करता,
4: तो यही तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी है कि उसे चेक करें।
1: पर हर कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता।
0: अदिति मैम मैं यहाँ आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, जो लोग जो नेट ही नहीं चला रहे उनको फेक न्यूज का पता कैसे चलेगा सोशल साइट पे?
1: अभी आपने बोला था कि हर कोई जागरूक है नेट के लिए और इन सब के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि
0: आपने बोला ना कि कुछ लोग मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी फोन यूज नहीं करते, तो जब उनको फेक न्यूज मिलेगी नहीं तो उनको वो कैसे इस चीज का विरोध करेंगे?
1: तो मैं वहीं पे तो कहना चाह रही हूँ कि अगर उनके पास प्रॉपर फोन की और नेट की सुविधा नहीं है तो वो लोग प्रोटेस्ट पे ही तो आएंगे।
0: लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग प्रोटेस्ट करने का भी सामने आते हैं। प्रोटेस्ट मैंने जहाँ तक मेरा अनुभव है तो प्रोटेस्ट वही लोग करने आते हैं जो सोशल साइट से फेक न्यूज लेके, मतलब कुछ भी ऐसा चीजें चल रही हैं वो उसको सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है आजकल, जहाँ तक मुझे लग रहा है जेन्युइन चीज रखी ही नहीं जा रही है।
4: कभी भी किसी अगर कोई बहुत बड़ी गैदरिंग होती है प्रोटेस्ट में, वहाँ पे हमारा अगर प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग का पॉइंट है वो जेन्युइन पॉइंट है, लेकिन अगर ये एक सोशल इवेंट है हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते कौन इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाला है, और कभी कभी जिनका माइंडसेट नेगेटिव भी होता है वो भी इस प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं और इसकी जो दिशा होती है उसे भ्रमित कर देते हैं,
0: क्योंकि वो बहुत टाइम से मौका ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो जाके अपनी एग्रेसिवनेस निकाल सके, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका होता है प्रोटेस्ट की वजह से। तो क्या प्रोटेस्ट सही है आप बताइए?
5: हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी जरूर होंगी।
0: लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अंशिका जी, प्रोटेस्ट जरूरी नहीं है, बिना प्रोटेस्ट के हम बहुत सारी चीजें अपनी समाज में रख सकते हैं, और एक हमारी मेन चीज है हमारी वॉइस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारी बात सामने वाले तक अच्छे से पहुंच जाए, प्रोटेस्ट जरूरी नहीं है।
5: हम आप मुझे एक तरीका बताइए जिससे आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकें।
0: अगर मुझे कोई परेशानी है, मुझे जिससे भी जो परेशानी होगी, लाइक मुझे अगर कानून कोई सहायता चाहिए कुछ भी, तो मैं अपनी बात को वहां जाके सीधा रखूंगी, मैं प्रोटेस्ट
5: कहां जाएंगे?
1: इतने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, इंसान उन रूल्स और रेगुलेशन को ही भरते भरते रह जाएगा।
0: नहीं मैम, आई विल टेक लीगल एक्शन।
1: केस पेंडिंग है आज भी, हम लोगों के पास मतलब एक परफेक्ट डिजिट भी नहीं है कि हम लोगों के इंडिया में कितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं।
0: मैम उसके लिए हमें एक सुविधा मिलती है लोक अदालत की, वहाँ जाके हम अपने मुद्दे रख सकते हैं।
1: 140 करोड़ जनसंख्या मैम, सुनने वाला भी एक वक्त के लिए तकलीफ में आ सकता है।
0: मुझे ऐसा लगता है जो लोग अपनी बात वहाँ नहीं रख सकते तो हमें वहाँ उनकी बात बहुत शांतिपूर्वक रखनी चाहिए।
1: मैम हमने कभी ये नहीं बोला कि प्रोटेस्ट का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं।
0: लेकिन मुझे जहाँ तक लगता

0: प्रोटेस्ट एग्रेसिवनेस तक चला जाता है।
1: आपकी बात सही है, हम कह सकते हैं, पर वो आफ्टर इफेक्ट है, जरूरी नहीं है कि
0: तो हमें वो सिचुएशन ही नहीं क्रिएट करनी ना कि जिसकी वजह से वो एग्रेसिवनेस में बन जाए,
2: जिससे कॉन्सिक्वेंसेस में पता है।
1: वो सिचुएशन, वो सिचुएशन आपके आफ्टर इफेक्ट के बात है। मैम एक बात बताइए, कोई इंसान वहाँ पे क्या हमेशा दंगे के लिए, फसाद के लिए या एग्रेसिवनेस के लिए जा रहा है? प्रोटेस्ट में कुछ लोग अपनी मांगे रखते हैं। आजकल बहुत से गरीब भी ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं होती, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट में दंगा करेंगे या कुछ एग्रेसिवनेस करेंगे या अपनी बात रखेंगे गवर्नमेंट तक?
2: क्या अगर उस उनके जो रोटी के लिए जो भी आप बता रहे हैं उनका प्रोटेस्ट है, उसमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन ऐड हो जाते हैं जो कि वहाँ पे हिंसा करने वाले हैं, तो उससे पूरा जो प्रोटेस्ट है वो नेगेटिव शेड में चला जाता है?
3: तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर।
0: तो यही तो हम बोलना चाह रहे हैं, हमें अगर अपने मुद्दे क्लियर हैं, हमें अगर अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर हैं, तो हमें प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारे वे
3: पड़ेगी जरूरत, क्योंकि गवर्नमेंट
2: अच्छा, आप जो अभी ये रिसेंट में प्रोटेस्ट हुआ है, आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो ठीक था? हाउ विल यू जस्टिफाई?
3: स्टूडेंट्स को न्याय मिला,
2: स्टूडेंट्स को न्याय मिला, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने जो मार्च पास करा था कि हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर का होम होता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, हम उस साइड जा रहे हैं, जब इतनी बड़ी भीड़ परमिशन के बिना किसी नोटिस के प्राइम मिनिस्टर के होम की साइड जाएगी, तो पुलिस का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें होल्ड करेगी, उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, और इस बीच में ही टकराव होते हैं और उसी से फिर हिंसा होती है।
1: सर झारखंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे भी शांतिपूर्वक हो रहा है।
2: हाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट इसीलिए है क्योंकि उन जो वहाँ के यूथ है उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने प्रोटेस्ट में ऐड नहीं
3: किया। तो समझने वाली बात
1: है, यही तो आफ्टर इफेक्ट है।
0: लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना मैम, मोस्टली प्रोटेस्ट में राजनीतिक पार्टी आ ही जाती है। अभी आप रुके, क्या पता वो भी प्रोटेस्ट एक अलग रूप ले ले।
2: राजनीतिक पार्टी ऐड होना उन्होंने चाहा था, लेकिन स्टूडेंट्स से मना करते क्योंकि वे अवेयर स्टूडेंट्स थे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अवेयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उससे प्रोटेस्ट से सिर्फ केओज ही क्रिएट करते हैं कंट्री में।
4: तो विशेष जी आप कहना चाहेंगे कि शिक्षा जो है एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है किसी भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के पीछे, एक बुनियादी आधार शिक्षा है। तो जो भी व्यक्ति प्रोटेस्ट में हिस्सा बन रहे हैं उनको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और एक सुनियोजित रूप से उस प्रोटेस्ट का जो है मतलब लीडिंग करना आवश्यक है।
2: और किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपने एडवांटेजेस के लिए वहाँ पे भीड़ बढ़ाने के लिए, अब वही लोग बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म ही क्यों दे जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। हम अगर एक प्रोटेस्ट करेंगे तो हम उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते किस माइंडसेट के पर्सन वहाँ ऐड हो रहे हैं।
1: सर ऐसे तो सोशल मीडिया पे भी इतनी फेक न्यूज़ेस हो सकती हैं कि इंसान का माइंडसेट एकदम डाइवर्ट हो जाए।
2: तो इसे ही तो हमें क्रॉस चेक करना, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वी आर जेन ज़ीज़, वी ऑल आर एजुकेटेड एंड वी शुड नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वी हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट टू क्रॉस चेक द न्यूज़ एंड ऑल, और उसके बाद हम उसे स्प्रेड करें। और अगर ऐसी कोई न्यूज़ हमें मिलती है, मान लो मुझे फेक न्यूज़ मिलती है और मैं उसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ और वो गलत है, तो मुझे तुरंत साइबर क्राइम में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब लोगों को लगेगा कि हाँ साइबर क्राइम वाले कुछ लोगों के ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो फेक न्यूज़ का जो स्प्रेड है वो खुद ही कम हो जाएगा।
0: हम अपनी बात रखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा अधिकार है, हमें संविधान पूरा अधिकार देता है बात रखने के लिए। हम जो खिलाफ है वो है प्रोटेस्ट के, हमें एक शांति
3: बात रखने के बाद भी अगर बात सुनी नहीं जा रही है, बात हमने रख दी लेकिन
0: तो आपको लीगल एक्शन, हम उसके लिए भी हमारे पास सुविधाएं, हम पुलिस के पास जा सकते हैं, अपनी बात वहां रख सकते हैं। अगर आपका प्रधान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका सांसद आपकी बात नहीं सुन रहा है, विधायक आपकी बात नहीं सुन, आप उनके खिलाफ।
4: परंतु उपासना जी अगर हम तंत्र तंत्र भटकते रहेंगे तो इतने में तो हमारा जो मेन मुद्दा होगा वही खत्म हो जाएगा।
0: तो मुझे नहीं लगता है एक प्रोटेस्ट एक वो एक वे है जिससे हमारी बातें पूरी होती
3: है। अपोजिशन के पास भी अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार नहीं है हमारे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने का, तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन ही तो है।
2: अपोजिशन एक आम आदमी
3: को पूरा अधिकार है।
2: अपोजिशन एक आम आदमी का सबसे अच्छा हित चाहने वाला वो होती है, पब्लिक फिगर होता है कि वो हमारा सबसे हित की बात करता है, लेकिन हमें कभी उसे इतना राइट नहीं देना चाहिए कि वो हमें मिसगाइड करे किसी भी चीज को।
3: तो इतनी अवेयरनेस तो आपको खुद होनी चाहिए।
2: तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमें ऐसे, अब जो दिल्ली में हुआ है वो सब लोग जैन जीज थे, सब एजुकेटेड थे सब लोग, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई चीज क्रॉस चेक नहीं करे साक्षर और शिक्षित का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विशेष जी, अंशिका जी, अदिति जी एंड उपासना जी, आप सभी के अपने विचार और अपनी बातें एकदम सही हैं, आप दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर अपनी बात रखना और बदलाव की मांग करना हमारा अधिकार है, लेकिन हर बदलाव के लिए प्रोटेस्ट ही एकमात्र रास्ता हो ये जरूरी नहीं। विरोध यदि आवश्यक है तो वो शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और मर्यादित होना चाहिए। बदलाव बातचीत से भी आ सकता है, विचार विमर्श से भी आ सकता है और जागरूकता फैलाने से भी आ सकता है और सही दिशा में उठाए गए सकारात्मक कदमों से भी आ सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं बल्कि समाधान खोजना होना चाहिए। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे, विरोध से आवाज उठ सकती है लेकिन संवाद से समाधान निकलता है। और एक बेहतर समाज की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि लोग कितने जोर से विरोध करते हैं, बल्कि इस बात से होती है

0: वे समस्याओं का समाधान कितनी समझदारी और शांति से खोजते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: हम सभी धन्यवाद करना चाहते हैं आकाशवाणी का, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रख पाए हैं। शुक्रिया।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा अपने खत के जरिए। खत भेजने के लिए नोट करें हमारा पता, कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9457078288।
1: साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, और साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ और आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ मुझे सिमरन कौर
0: और मोहम्मद तौहीद को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि

0: वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉक्टर पेम्मा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। और सुनाइए भैया, क्या हाल चाल हैं आपके? सब ठीक ठाक, राजी खुशी? भैया देखिए, आप राजी खुशी होंगे, आपकी फसल भी बढ़िया खड़ी होगी, क्योंकि अब देखिए भाई, एक जो फिक्र था इस बार वो ख़त्म हो गया कि भैया इस बार अल नीनो प्रभाव के कारण बारिश कम होने का अनुमान जो कर रहे थे, तो भैया इतनी कम बारिश भी हमारे यहाँ नहीं हो रही है। और भैया देखिए, आज भी हमारे जनपद में, बिजनौर जनपद के धामपुर तहसील में, किरतपुर विकास खंड में और जिला मुख्यालय पर बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, और नजीबाबाद क्षेत्र में भी रात अच्छी वर्षा हुई है। तो कहने का मतलब यह है, अब जो है बारिश जो तीसरे चौथे दिन हो ही जा रही है, और हमारे किसान भाइयों का सिंचाई से पीछा छूट रहा है। यूं कहिए कि भैया सिंचाई पे होने वाली लागत भी कम हो रही है, और भैया वैसे गर्मी से भी निजात मिल गई है। हाल में अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन तक कितनी गर्मी थी। तो भैया ईश्वर मेहरबान है, कुदरत मेहरबान है, और मौसम भी अच्छा हो रहा है, हमारी फसलों की सिंचाई भी हो रही है, तो भाई अब हमारे किसान भाई राहत महसूस कर रहे हैं। खैर छोड़िए भाई, कल हमने मनाया 15 अगस्त, और भैया 15 अगस्त तो आप सभी ने उत्साहपूर्वक मनाया होगा, और आपको पता भी होगा कि 15 अगस्त का क्या विशेष महत्व है। तो भैया हमारे देश में आज़ादी के बाद प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और विकास हुआ है, और हमारी खेती का भी नित्य विकास हो रहा है, और हमारी खेतों की उपज बढ़ी है प्रत्येक खेती के क्षेत्र में, चाहे वो भैया सब्जी हो, फल हो, धान्य फसलें हों, या खेती से जुड़े जैसे डेयरी उद्योग हो, और भैया पुष्प उत्पादन हो, या कुछ किसान भाई अपने खेत में पॉली हाउस उगा रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, और कुछ किसान भाई मुर्गी फार्म भी खोल लेते हैं और मशरूम उत्पादन हो रहा है। तो इस प्रकार से खेती के काम में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। और भैया यदि आज हम वर्तमान समय में बात करें कि खरीफ के मौसम में तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो भैया खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से जो तिलहनी फसल होती है वो होती है मूंगफली, और इसके बाद सूरजमुखी वगैरह का नंबर आता है। तो भाई मूंगफली जो हमारे किसान बोते हैं, अब भी वैसे मूंगफली बोई जाती है, लेकिन जो पहला समय था उस समय ज़्यादा मूंगफली बोई जाती थी जब सिंचाई के साधन कम थे, लेकिन जो किसान भाई मूंगफली आज भी उत्पादन कर रहे हैं, तो भैया वे इस समय अपने खेतों में मूंगफली में कुछ जरूरी सामयिक कार्य कर रहे हैं। और भैया मूंगफली में इस समय सामयिक कार्य क्या हो रहा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। तो भाई आज से जो अगस्त महीने का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो गया है, और जैसा कि आज चर्चा का विषय हम बता ही रहे हैं कि मूंगफली है, तो इसमें जो हम कुछ सामयिक कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम यदि हम मूंगफली की फसल में नमी की बात करें, तो भाई हम अभी बता रहे थे कि नमी की कोई कमी नहीं है, और जिन क्षेत्रों में मूंगफली की फसल में नमी की कमी है, तो भैया वहां पर नमी बनाए रखना है। और वैसे तो भैया अगस्त माह में वर्षा के द्वारा ही खेतों में नमी पर्याप्त बनी रहती है, और यदि कहीं वर्षा की किसान भाइयों कमी देखी जाए तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और साथियों ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी भी वर्षा का मूंगफली की फसल को ख़राब कर देता है, तो इसलिए यदि खेत में ज़्यादा पानी भर जाए तो उस पानी को बाहर निकाल देना चाहिए भैया। और अब बात आती है खरपतवारों की, क्योंकि बरसात के मौसम में आप जानते हैं कि घास और खरपतवार बहुत उगते हैं, तो अगस्त के महीने में खरपतवारों का प्रकोप जो है ये रहता ही रहता है, और इनका नियंत्रण भी हमें करना चाहिए, और नियंत्रण हम करते हैं मूंगफली की फसल में यदि खुरपी की सहायता से नियंत्रण करें, तो भाई बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि मूंगफली में

0: ज़्यादा क्षेत्र और ज़्यादा मात्रा में खरपतवार जब उग जाते हैं तो इसका कुछ किसान भाई रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। लेकिन भैया बड़ी सावधानी पूर्वक रासायनिक नियंत्रण करें, क्योंकि यदि मूंगफली की फसल भी इन रसायनों से खराब हो गई तो भैया तन मन और धन तीनों रूप से किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो इसकी जो है, जब रासायनिक नियंत्रण करें आप, रासायनिक की मात्रा और जो प्रयोग विधि है ना भैया, तो वो अपने नज़दीक के किसान भाई जो है, जो उनका कृषि विज्ञान केंद्र है ना, तो वहाँ जाकर या जिला कृषि रक्षा इकाई या भैया अपने विकास खंड पे जो एडीओ कृषि होते हैं ना, यानी कि सहायक विकास अधिकारी कृषि, उनसे संपर्क करके आप ये रसायन डाल सकते हैं। और एडीओ साहब आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे कितना आपको रसायन डालना है और भैया किस प्रकार से आप उसकी मात्रा डालेंगे और कैसे आप स्प्रे करेंगे या प्रयोग विधि। और भैया मूंगफली में जहाँ तक पोषक तत्वों की मात्रा की महत्ता की बात है, तो यह मिट्टी की जांच के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। हाँ, बिना मिट्टी की जांच के भी आप अपनी मूंगफली की फसल में आप जो है 12 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर की दर से और 10 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टर की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं, तो भैया अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं पैदावार में। और भैया अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। तो निराई गुड़ाई का इतना महत्व है मूंगफली की फसल में कि जो मूंगफली के तने होते हैं ना, जो पौधे के पास वाली मुख्य शाखा होती है वहां पर एक रचना निकलती है जिन्हें पेग कहते हैं। और भैया ये जो पेग रचनाएं निकलती हैं, ये ऐसी होती हैं जैसे जड़ निकल जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऊपर तने से जड़ निकल जाती हैं, जैसे आपने बड़े पेड़ में देखा होगा वट वृक्ष में, तो उसी प्रकार छोटे से पेग निकलते हैं क्योंकि मूंगफली का पौधा बहुत नन्हा होता है, छोटा होता है। तो ये पेग नाम की संरचनाएं सीधे मिट्टी में जब घुस जाती हैं तो उन्हीं में फलियां और बीज बनते हैं। तो ध्यान रहे कि निराई गुड़ाई के समय किसान भाई अनुभवी व्यक्ति से ही निराई गुड़ाई करवाएं और पौधों की जड़ों के पास हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाएं। और ये भी ध्यान रहे कि जो भी भैया पेग नाम की ये संरचनाएं हैं वे कटने न पाएं। तो इस प्रकार भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और मिट्टी में ये मूंगफली की जो पेग हैं वो आराम से घुस जाती हैं, और जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो मूंगफली की फलियां अच्छी निर्मित होती हैं और भैया पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसके बाद बात करते हैं साथियों कीट और बीमारियों की। तो आपने सुना होगा मूंगफली में एक बीमारी आती है, मूंगफली का टिक्का रोग, जिसमें पत्तियां विकृत रूप ले लेती हैं और उन पर भूरे काले धब्बे पड़कर वे समय से पहले गिर जाती हैं। तो भैया ये रोग जो है फफूंदी के कारण होता है, जो कि वर्षा और अधिक नमी या कीचड़ में बढ़ सकता है। तो खेत में पर्याप्त जल निकास और कवकनाशी का छिड़काव करके इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और भैया इसके लिए हमारे किसान भाई 3 किलोग्राम मैंकोजेब या 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। तो भैया ये हम 1 हेक्टर खेत के लिए आपको मात्रा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई अपनी जो मूंगफली की फसल है उसमें ये सामूहिक कार्य कर सकते हैं। और भैया आप देखिए कार्यक्रम में ये चर्चा यहीं पर बंद करके एक विराम ले लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भैया आपने सुना ये जरूरी संदेश, और संदेश के बाद किसान भाइयों आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। और भाई देखिए

अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ भाई आजकल का जो जमाना है उसमें जो घटनाएं हो रही हैं, या भैया उसमें जो योजनाएं चल रही हैं, या हम नई नई तकनीक खेती बाड़ी के लिए ईजाद हो रही हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और भैया उन नई योजनाओं में एक योजना है किसान भाइयों के लिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो भैया ये योजना किसान भाइयों की ईंधन और बिजली पर आने वाली लागत को कम करने के लिए है, जो कि सोलर पंप से संबंधित है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए डीजल ईंधन और बिजली पर ज़्यादा निर्भर न रहना पड़े, और भैया उनकी लागत में कमी तो निश्चित रूप से आएगी ही। तो साथियों, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप से कृषक भाइयों की सिंचाई की जो पूर्ति होती है उससे तो होती है, लेकिन जो बंजर भूमियां हैं वहां पर भी सौर्य ऊर्जा संयंत्र लगाने की महत्वपूर्ण ये योजना है। और इससे फायदा यह होगा कि भैया जो अनुपजाऊ भूमि है, अनुर्वर भूमि है या ऊसर भूमि है, तो सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा और सौर ऊर्जा से बनी बिजली अन्य कामों में प्रवेश कराई जाएगी, यानी कि इस बिजली से दूसरे संयंत्र या दूसरे पंप या जो बिजली का काम है, तो बिजली दूसरे कामों में प्रयोग होगी। और इस योजना से आप आशय समझते हैं, तो इस योजना से यह आशय है कि इसके तीन प्रमुख घटक होते हैं। तो सबसे पहला घटक जो मानते हैं, तो भैया इस तरह से हम अंग्रेजी में कहते हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, यानी कि घटक ए, घटक बी और घटक सी। तो पहले वाले घटक में जो इसको ए श्रेणी में रखा जाता है, किसानों का एक समूह या FPO या भैया कोई पंचायत आदि अपनी जो बंजर भूमि है उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं, और इस योजना में 2 मेगावाट के जो ऊर्जा संयंत्र हैं वे लगाए जा सकते हैं, जिससे बिजली जो है वो बनाई जा सके, और जो भुगतान राज्य नियामक आयोग है उसके टैरिफ के अनुसार होता है। इससे किसान अपनी बंजर भूमि से भी आय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कुल बात यह समझ में आती है कि किसान भाई जो है अपनी भूमि में ऊर्जा संयंत्र बना सकते हैं, लगवा सकते हैं, और भैया उसको बेचकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और भैया जो दूसरा चरण है इसका, दूसरा कंपोनेंट है बी, तो वो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और आपने देखा भी होगा कि जहां बिजली की कमी है उन क्षेत्रों में ऐसे सोलर पंप लगाए जाते हैं जो खेतों की सिंचाई करते हैं, और ये पंप सोलर ऊर्जा से चलते हैं। तो ये हमारे किसान भाइयों ने देखे भी होंगे और कुछ किसान भाइयों ने इनको लगाया भी है। तो इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें 30-30% सहायता आपको दे सकती हैं। ये पूरी गारंटी नहीं है कि 30 और 30 मिलाकर 60% आपको सब्सिडी मिल ही जाए, लेकिन हाँ काफी हद तक आपको सब्सिडी मिलने की गारंटी है, और शेष जो हिस्सा है लागत का वो किसान भाइयों को वहन करना होता है। बैंक ऋण कितने पर आपको जो शुरुआत में बैंक ऋण मिलने से कम जो है राशि आपको लगानी पड़ेगी। और जो तीसरा घटक है भैया वो है इस योजना का, उसमें ये बात शामिल है कि जो भी बिजली से चलने वाले पंप हैं उन्हें सोलर से चलने वाले कर दिए जाएं। समझ गए भैया कि जो बिजली से हमारे पंप चल रहे हैं या डीजल इंजन से चल रहे हैं, तो भैया वो सोलर पंपों से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त बिजली की प्राप्ति होती है, यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा की बिजली है उससे वो पंप चलेंगे। तो किसान भाइयों की लागत कम होगी क्योंकि बिजली का बिल शून्य हो जाएगा उनका, और भैया उन जो अतिरिक्त बिजली उनकी बनेगी वो उसको बेच भी सकते हैं, जैसे वो संयंत्र अपने यहाँ लगा लेंगे तो उनका ट्यूबवेल या पंप भी चलेगा, और जो फालतू बिजली होगी भैया वो दूसरे किसान भाइयों को या किसी दूसरे जो उद्योग को वो बेच सकते हैं। तो साथियों हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जहां किसान भाइयों की लागत कम होती है और उसमें भारी कमी आती है, तो वहीं हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता, और यह पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए किसान भाइयों को इस योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और भैया देखिए हम लाभ की बात कर रहे हैं, तो लाभ हमारे किसान भाइयों को किसी नई नई जानकारी से अवगत कराकर भी

0: उठाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि हम अपने कृषिगत कार्यक्रम में अपने किसान भाइयों के लाभ के लिए कोई ना कोई जानकारी लेकर आते हैं। तो भैया आज हम एक नई जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम में लेकर आए हैं, जिसका विषय है खरीफ में लगने वाले रोग कीट व उनकी रोकथाम। और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। तो भैया ज्यादा देर न करते हुए किसान भाइयों आइए हम करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बातचीत और सुनते हैं ये जानकारी।
1: किसान भाइयों आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बगरा में कार्यरत हैं और आज आपसे बातचीत का विषय है बरसात में लगने वाले फसलों में कीट और बीमारियां। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी किसान भाइयों बहुत बहुत नमस्कार।
1: डॉक्टर सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ने की फसल की। तो गन्ने की फसल में एक रोग होता है कोका बोइंग, इसके क्या लक्षण है?
2: कोका बोइंग एक फफूंदी जनित बीमारी है जो गन्ने की फसल में अक्सर बरसात के दिनों में जब नमी की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है तब ये इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है।
1: जी तो डॉक्टर किस प्रकार इसके लक्षण दिखाई देते हैं?
2: कोका बोइंग के लक्षण जो पौधे की ऊपर की गोब होती है सामान्यतः ये प्रभावित होती है और इसके लक्षण कुछ कुछ चोटी बेदक जैसे ही होते हैं। किसान भाई कई बार इसकी पहचान नहीं कर पाते कि ये टॉप बोरर की समस्या है या हमारी कोका बोइंग की समस्या है।
1: अच्छा अच्छा।
2: इसमें ऊपर की जो पत्ती होती है वो पीली पड़ने लगती है और सुकड़ करके मुड़ने लगती है।
1: एक
2: बार ऐसा जैसे चाकू से कट लगा दिया हो, चाकू से काट दी गई हो, इस तरह की जो है दिखाई पड़ती है और इसमें ऊपर की जो गोब होती है वो सूखने लगती है।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर इसका सबसे मुख्य लक्षण होता है कि ऊपर की गोब पीली हो जाती है और सिकुड़ के वो कड़ी हो जाती है।
2: हाँ जी। इसमें गोल जो है एठन टाइप जो है गोल गोल लपेटा पत्ती लपेटा लेने लगती है और ऐसा लगता है जैसे उसको जो है चाकू से काट दिया गया, नाइफ कट स्टेज उसको
1: बोलते हैं। डॉक्टर साहब इसके निदान के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे?
2: इसका जब प्रकोप हो जाता है तो किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में आता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसकी छिड़काव करें।
1: कुछ किसान मैंकोजेब और कारंडाजिंग का भी प्रयोग करते हैं।
2: शुरुआती अवस्था में यदि बीमारी हमारी शुरुआती अवस्था में है तो उसमें कार्बंडाजिन 12% और मैंकोजेब 63% दोनों का मिक्सचर आता है, कार्बंडाजिन प्लस मैंकोजेब का
1: जी।
2: उसका भी हम अगर चाहे तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में वो भी हमारा इफेक्टिव रहता है।
1: जी जी। यानी कि जो हमारी कमर पर लादने वाली मशीन होती है छोटी वाली नैपसैक स्प्रेयर, तो उस दवाई मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं।
2: उसमें हमारा जो पीस पे उसमें अगर 20 लीटर कितना उसमें पानी आता है हमारा कितना 15 लीटर की टंकी आती है
1: 20
2: लीटर वाली, तो अगर 20 लीटर वाली टंकी है तो उसमें हमारा जो है 50 ग्राम कार्बंडाजिन प्लस मैंकोजेब
1: जी।
2: और यदि हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले रहे हैं तो 40 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड।
1: जी जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई किसान भाइयों को। अब हम बरसात के मौसम में मुख्य रूप से कीट की बात करें गन्ने फसल में तो टॉप बोरर लगता है जिसे हम चोटी वायरस कहते हैं, तो इसकी क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या इसका निदान है?
2: इसकी टॉप बोरर की हमारी एक्चुअली 5 पीढ़ियां होती है
1: जी,
2: जो हमारी मार्च से शुरू हो जाती है और ये हमारी जो है सितम्बर तक परेशान करती है किसान।
1: जी जी जी।
2: ठीक है। तो ये मार्च से लेकर सितंबर तक इसकी 5 पीढ़ियां होती है जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसमें ऊपर गोब में जब सुंडी लगती है तो ऊपर की जो डेड आग बन जाता है ऊपर की गोब सूखने लगती है
1: जी। तो डॉक्टर इस समय
2: कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है और वो सुंडी खाती हुई जब आगे बढ़ती है तो उससे जो है ऊपर की गोब सूख जाती है
1: जी। तो डॉक्टर इस समय कौन सी स्टेज में होगा हमारा जो छोटी बेदक की?
2: ये हमारी अब 3री पीढ़ी हमारी खत्म हो चुकी है लगभग
1: जी।
2: चौथी पीढ़ी शुरुआत होगी।
1: अच्छा अच्छा। तो इसका निदान किस प्रकार करेंगे डॉक्टर साहब? जैसे हमारे किसान भाई देखेंगे कि उनकी जो है गन्ने की गोब सूख रही है और पूरा जो है पाती जैसा बन गया है, तो किस प्रकार इसका निदान करेंगे?
2: इसमें कीटनाशक जैसे क्लोर एंटानिलीप्रोल
1: जी
2: जो कोलाजन है उसका छिड़काव जो है 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं
1: जी।
2: और यदि बरसात के मौसम में साफ नहीं है तो इसकी दानेदार दवाई आती है क्लोरेंटानिलीप्रोल 0.4 GR।

0: ठाकरे के नाम से
1: जी,
0: सात दशमलव पाँच किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम इसको जो है नीचे रेट में मिला करके बुरकाव कर दे और फिर हल्की सिंचाई कर दे।
1: तो यानी कि पाँच बीघे जो हमारा एरिया है उसके लिए साढ़े सात किलो हमें पर्याप्त होती है।
0: यदि किसान भाई छिड़काव करते हैं साफ मौसम है तो क्लोरएंथन लिलीप्रोल जो है ये 150 ml प्रति एकड़
1: जी।
0: अब यदि मौसम साफ नहीं है, दानेदार छिड़काव या गन्ने की फसल ऊंची छिड़काव कर नहीं हो पाता है, छिड़काव करने में असुविधा हो रही है, तो उसमें दानेदार दवाई जो है ये क्लोरएंथन लिलीप्रोल 0.4 दिया जो फतेहरा के नाम से आती है, इसको 7.5 किलो एकड़ के दर से प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद फिर हल्की सिंचाई कर दे।
1: तो डॉक्टर अब बात करते हैं धान की फसल की, तो धान की फसल में इसमें कौन सा रोग आ सकता है?
0: धान की फसल में किसान भाइयों को शुरुआती अगर लक्षण देखे जाए तो शुरुआत में धान में जिंक की कमी के कई बार लक्षण दिखाई देते हैं जिसे पीला रोग बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: जब जिंक की कमी के कारण होता है
1: क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर उसके?
0: इस रोग में पौधे पर जो है कत्थई रंग के जो है कांसे रंग की चिट्ठी दिखाई दे पड़ती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, पौधों की बढ़वाद रुक जाती है।
1: तो इसका निदान किस प्रकार करेंगे डॉक्टर?
0: इसमें जो है खड़ी फसल में हम जो है जिंक सल्फेट 5 किलो जिंक सल्फेट का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें और उसमें अगर 2.5 किलो बुझावा चूना मिला लेते हैं तो और अच्छा रहेगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 किलो जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलो बुझावा चूना,
1: अच्छा
0: 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें तो जिंक की रिकवरी हो जाती है।
1: अच्छा डॉक्टर, अब हम बात करते हैं बेल वाली फसलों की, तो बेल वाली फसलों में जैसे हम तोरी है, लौकी है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस समय कौन सा रोग आ सकता है?
0: लौकी तोरी में इस समय जो है कई बार विल्ट की समस्या आ जाती है, जो बेल वाली हमारी कद्दू वाली फसलें हैं इनमें जब पानी मॉइस्चर ज्यादा होती है जमीन के अंदर तो कई बार विल्ट की समस्या आ जाती है, जो फफूंदी जनित बीमारी है, तो उसके लिए यह है कि जल निकास की उचित व्यवस्था करें और दूसरे नीचे जमीन में ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन करें।
1: अच्छा,
0: और यदि रासायनिक की हम बात करें तो कार्बन डाइजिन 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें।
1: अच्छा,
0: करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करें। बेहतर यह होगा कि सब्जी वाली फसलों को मेंढ पर उगाएं, बरसात की जितनी भी सब्जियां हैं उनको मेंढ पर लगाएं।
1: जी जी जी, जिससे
0: बेड प्लांटिंग टेक्नोलॉजी को फॉलो करें
1: जी, जिससे जो है पानी से कोई नुकसान ना हो सके।
0: हाँ जी, पानी से नुकसान ना हो।
1: डॉक्टर साहब, कुछ कीट भी लौकी में और तुरई में लगते हैं?
0: हाँ जी, सब्जियों में कई बार जो हमारे जो चूसने वाले कीड़े बारीक कीट होते हैं, जैसे हमारा एफिड है, व्हाइट फ्लाई है
1: जी,
0: जैसे सर्फ्स है, जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं चूसने वाले कीट होते हैं, ये वायरस को ट्रांसफर करते हैं बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे पर, जो है वायरस को ले जाकर के जब वहाँ फीड करते हैं तो वायरस को छोड़ देते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इनसे बचाने के लिए हम कीटनाशी का छिड़काव जैसे इमिडा क्लोप्रिड है 17.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें, या इसके लिए किसान भाई थायमेथोक्साम है 25% WDG 60 ग्राम दवाई थायमेथोक्साम को 150 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो जो हमारी जो चूसक की तो समस्या है इनसे निदान मिल जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं भिंडी की, क्योंकि इन दिनों भिंडी भी बहुत अच्छे हमारे किसान भाई उगाते हैं, तो भिंडी की फसल में कौन कौन से रोग इस समय आते हैं?
0: भिंडी में जैसे मैंने वायरस की बात की, येलो वेन मोजेक वायरस होता
1: है,
0: पीच सीरा मोजेक जिसको बोलते हैं
1: जी जी,
0: तो उसमें जो है पत्तियों पे जो है मिडरिप जो मध्य सिरा होती है तेजी पड़ जाती है
1: जी,
0: ये वायरस जनित रोग है और इस वायरस को जो हमारा कीड़ा होता है वही फैलाता है।
1: अच्छा,
0: शुरू में हमारे कुछ पौधे पीले दिखाई देते हैं लेकिन बाद में जो कीट है जो चूसक कीट है वो इसको पूरे खेत में फैला देते हैं, तो समय रहते हुए इस तरह का यदि कोई पेड़ किसान भाई देख रहे हैं जो वायरस से ग्रसित है जिसमें पत्ती सिकुड़ रही है, लीफ कर्ल वायरस है, पत्ती सिकुड़ जाती है, या हमारी पीच सीरा मोजेक वायरस है, तो वायरस ग्रसित पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबा दें नष्ट कर दें और तुरंत उसमें कीटनाशी का छिड़काव करें।
1: अच्छा,
0: ताकि जो वेक्टर को जो कीड़ा है उसको हम जो है खत्म कर दें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ भिंडी के जो फल होते हैं उसमें देखते हैं कि कुछ कीट उसमें छेद करके अंदर घुस जाते हैं और उसको पूरा को खा लेते हैं, यानी कि उसको खाना कर देते हैं, तो ये कौन सा कीट होता है और इसकी रोकथाम हम किस प्रकार से करेंगे?

0: 1.5 ml जो है मिलीलीटर दवा का क्लोरोप्लास हेल्पर का छिड़काव करें तो हम इस चीज का निदान पा सकते हैं।
1: अच्छा, अब डॉक्टर साहब हम बात करते हैं, जैसे बैंगन हुआ, टमाटर हुआ और मिर्च। तो बैंगन में इस समय और टमाटर में कौन सी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं अक्सर बरसात में?
0: बैंगन में हमारी जो फोमोसिस ब्लाइट है,
1: जी
0: फोमोसिस ब्लाइट के जो है पत्तियों पर चट्टे दिखाई देते हैं, और अगर टमाटर की बात करें, टमाटर में भी हमारी ब्लाइट जो होती है, झुलसा रोग होता है,
1: जी
0: वो हमारा दिखाई देता है। तो उससे बचाव के लिए यदि हम COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी
1: जी
0: में घोल करके करें तो हम जो है झुलसा से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जी जी तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। अब हम बात करते हैं कुछ उद्यानपति भाइयों के उद्यान की। तो इस समय अमरूद की फसल हमारी आने वाली है, क्योंकि बरसात में अमरूद होता है। तो अमरूद की फसल में कुछ अमरूद की जो छोटे रूप में अमरूद होता है, तो उसमें सफेद सफेद कुछ पाउडर सा दिखाई देता है, और कुछ अमरूद के फल छोटी अवस्था में काले होकर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या बीमारी है?
0: अमरूद में कई बार जैसे हमारी फंगस की डिजीज है, फंगस फफूंदी प्रभावित करती है, इसमें कई तरह की बीमारियां होती है।
1: जी
0: जैसे अमरूद में हमारा जो है पाउडर पाउडर मिल्ड्यू होता है, सफेद
1: जी
0: सफेद आप फफूंदी की बात कर रहे हैं, तो
1: जी
0: उसमें कई बार पाउडर मिल्ड्यू भी आ जाता है।
1: जी आयसिता
0: हाँ, चूर्णिल आसिता
1: जी।
0: की समस्या आ जाती है।
1: अच्छा
0: तो उससे बचाव के लिए हमारी जो सल्फर आधारित फफूंदी नाशक है, जैसे
1: जी
0: कोसाविट है, थायोविट है, सल्फेक्स है, कोई
1: हाँ
0: भी सल्फर आधारित फफूंदी नाशक है, तो
1: अच्छा
0: उसका हम यदि हम छिड़काव करते हैं,
1: जी
0: जैसे हमारा थायोविट है, तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो इस फफूंदी रोग से हम फसल को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: अच्छा कुछ डॉक्टर साहब फल में अमरूद के जो वही कीट घुस जाते हैं, या जैसे अमरूद हम तोड़ के देखते हैं तो
0: जी
1: उसके अंदर हमें दीदार दिखाई देती है,
0: जी
1: तो
0: बरसात के मौसम में हो क्या है कि जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है
1: जी
0: तो अमरूद में फल मक्खी होती है, एक सुनहरे रंग की मक्खी होती है, जिसे
1: जी
0: फ्रूट फ्लाई हम कहते हैं। तो ये फ्रूट फ्लाई जो है, जैसे ही हमारा अमरूद सेट होता है, फल बनता है, तो
1: जी
0: उसी समय जो है ये उसमें अंडे दे देती है,
1: अच्छा
0: और जैसे जैसे अमरूद का आकार बढ़ता है, उसमें अंडे का अंदर लाइफ साइकिल उसकी चीज की, अंडे से लार्वा प्यूपा अंदर जो है बनता रहता है लार्वा। तो जब हम अमरूद को देखते हैं तो बरसात के अमरूदों में ज्यादातर अगर किसान भाई उसको सही से देखभाल नहीं करते तो उसमें कीड़ा जिसको खाना बोल देते हैं कि ये अमरूद खाना है, वो समस्या आ जाती है। तो इसके लिए किसान भाई पहले से ही या तो दवाई का इस्तेमाल, कीटनाशक जैसे माला 96/50 PC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें, अन्यथा इसके लिए दूसरी विधि जैसे फिरोमोन ट्रैप है, मिथाइल इथेनॉल ट्रैप, उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। 4 से 5 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम इसको लगाएं तो ये बड़ी सस्ती विधि है, और इसमें हम जो है मिथाइल इथेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, तो जितने नर कीट होते हैं वो सब इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं,
1: जी
0: तो इस तरह हम इस पेस्ट को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस समय बरसात के मौसम में और किसी फसल के कीट और बीमारी डॉक्टर साहब आप बताना चाहें तो हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं अंत में?
0: गन्ने में इस समय किसान भाइयों ने कई बार, जैसे ज्यादा जो किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उन खेतों में कई बार जो है पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो व्हाइट व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखने को मिलता है।
1: अच्छा
0: और व्हाइट फ्लाई उसमें क्या होता है कि वो कीट जो है रस चूसता रहता है धीरे धीरे, और पत्तियां हमारी पीली पड़ने लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि जो यूरिया होता है इससे हमारे पौधों की कोशिकाएं मुलायम हो जाती हैं,
0: हाँ जी, पौधा
1: और
0: पीला हो जाता है।
1: जी तो कीट उस पर आकर्षित होते हैं। तो डॉक्टर साहब आप व्हाइट फ्लाई जो आप बता रहे हैं, तो इसकी फिर क्या किसान भाई रोकथाम करें?
0: इसके लिए किसान भाई जो है, जैसे कीटनाशक आपका डाइमेथोएट
1: जी
0: 30% EC
1: जी
0: रोगोर के अन्य नामों से आता है, तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके डाइमेथोएट का छिड़काव करें, या इसके लिए हमारा थायमेथोक्साम है
1: जी
0: 25% WDG, तो 100 ग्राम को 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में अच्छी तरह से उसका छिड़काव करें,
1: जी
0: तो
1: अच्छा
0: यूरिया
1: डॉक्टर
0: व्हाइट
1: साहब
0: फ्लाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं।
1: जी।

0: हमने धान की बीमारी की बात तो कर ली थी
1: जी।
0: जो आपने धान का जो बीमारी बताई थी और खैरा रोग बताया था, इसके अलावा धान में कुछ झुलसा रोग भी होता है और पत्ती लपेटक रोग भी हो सकता है और साथ में एक रोग क्या धान का कुछ एक कीट भी होता है, तो धान की फसल का थोड़ा सा कीट और बताएं कि धान की फसल में कौन सा कीट इस्तेमाल होता है।
1: धान में शुरुआती अवस्था में जैसे रोपाई के बाद है तो 25-30 दिन बाद जब आप देखेंगे, एक महीने बाद जो है उसमें तना छेदक के लक्षण जो है दिखाई देते हैं।
0: जी,
1: तना छेदक की जो तितली होती है वो उसमें अंडे दे देती है और उसमें से जो लार्वा निकलता है वो उसको गोको खा जाता है।
0: अच्छा।
1: उसमें तने में डेड हार्ट बनना शुरू हो जाता है।
0: जी जी जी,
1: जिसे गांव की भाषा में जो है कनसवा बोल देते हैं, या तना ऊपर से डेड हार्ट बन जाती है, मतलब उसको अगर बीज की पत्ती खींचे तो आसानी से खींचाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसके बचाव के लिए शुरुआत में ही हम कीटनाशक का छिड़काव यदि कर दें तो हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। जैसे मोनोक्रोटोफास है, 36% इसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके यदि हम छिड़काव कर दें तो हम तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसान भाई दानेदार कीटनाशक जैसे कारटाप हाइड्रोक्लोराइड है
0: जी,
1: तो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि नीचे सोयल में एप्लीकेशन उसका भूमि में प्रयोग कर रहे हैं, दानेदार रेतों मिलाकर के डालें, उसके बाद फिर उसमें पानी लगा दें तो ये भी हमारे तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए अच्छी दवाई है। कारटाप हाइड्रोक्लोराइड IPM के अंतर्गत रिकमेंडेड दवाई है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी हमने देखा है कि जैसे हमने धान की पौधा लगा दी है और वो हरी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पूरे के पूरे पौधे सूख जाते हैं, इसका क्या कारण है?
1: ये धान में कई बार देखिए इसमें झुलसा जब आता है तो झुलसा दो तरह का होता है।
0: क्या डॉक्टर साहब ये कोई दीमक की समस्या तो नहीं होती?
1: नहीं, दीमक से भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि दीमक होती है और वो पौधा सूख जाता है, अगर खींचो तो वो ऊपर ही रखा रहता है बिल्कुल, उसकी जड़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यदि खेत में दीमक की समस्या है उसमें खेत में, तो उसके लिए क्लोरपाइरीफॉस,
0: अच्छा
1: 20% ईसी में जो आता है 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें उसका।
0: अच्छा, सिंचाई के पानी के साथ?
1: हाँ जी, सिंचाई के पानी के साथ उसका प्रयोग करें
0: तो इससे दीमक की समस्या हमारी हल हो जाएगी।
1: हाँ जी, दीमक की समस्या का समाधान हो जाएगा। और यदि ये शीत ब्लाइट है, झुलसा की वजह से पौधे सूख रहे हैं
0: जी,
1: तो उसके लिए हमारी जो जैसे प्रोपिकोनेजोल है
0: जी जी,
1: तो प्रोपिकोनेजोल 25% ईसी में आता है, 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें, या हेक्साकोनेजोल 5% में आता है तो उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव
0: जी। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे किसान भाइयों को आपने बरसात के मौसम में लगने वाली विभिन्न रोग और कीटों के बारे में जानकारी दी और उसका समाधान बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बरसात के मौसम में लगने वाले कीट रोग और उनका समाधान, अभी आपने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से हमारी ये बातचीत सुनी और आपने जाना कि सब्जियों में, गन्ने में, धान में जो बरसात के मौसम में कीट और बीमारी हैं वे उनके क्या लक्षण हैं, क्या उनका समाधान है। तो जाहिर सी बात है आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अपने फसल में डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे। और भैया देखिए, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है और आप सोच रहे होंगे कि आज मनोरंजन भी नहीं हुआ, तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं भुवनेश गिरी की आवाज़ में ये रागनी।

तो किसान भाइयों ने रागनी सुनी और रागनी आपको कैसी लगी ये आप हमें बताएंगे पत्रों के माध्यम से या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से। तो भैया आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं और हमारा वही नंबर है जाना पहचाना 9457072888। और भैया यदि आप हमें पत्र लिखना चाहें तो हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763। तो भैया इस पते पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी और अब अगले कार्यक्रम तक अपने भाई नरेश पाल सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। किसान भाइयों राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमुद कुमार की लिखी हुई कहानी दो शर्ट।
1: भाई साहब, कोई अच्छा दर्जी हो तो बताओ, एक पैंट शर्ट सिलवानी है, राजेंद्र ने पूछा। हाँ है तो, गली नंबर 2 से थोड़ा आगे जाकर 2-3 दुकान छोड़कर सहदेव टेलर की दुकान।

आदमी तो वह पुराने मिजाज का है, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे सिलता है, शिवध्यान ने बड़े विश्वास के साथ कहा। राजेंद्र शाम को शिवध्यान के बताए पते पर पहुंचे तो सड़क के किनारे एक गहरी सी दुकान दिखाई दी। न कोई बोर्ड, न कोई पहचान का चिन्ह, अंदर कुछ अंधेरा सा, जैसे वे किसी गुफा के सामने खड़े हों। उन्होंने दुकान में झांक कर देखा तो वहां अकेला आदमी पैरदान वाली सिलाई मशीन में कपड़े सिल रहा था। ऐसा लगता था उस दुकान में बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह देखकर उनका विश्वास डोल गया। उन्हें शंका हुई कि यह दर्जी सही से कपड़े सिल भी पाता होगा कि नहीं। वे उल्टे पाँव लौटने को ही थे, तभी उनके पैर यह सोचकर ठिटक गए कि इस गरीब आदमी से हम कपड़े नहीं सिलवाएंगे तो कौन सिलवाएगा। पैर पीछे न खींचना भी उनकी आदत में शुमार था। फिर भी अपने संदेह को दूर करने के लिए दुकान में एक कदम नीचे उतरते हुए उन्होंने पूछा, सहदेव टेलर की दुकान यही है? हाँ जी साहब, सहदेव टेलर में ही हूँ, सेवा बताइए। पैंट शर्ट का कपड़ा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे पैंट शर्ट सिलवानी है, लेकिन फिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। साहब आप चिंता मत करिए, कोई शिकायत हुई तो कपड़े तक के पैसे वापिस, कपड़ों की माप लेते हुए सहदेव ने कहा। पैंट शर्ट की माप को अपनी डायरी में लिखते हुए उसने कहा, साहब ज्यादा जल्दी न हो तो एक सप्ताह में कपड़े दे दूं। राजेंद्र को आज तक एक सप्ताह में किसी दर्जी ने कपड़े सिलकर नहीं दिए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, कपड़े चाहे और देरी से दे देना, लेकिन सिलाई सही होनी चाहिए। उसकी तो आप चिंता ही ना करें साहब, अपना फोन नंबर दे दीजिए, जैसे ही पैंट शर्ट तैयार हो जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगा। राजेंद्र ने अपना मोबाइल नंबर सहदेव की डायरी में लिखवाया और फिर उसका मोबाइल नंबर भी अपने फोन में सेव कर लिया। नियत तिथि पर राजेंद्र को अपने सिले कपड़े मिल गए। वाह, क्या सिलाई की गई थी! ऐसा लगता था कि कपड़ों की सिलाई बड़े इत्मीनान से की गई थी। सिलाई देखकर वे खुश हो गए। इसके बाद तो सहदेव के पास कपड़ों की सिलाई के लिए उनका आना जाना सामान्य सी बात हो गई। वे दूसरों से भी सहदेव की सिलाई की तारीफ करने लगे और साथ ही उससे कपड़े सिलवाने की सिफारिश भी। सहदेव की ठुड्डी पर खुरची हुई सी फ्रेंच कट दाढ़ी थी, हल्का सांवला सा चेहरे का रंग, दुबला पतला सा शरीर, सादगी तो जैसे उसमें कूट कूट कर भरी थी। चेहरे पर भोलापन और परेशानी के स्थायी भाव चेहरे की रंगत को जटिल बनाते थे। एक बार सहदेव से राजेंद्र की बातचीत होने लगी। उन्होंने पूछा, अरे सहदेव तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? साहब अपना छोटा सा परिवार है, घर में पत्नी है सज्जो, एक बड़ी बेटी वंदना जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने पति के साथ कोटद्वार में रहती है, एक बेटा है उदल, उदल पढ़ रहा है कि कोई काम धंधा करता है? साहब जी वो कुछ नहीं करता सिवाय मेरा दिमाग खराब करने के। अरे ऐसा क्यों कहते हो? क्यों ना कहूँ साहब, वह कुछ करता धरता तो है नहीं, जो मैं कमाता हूँ उसका भी एक बड़ा हिस्सा खर्च कर डालता है, अकेला बेटा है, कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता। उसे दर्जी का काम क्यों नहीं सिखा देते? इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, आमदनी भी बढ़ जाएगी और वह तुम्हारा पुश्तैनी काम धंधा भी संभाल लेगा। अरे साहब जो आप बता रहे हैं ऐसी मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन वही ढाक के तीन पात। राजेंद्र समझ गए कि उदल सहदेव के हाथों से निकल चुका है और अब वह उसके काबू में नहीं। बाप बेटे के सामने असहाय हो चुका है। इसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और घर वापस आ गए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने दो शर्ट सिलने के लिए सहदेव को दी। उस समय वह कुछ ज्यादा परेशान और कुछ बीमार सा लग रहा था, लेकिन हर बात का मुस्कुराकर जवाब दे रहा था, मानो अपनी मुस्कान के पीछे वो अपने दर्द को छुपा रहा हो। जब नियत तारीख को वह अपनी शर्ट लेने के लिए सहदेव की दुकान पर गए तो उसकी दुकान बंद थी। एक दो दिन बाद फिर चक्कर लगाया, तब भी दुकान बंद ही मिली। फिर उन्हें याद आया कि उनके पास सहदेव का नंबर है। उन्होंने फोन किया तो उधर से दूसरी आवाज में कोई कह रहा था, अंकल पापा बहुत बीमार हैं, जब ठीक हो जाएंगे तभी दुकान खोलेंगे और आपसे बात भी कर लेंगे। वे समझ गए थे कि यह उदल बोल रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा। लगभग 15 दिन बाद जब उनका मन नहीं माना तो उन्होंने सहदेव का हालचाल जानने के लिए उसे फिर से फोन किया। इस बार फोन पर सहदेव ही था। उसने कहा, साहब आप अपनी दोनों शर्ट की चिंता न करें, बस मैं ठीक हो जाऊं, मैं खुद फोन कर दूंगा, खो खो खो। सहदेव की यह हालत देखकर उन्होंने खुद ही फोन काट दिया। ऐसी हालत में उससे ज्यादा बात करना उचित नहीं था। इसके बाद उन्होंने यह सोचकर फोन नहीं किया कि सहदेव सोचेगा कि वे अपनी शर्ट के लिए तकादा कर रहे हैं। इसके बाद भी लगभग 2 महीने तक दुकान का शटर उठा हुआ दिखाई नहीं दिया। उनको लगा कि अब शायद सहदेव इस दुनिया में नहीं है। उसकी बीमारी की हालत देखकर उन्हें ऐसा ही अंदेशा था। वे अपनी दोनों शर्ट को हमेशा के लिए भूल गए। फिर भी जब कभी वे सहदेव की दुकान के सामने से गुजरते तो अनायास ही उनकी नजर उस ओर उठ जाती। उन्हें लगता था कि यह दुकान अब कभी नहीं खुलने वाली। सहदेव निश्चित ही भगवान को प्यारा हो गया है, एक तो गरीब आदमी और ऊपर से गंभीर बीमारी। वह तो बेचारा अपनी लाश से भी इलाज भी नहीं करवा पाया होगा। हर साल लाखों गरीब लोग अच्छे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उसका भी यही हश्र हुआ होगा। लगभग 5-6 महीने गुजर गए, तब एक दिन उनके पास एक फोन आया। मोबाइल की स्क्रीन पर सहदेव नाम देखकर चौंक गए। उधर से सहदेव की आवाज ही आ रही थी। वह कह रहा था, साहब नमस्ते, आपकी दोनों शर्ट तैयार हैं, ले जाओ। अरे सहदेव

0: तुम ठीक हो गए? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हाँ साहब, चलो फिर आ रहा हूँ, वहीं आकर बात करूंगा। राजेंद्र को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। जिसे वह मरा समझ रहे थे, वह जिंदा निकला। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि सहदेव बच गया, लेकिन उन्हें अचंभा इस बात का था कि सहदेव का इलाज कैसे हुआ। उस बेचारे के पास तो इतना पैसा था ही नहीं, उसने तो गरीबी के चलते दुकान में बिजली का कनेक्शन भी नहीं लगवा रखा था। उन्हें बेचैनी थी यह जानने की कि आखिर सहदेव का साथ क्या हुआ होगा। जब वे सहदेव की दुकान पर पहुंचे तो वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन्हें देखकर वह उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, कहो सहदेव, कैसे हो? अब ठीक हो साहब? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन यह तो बताओ, तुम्हें हुआ क्या था? साहब क्या बताऊं, लोकल का डॉक्टर बिना जांच के ही खांसी बुखार की दवाई देता रहा, हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। फिर एक दिन बेटी वंदना और दामाद राहुल कोटद्वार से आए और मेरा पुख्ता इलाज कराने के लिए वहां ले गए। वहां जांच से पता चला कि मैं तपेदिक का रोगी हो चुका हूँ और मेरे लीवर में भी शराब के कारण संक्रमण हो गया है। सहदेव, तुम शराब भी पीते हो? यह तो मेरे लिए अचंभे की बात है। अच्छा आगे बताओ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरे लिए कमरा पड़ोस में किराए पर लिया। असल में उनका परिवार बड़ा है, मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए अलग से कमरे की व्यवस्था की। 2 महीने तक मेरा इलाज करवाया और सेवा की। दवाइयां तो अभी भी लेनी पड़ रही हैं, सब खर्चा बेटी और दामाद ही उठा रहे हैं। पत्नी सज्जो और बेटा उदल ने भी तो खूब सेवा की होगी, राजेंद्र ने पूछा। यह सुनते ही सहदेव के चेहरे पर क्रोध, तिरस्कार और दुख के मिश्रित भाव उभरे। वह एकदम से शांत हो गया, उंगलियों को रगड़ने लगा, फिर एकदम से फफक फफक कर रो पड़ा। राजेंद्र को लगा शायद उन्होंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने उसे कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी, सहदेव दुखी मत हो, कई बार दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। बताओ क्या बात है? उसने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा। साहब क्या बताऊं, सज्जो तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। नहीं नहीं यह तो यकीन करने वाली बात नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, कोई पत्नी वैधव्य को गले क्यों लगाएगी? साहब वैधव्य की चिंता उसे रंच मात्र भी नहीं। आपको कैसे बताऊं, बात कहने लायक भी तो नहीं, यह घोर कलयुग है साहब। लेकिन कुछ बताओ तो सही। राजेंद्र खराब से खराब बात सुनने के लिए अपना मन बना चुके थे। साहब जमाने में वंदना जैसी बिटिया, जैसे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से जिंदा रहने को मन करता है, तो पीड़ा देने वाले लोग भी कम नहीं। मैंने सज्जो को फोन पर अपने पुरुष मित्र के साथ बातें करते सुना, उसने मेरी जरा भी चिंता नहीं की। इस उम्र में आदमी ऐसी बातों से टूट ना जाए तो क्या हो, सहदेव ने एक शर्ट लिफाफे में रखते हुए कहा। सहदेव की बात सुनकर राजेंद्र पर बिजली सी गिरी, कुछ अपने को संभालते हुए बोले, और बेटा वह तो अपने पापा की खूब सेवा करता होगा। अरे साहब, वह भी चाहता था कि मैं मर जाऊं तो पुश्तैनी संपत्ति और जायदाद का एक हिस्सा उसे भी मिल जाए, सेवा करने से बच जाए, मुझ पर हो रहे इलाज का खर्चा बच जाए। दूसरी शर्ट भी सहदेव ने उसी लिफाफे में रखते हुए यह बात कही। राजेंद्र असमंजस में थे कि क्या कहें। सहदेव का दुख बहुत बड़ा था, वह बीमार न होता तो और बात थी, शायद अपने ग्राहकों का कर्ज उतारने और अपना फर्ज निभाने के लिए शायद वह जिंदा था। उसको दोनों शर्ट की सिलाई का पैसा देकर बिना कुछ कहे शर्ट वाला लिफाफा उठाकर राजेंद्र वहां से चल दिए। उन्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत न थी। उनको ऐसा लग रहा था कि लिफाफे में 2 शर्ट नहीं बल्कि 2 बोझ वे लिए जा रहे हैं, एक सहदेव की पत्नी सज्जो के चरित्रहीन होने का बोझ और दूसरा उसके बेटे उदल के स्वार्थी होने का बोझ। बोझ तो ही सहदेव के थे, लेकिन उन्हें अपने गले में ऐसे लटके महसूस हो रहे थे जैसे किसी ने 2 हांडिया में ये बोझ भरकर उनके गले में आगे पीछे लटका दिए हों और मरते दम तक वे उनके गले से उतरने वाले न हों। शायद यह सच्चे आदमी की नियति थी जो दूसरों के दुखों को अपने गले में लटकाए घूमता है, इसी से मानवता इस धरती पर जिंदा है। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें सहदेव की रहस्यमयी मौत की खबर मिली। उन्हें यकीन था वह अपनी बीमारी से उतना नहीं मरा है जितना दुख से मरा है। दोनों शर्ट निकालकर उन्होंने लिफाफे से बाहर रख दी थी, लिफाफा बोझ से खाली हो चुका था।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी कुमुद कुमार की लिखी कहानी 2 शर्ट। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का प्रोग्राम छाया गीत। श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोंसले की आवाज में इस गीत के साथ। ये गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मेरा नाम जोकर, इस फिल्म से अभी आपने सुना आशा भोंसले को, और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। और आइए अब छाया गीत कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लैला मजनू से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है मदन मोहन और जयदेव ने।

श्रोताओं, लैला मजनू के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे हेमंत पाठक की आवाज में गीत। शाम 7:50 पर कार्यक्रम अदबी दुनिया में आज कलाम शायर होंगे काजी विकाउल हक। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आज आप लेंगे रात 8 कार्यक्रम गीत संध्या में और रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल यानी 17 अगस्त, कल रात 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कल सवेरे 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल, ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा। सवेरे 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्रदीप भट्ट का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत कल जानकारी का विषय होगा जिगर के सामान्य रोग और उपचार, समय रहेगा प्रातः 7:05।

सवेरे 7:10 पर किसान श्रोताओं को जानकारी दी जाएगी नलकूप की सुरक्षा और संचालन कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे कल सवेरे 7:31 पर, जिसमें चर्चा होगी अमर शहीद मदन लाल ढींगरा और बिहार का माउंटेन मैन दशरथ मांझी। साथ ही जानकारी दी जाएगी रेड क्लिफ लाइन के विषय में। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है सुनेंगे आप 9:25 पर। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे रजनी टोंक की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दोपहर दिन में 11:30 पर। कल दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे शिशिर कानाधर की के द्वारा वायलिन पर बजाया राग मूलतानी, विलंबित व द्रुत 3 ताल, और आपके साथ तबले पर संगत करेंगे संतराम। कल दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत में चर्चा का विषय होगा पंडित रविशंकर जन्मदिन। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक परिचर्चा जिसका विषय रहेगा पौधारोपण अभियान कितना सार्थक। प्रतिभागी होंगी रश्मि अग्रवाल, विक्रांत शर्मा और सुशील राजपूत। संचालन करेंगी ज्योति पाल। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे सुयाल चंद्र दत्त सुयाल की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। कल शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के जौहर से अंकित सैनी की बातचीत का विषय होगा चांदीपुरा वायरस संक्रमण, कारण लक्षण और रोकथाम के उपाय। कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु जानकारियों के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 kHz पर। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
1: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
0: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
2: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
1: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का जीवन देशवासियों को सदैव देता रहेगा प्रेरणा। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों का तत्काल लाइसेंस रद्द कर दर्ज होगा केस। प्रदेश सरकार ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश। प्रदेश भर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी को लेकर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया विशेष ट्रैफिक प्लान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए

0: के नौका संचालन पर लगी रोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए अटल जी का जीवन सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
1: भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के KGMU साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली महान वीरांगनाओं में से एक थीं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर PSC की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
1: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश PSC बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 PSC महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन ने दूध और दुग्ध उत्पादों, खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ BNS की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। विभिन्न जनपदों में दूध और दुग्ध उत्पादों में हानिकारक रसायन और मिलावटी तत्वों के इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: प्रदेश के 6 जिलों मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती रैली कल 17 अगस्त से मेरठ से शुरू होगी। यह अभियान 14 अप्रैल को अयोध्या में समाप्त होगा। मेरठ में 17 अगस्त से 9 सितंबर, बरेली में 14 सितंबर से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 जनवरी से 28 जनवरी 2027, वाराणसी में 2 फरवरी से 27 फरवरी, आगरा में 4 मार्च से 24 मार्च और अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान भर्ती स्थलों पर अभ्यर्थियों के ठहरने, सुरक्षा और भीड़ एवं यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व को लेकर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आज दूर दराज के जिलों से पहुंचे श्रद्धालु कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाश वाराणसी।
0: कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले राजमार्ग पर बाई लेन को कांवड़ियों के लिए आरक्षित रखा गया है। प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन के चलते कई जनपदों में कल परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहे आजमगढ़ निवासी एक यात्री की लाइसेंसी पिस्तौल से दुर्घटनावश गोली चलने से एयरपोर्ट के 2 ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी घायल हो गए। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वाराणसी की गोमती जोन की DCP नीतू कादियान ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे एयरपोर्ट पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी।
2: वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है। हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक UGC नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का जीवन देशवासियों को सदैव देता रहेगा प्रेरणा। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को तत्काल लाइसेंस रद्द कर दर्ज होगा केस। प्रदेश सरकार ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश। प्रदेश भर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी को लेकर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया विशेष ट्रैफिक प्लान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

शाम के 7:31:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत पाठक की आवाज में गीत, और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत पाठक की आवाज में गीत। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक और गीत, आवाज है हेमंत पाठक की।

श्रोताओं, हेमंत पाठक की आवाज़ में आज आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत गीत, और लीजिए ये प्रस्तुत है एक और गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अदबी दुनिया। इस कार्यक्रम में आज कलामे शायर हैं काजी विकाउल हक।
1: आपकी खिदमत में कुछ गज़लें पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। एक मतला और दो मिसरे। प्यार में प्यार के हालात से डर लगता है, प्यार में प्यार के हालात से डर लगता है, दिल भी जाए न कहीं हाथ से डर लगता है। प्यार में प्यार के हालात से डर लगता है, दिल भी जाए न कहीं हाथ से डर लगता है। और लोग डरते हैं ज़माने की अदावत से मगर, लोग डरते हैं ज़माने की अदावत से मगर, हमको अपनों की इनायत से डर लगता है। लोग डरते हैं ज़माने की अदावत से मगर, हमको अपनों की इनायत से डर लगता है। और शे बतौर ख़ास कि तुमने फरमाई है जिस दिन से इनायत की नज़र, तुमने फरमाई है जिस दिन से इनायत की नज़र, जाने क्या बात है हर बात से डर लगता है। तुमने फरमाई है जिस दिन से इनायत की नज़र, जाने क्या बात है हर बात से डर लगता है। और गज़ल का मतलब मौलाना फरमाए, काहे के तुझसे बिछड़कर यूं वो खफा हो, ऐसा भी हो सकता है। तुझसे बिछड़कर यूं वो खफा हो, ऐसा भी हो सकता है, सब्र का दामन छूट गया हो, ऐसा भी हो सकता है, सब्र का दामन छूट गया।

हो, ऐसा भी हो सकता है, और उसको सितमगर जान के हरगिज गैरों से न शिकवा कर, उसको सितमगर जान के हरगिज गैरों से न शिकवा कर उस पर ये इल्ज़ाम लगा हो, ऐसा भी हो सकता है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा हो, ऐसा भी हो सकता है, अब प्यार से तेरे गाफिल है जो, ऐ दिल नाजा सोच ज़रा, प्यार से तेरे गाफिल है वो, ऐ दिल नादा सोच ज़रा, ऐसा तुझे महसूस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तुझे महसूस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, तेरी तरह उसके दिल में भी सोच दिले नादान ज़रा, तेरी तरह उसके दिल में भी सोच दिले नादान ज़रा, पहला किसी का प्यार छुपा हो, ऐसा भी हो सकता है, पहला किसी का प्यार छुपा हो, ऐसा भी हो सकता है, गैरों पर करता है भरोसा, ये भी तूने सोचा है, गैरों पर करता है भरोसा, ये भी तूने सोचा है, कोई दुश्मन दोस्त हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई दुश्मन दोस्त हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और सामिन आज़ाद आखिरी शेर, आग बुझाने आया है जो, बन करके हमदर्द तेरा, आग बुझाने आया है जो, बन करके हमदर्द तेरा, उसकी ही शह पर शोला उठा हो, ऐसा भी हो सकता है, उसकी ही शह पर शोला उठा हो, ऐसा भी हो सकता है। और मख्तम अल्लाह फरमाए, शहदाई है जिसकी गजल के, घर घर में दीवाने लोग, शहदाई है जिसकी गजल के, घर घर में दीवाने लोग, ऐसा शायर यार वका हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा शायर यार वका हो, ऐसा भी हो सकता है, तुझसे बिछड़ कर यूं खफा हो, ऐसा भी हो सकता है, सब्र का दामन छूट गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और सामिन आज़ाद एक गज़ल और मुलाहिज़ा फरमाएं, मतलब यूं कहा है कि नूर ही नज़र आता जिस तरफ नज़र जाती, नूर ही नज़र आता जिस तरफ नज़र जाती, वो जो बेनकाब आते रोशनी बिखर जाती, वो जो बेनकाब आते रोशनी बिखर जाती, और मेरा खस्ता हाली की उनको गर खबर जाती, मेरी खस्ता हाली की उनको गर खबर जाती, आपके सहारे ही जिंदगी गुजर जाती, आपके सहारे ही जिंदगी गुजर जाती, और दिल से दिल को राहत है बस यही हकीकत है, दिल से दिल को राहत है बस यही हकीकत है, वरना ये जो चाहत है दिल ही दिल में मर जाती, वरना ये जो चाहत है दिल ही दिल में मर जाती, अगर मेरी अयादत को आप आ गए होते, अगर मेरी अयादत को आप आ गए होते, हम नज़र के मारों की ज़िंदगी संवर जाती, हम नज़र के मारों की ज़िंदगी संवर जाती, और एक नज़र जो तुम हम पर माइले करम होते, एक नज़र जो तुम हम पर माइले करम होते, ये नज़र हमारी क्यों फिर इधर उधर जाती, ये नज़र हमारी क्यों फिर इधर उधर जाती। और आखिरी शेर कि गर हमें यकीन होता अपनी पारसाई का, गर हमें यकीन होता अपनी पारसाई का, फिर ये क्यों दुआ अपनी यूं ही बेअसर जाती, फिर ये क्यों दुआ अपनी यूं ही बेअसर जाती। और मख्तशी अमला फरमाले के नाते पाक कहने का फन जो आ गया होता, नाते पाक कहने का फन जो आ गया होता, शायरी वका अपनी और भी निखर जाती, शायरी वका अपनी और भी निखर जाती। और आखिर में चलते चलते एक दो शेर सुन लें, कहा है कि मेरी गज़लें जा जाकर उनको तो सुनाई लोगों ने, मेरी गज़लें जा जाकर उनको तो सुनाई लोगों ने, और वो भी गज़ल की सूरत हैं ये बात छुपाई लोगों ने, और वो भी गज़ल की सूरत हैं ये बात छुपाई लोगों ने, और देखो तो ज़रा तुम ऐ यारो क्या इसको किस्मत कहते हैं, देखो तो ज़रा तुम ऐ यारो क्या इसको किस्मत कहते हैं, मेरी छत पर चांद आया और ईद मनाई लोगों ने, मेरी छत पर चांद आया और ईद मनाई लोगों ने। एक चार मिसरा अमला फरमा लें, एक मतला और चार मिसरे के, कसम खुदा की न खुशून अब उदास हूँ मैं, कसम खुदा की न खुशून अब उदास हूँ मैं, मैं जिसकी याद में गुम हूँ उसी के पास हूँ मैं, कसम खुदा की न खुशून अब उदास हूँ मैं जिसकी याद में गुम हूँ उसी के पास हूँ मैं, और सबा ने चाके गिरेबा की दी है मुझको खबर, सबा ने चाके गिरेबा की दी है मुझको खबर, किसी के इश्क में क्या इतना बदहवास हूँ मैं, सबा ने चाके गिरेबा की दी है मुझको खबर, किसी के इश्क में क्या

0: तनाब धवासों में और चमन में फूल के अतराफ तितलियों की तरह, चमन में फूल के अतराफ तितलियों की तरह कहो वका के तुम्हारे ही आसपास हूँ मैं। चंद मुलाज़िम फरमाएं कि ऐसा भी नहीं तेरा सितम याद नहीं है, ऐसा भी नहीं तेरा सितम याद नहीं है, होंठों पे मगर शिकवाए बेदाद नहीं है, होंठों पे मगर शिकवाए बेदाद नहीं है, और दिल इसलिए मसरूर है नाशाद नहीं है, दिल इसलिए मसरूर है नाशाद नहीं है, है तेरे करम याद सितम याद नहीं है, हैं तेरे करम याद सितम याद नहीं है, हसरत है उम्मीदें हैं तमन्ना है तलब है, हसरत है उम्मीदें हैं तमन्ना है तलब है, फिर कैसे कहूँ दिल मेरा आबाद नहीं है, हसरत है उम्मीदें हैं तमन्ना है तलब है, फिर कैसे कहूँ दिल मेरा आबाद नहीं है, और रिश्ते हुए ज़ख्मों तुम ही दुनिया को बताओ, रिश्ते हुए ज़ख्मों तुम ही दुनिया को बताओ, किस दर्जा सहे हमने सितम याद नहीं है, किस दर्जा सहे हमने सितम याद नहीं है, मैं कहने को आज़ाद हूँ लेकिन अरे सयाद, मैं कहने को आज़ाद हूँ लेकिन अरे सयाद, यादों से तेरी दिल मेरा आज़ाद नहीं है, मैं कहने को आज़ाद हूँ लेकिन अरे सयाद, यादों से तेरी दिल मेरा आज़ाद नहीं है, और रूठा है वका जब से मेरा जाने बहारा, रूठा है वका जब से मेरा जाने बहारा, खाना दिल बर्बाद का आबाद नहीं है, रूठा है वका जब से मेरा जाने बहारा, खाना दिल बर्बाद का आबाद नहीं है, ऐसा भी नहीं तेरा सितम याद नहीं है, होंठों पे मगर शिकवाए बेदाद नहीं है। उनकी नादानियाँ नहीं जाती, उनकी नादानियाँ नहीं जाती, मेरी बेताबियाँ नहीं जाती, उनकी नादानियाँ नहीं जाती, मेरी बेताबियाँ नहीं जाती, लाख रहता हूँ महफिलों में मगर मेरी तन्हाइयाँ नहीं जाती, लाख रहता हूँ महफिलों में मगर मेरी तन्हाइयाँ नहीं जाती, और उनको शिकवे हैं अब न हमको गिले, उनको शिकवे हैं अब न हमको गिले, क्यों पशेमानियाँ नहीं जाती, उनको शिकवे हैं अब न हमको गिले, क्यों पशेमानियाँ नहीं जाती, और जो हुई थी कभी मोहब्बत में, जो हुई थी कभी मोहब्बत में अब वो रुसवाइयाँ नहीं जाती, जो हुई थी कभी मोहब्बत में अब वो रुसवाइयाँ नहीं जाती, आ भी जाओ कि यूँ तो सब कुछ है, गज़ल का आखिरी शेर है कि आ भी जाओ कि यूँ तो सब कुछ है, दिल की वीरानियाँ नहीं जाती, और मख्तर शेर मुला फरमाए कि जो मुसर्रत है आर्जी है वका, जो मुसर्रत है आर्जी है वका, गम की रानाइयाँ नहीं जाती, जो मुसर्रत है आर्जी है वका, गम की रानाइयाँ नहीं जाती।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अदबी दुनिया कार्यक्रम, आज कलाम शायर थे काजी वकाउल हक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर, रात के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं गीत संध्या कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ऐसे गीतों को चुनकर लाए हैं जो आपकी इस तन्हाई को ज़रूर कुछ यादों से भर देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे गीत जो एक दूसरे को चाहने वालों को एक दूसरे की याद दिलाते हैं, और जब दिल उनसे ये कह उठता है कि जब आपका दिल ना लगे तो हमारी गली आ जाना। जी हाँ, ऐसा ही एक नगमा है कुली नंबर 1 फिल्म का, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है

0: 8845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम गीत संध्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए आपको फिर से गीत संगीत की तरफ लिए चलते हैं। श्रोताओं, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जब हम अपने दिल के अल्फाज गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और ख़ास ऐसे ही कुछ गीतों के माध्यम से हम दूसरों के यानी अपने चाहने वालों के अल्फाज भी सुनना चाहते हैं। और कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर जिंदगी भर का सुकून मिलता है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म से अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को। और आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं फिल्म गोपी किशन का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, इश्क का इजहार होने के बाद अब जिंदगी कुछ और आगे चलती है और फिर चाहने वालों को ये इश्क एक ऐसा मोड़ भी लेकर आता है कि उनको ये इश्क ही बीमारी लगने लगती है, एक रोग लगने लगता है और फिर बस वो तन्हाई में अक्सर ये कहता है,

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। और श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बरसात फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है अनवर सागर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, चाहने वालों के सर पर कुछ ऐसी खुमारी छा जाती है कि वो पूरी दुनिया से टकरा जाने की शक्ति जैसे समझने लगते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इश्क का जादू है, ये इश्क का जोर है जो इतनी ताकत दिलो दिमाग में देता है। तभी वो कह उठता है कि दिल तो पागल दीवाना है।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना बरसात फिल्म का ये गीत, और आइए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म राजा से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम शरवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत राजा फिल्म से। आवाज़ें थीं उदित नारायण और अलका याग्निक की। इसी के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ष 1983 में प्रदर्शित फिल्म बेताब के कुछ गीत। बेताब फिल्म जो सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म थी, और इस फिल्म के निर्देशक थे राहुल रावेल। जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई ये फिल्म विक्रम सिंह देहल द्वारा उत्पादित थी, और इसमें सनी देओल, अमृता सिंह के साथ साथ शम्मी कपूर, निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा और अनु कपूर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म के कुछ गीत। श्रोताओं, इस फिल्म के सभी गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और इस फिल्म के गीतों को आवाजें दी थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत अभी आपने सुना, इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में आनंद बख्शी साहब को 31वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया था और शब्बीर कुमार को इसकी गायकी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए मनोनीत किया गया 31वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए। इस फिल्म के लिए संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म बेताब का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं

0: गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर

0: ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए 200 रुपए का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822

0: यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. If we want

0: Charles Region and Gulshan Raina for Akashvani News from Jammu.
1: Ukraine and Russia exchanged missile and drone strikes today, with attacks killing at least 11 people on both sides. Ukraine launched hundreds of drones across Russia in one of Kyiv's largest aerial attacks of the war, killing 6 people. Meanwhile, Russian strikes killed 5 people in Ukraine. In FIH Women's Hockey World Cup, India began their campaign with a thrilling 2-2 draw against China in a group stage match at Amstel Veen in the Netherlands today. India and China are in Pool D alongside England and South Africa. The top 2 teams from the pool will advance to the next round. The BWF Badminton World Championship is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi tomorrow. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty, Trisha Jolly and Gayatri Gopichand will be leading the charge for the Indian contingent. Talking to media ahead of the tournament, former world champion and 2-time Olympic medalist PV Sindhu backed Prime Minister Narendra Modi's vision of hosting Olympics in India.
2: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM has that vision that we can host it. There's nothing wrong in making it happen when PM said we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it.
1: In men's cricket, India were 460 for 9 in their first innings at stumps against host Sri Lanka on day 2 of the first test match of the series at the Galle International Stadium. Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav were on the crease at the draw of stumps this evening. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development project worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को

0: हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तबकात की बहबूद और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब शाह आज राजस्थान के शहर अलवर में रियासत के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने वाजे किया कि 2014 से 2026 तक मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, ने कम से कम इमदादी कीमत में मुसलसल इजाफा किया है।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाए, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: जनाब शाह ने देही मईशत की काया पलट करने में डेयरी के शोबे की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि ज्यादा पैदावार देने वाली गायें और भैंसें पूरे राजस्थान में हर एक घराने तक पहुंच सकें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा से अपील की है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल की रहनुमाई में अपने इल्म, महारत और इख्तरा को कौम की तामीर के लिए बरूए कार लाएं। चेन्नई के करीब कच्चन कुलथूर में वाक़ एसआरएन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी के 22वें जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सफर में नौजवानों का रोल अहमियत का हामिल है। कोरोना वबा के दौरान भारत के रोल का जिक्र करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि इंसानियत और आलमी फलाह बहबूद के पेश नज़र भारत ने 100 से ज्यादा ममालिक को कोविड वैक्सीन फराहम की। उन्होंने 2014 से आला तालीम की तौसी को उजागर करते हुए कहा कि आला तालीम में खवातीन की शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने उभरते हुए शोबाजात मसलन मसनूई जहानत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, रोबोटिक और हयातियाती टेक्नोलॉजी की अहमियत को भी उजागर किया। नायब सदर ने कहा कि तहकीक की असल कामयाबी उसी वक्त है जब इससे मुआशरे को फायदा पहुंचे। महसूलाती इंटेलिजेंस की डायरेक्टरेट DRI ने भारत में जनूब मशरकी एशियाई सुपारी यानी छालिया दरामद करने में मुलविस एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये नेटवर्क सुपारी को बांग्लादेश की पैदावार बताकर जनूबी एशियाई आज़ाद तिजारती इलाके साफ्टा के तहत धोखादही से ड्यूटी में रियायत के फवायद हासिल कर रहा था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: DRI ने बताया कि तहकीकात के दौरान हासिल करदा मालूमात से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के जरिए SAFTA के फवायद हासिल कर रहे हैं। ये गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दूसरे जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में पैदा होने वाली सुपारी यानी छालिया दरामद करते थे, लेकिन उसे बांग्लादेश की पैदावार बताते थे। इत्तलात की बुनियाद पर DRI ने कोलकाता और विशाखापट्टनम में दरामदकार, कस्टम ब्रोकर्स और IES होल्डर्स से वाबस्ता कई मकामात पर बैक वक्त तलाशी की कार्रवाई की। इस दौरान कई ऐसे दस्तावेजात और दीगर शवाहिद मिले जिनसे साबित होता है कि सुपारी दर हकीकत जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से दरामद की गई थी। DRI के अफसरान ने तकरीबन 75 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। शुबह है कि यह गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सामान की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम है। इसके अलावा तकरीबन 160 मेट्रिक टन सुपारी की एक खेप जब्त की गई है। मस्कुरा गिरोह के दीगर मेंबरान की शिनाख्त और उससे हुए नुकसान का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह की सूरत हाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में आइंदा दो दिनों के लिए जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल शदीद बारिश होने की तवक्को है। उड़ीसा में ताज़ा सैलाब आने का अंदेशा है क्योंकि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के हल्के

0: 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में दो दो एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में तीन भारतीय जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर यह वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि।

0: मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान समर्पित होगी। पुत्री दुर्गा,
1: महारानी, महारानी, प्रणाम राजमाता।
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
1: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है अभी। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
1: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए।
1: जो आज्ञा राजमाता।

और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अफसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।

0: जिले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
1: बहादुरी, महानता, बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
0: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
1: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं।

0: किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पर था,
2: लेकिन
0: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
0: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहां पना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
0: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहां पना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
0: ओ, अब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
4: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
5: जहां पना का इकबाल बुलंद रहे।
0: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
5: जहां पना, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मार दी है।
0: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
5: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
0: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
5: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही हैं।
0: भला वो किसके दम पर?
5: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
0: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीजा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
0: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आ गया।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है।

0: अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजे।
1: और इस थाल में तोहफा क्या है?
0: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
0: जो हुक्म महारानी साहिब।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
2: वो ऐसा ही करता है महारानी, वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
2: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
2: जो आज्ञा महारानी।
0: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
0: जो हुक्म।
2: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
3: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
3: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
4: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझे।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो हो महारानी।

0: आइजा होशियार शहंशाह हिंदुस्तान जिल्ले इलाही जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, जहां पनाह गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अंदर ले आओ।
2: प्रणाम।
1: तो तुम हो आधार सिंह?
2: जी हां जहां पनाह, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा।
1: बहुत नाम सुना है।
2: आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष उपहार भेजा है।
1: देखे तो इस थाल में है क्या? तोहफा पेश

0: क्या जाए,
1: ये
0: क्या है? ये
1: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धोनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
0: पिंजना, वो भी सोने का? बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
2: आलीचा, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना खाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
0: वो क्या?
2: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास ढूंढने का काम दिया जाता है और आपको भी
0: चुरट। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
1: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
0: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
1: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
0: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती, जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई कर, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
0: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के 1000 सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान बुरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों,

0: तीरंदाजों पर आ गए हैं, उन पर निशाना साधो।
1: सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ, जाओ।
0: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं महारानी,
0: लालू तीन को तो पता चलेगी किससे सामना हुआ था।
2: महारानी काफी खून बह गया है, संभालिए अपने आप को महारानी।
1: महारानी, महारानी, रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
0: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, और सामने देखिए वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
1: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता मारा, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
0: चलिए, आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो, गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी। नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना जानती है।
1: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए।
0: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा साक्षी ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो।
1: महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती।

0: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहते हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals,

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्का से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag

0: आप रितम शौरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kaharwa Taal.

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से

0: शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
1: Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. The Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, that is SAFTA. The Finance Ministry said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic customs duty of 100%. The National Testing Agency, NTA, today announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The NTA said the English paper will be held on the 9th of September from